अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहुत सुहानी। प्रकृति का हर कण हमें मेहनत, आशा और उत्साह का संदेश देता है। हमें भी जीवन में उमंग बनाए रखनी चाहिए।

जीवन में खुशियां बांटते चलें, क्योंकि अपनी खुशबू से ही फूल सबका मन जीत लेते हैं। हर नया दिन एक फूल की तरह खिलने और दूसरों के जीवन में आनंद भरने का अवसर है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

16.1 मेगाहर्ट्ज पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026 सुबह के 5:30 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर कौन सा कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चौवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस गान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। आठ पैंतालीस पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। दस बजकर तीस मिनट का समय होगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स। ग्यारह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज के मेहमान।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम वो जो एक फिल्म थी। 1:10 पर आप सुनेंगे दिल ढूंढता है।

10:30 का समय होगा कार्यक्रम हार श्रृंगार का और 11:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन

एक्शन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रभात के पवित्र पल अर्पण आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अर्पण लेकर प्रस्तुत हूं मैं विजय। प्रणाम स्वीकार कीजिए। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। जब तक आपको खुद की क्षमताओं पर भरोसा नहीं होगा, तब तक कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपकी सफलता की पहली सीढ़ी आपका आत्मविश्वास ही है। आइए किशोरी अमोनकर द्वारा गाए मीरा भजन से अर्पण का पहला पुष्प अर्पित करते हैं।

सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, छोटे छोटे और लगातार लिए गए कदम एक दिन आपको वहां पहुंचा ही देते हैं। धैर्य रखें और रुके नहीं। पाई गोपाल सिंह रागी द्वारा गाए हम इस गुरबानी शब्द से अर्पण के अगले पुष्प की ओर

गलतियां इस बात का सबूत हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। हारने या गलती करने से कभी मत डरिए। हर गलती हमें ये सिखाती है कि अगली बार और बेहतर तरीके से कैसे शुरुआत करनी है। आप सुन रहे हैं अर्पण विजय सिंह के साथ। पंडित भीमसेन जोशी का गाया ये भजन सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को मेहनत से संवार कर आने वाले कल को बदला जा सकता है। बीते हुए कल के पछतावे में अपना आज बर्बाद न करें। आज आपके हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। अर्पण आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर विजय के साथ। आइए सुनते हैं गुंडेचा ब्रदर्स द्वारा प्रस्तुत ये रचना।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अभी अभी हमने सुना रामचरितमानस का पाठ और हम अब आगे बढ़ते हुए आज अपने दिन की शुरुआत के तौर पर अर्पण के बाद 7:10 पर आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे संस्कृत में समाचार और फिर

0: बाद हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आपसे जब भेंट होगी तो गोल्ड सुप्रभात में हम कुछ बातें भी करेंगे, कुछ गाने भी सुनेंगे और फिर उसके बाद समाचार सेवा प्रभात का जो कार्यक्रम है, समाचारों के साथ साथ कुछ विश्लेषण, कुछ जानकारियाँ एक अलग ढंग से, तो वो हम सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बाद में। और फिर उसके बाद आगे चलते हुए एफएम गोल्ड का ये प्रवाह चलता रहेगा, आप गाने सुनते रहेंगे और जानकारी भरी बातें भी आपसे हम बांटते रहेंगे, कहते और सुनते भी रहेंगे। और फिर ये सिलसिला जो चलता रहेगा तभी तो हम कह पाएंगे कि हम आपके लिए हैं और गोल्ड है आपका हम सफर।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। संसदः आगामि मानसून सेशन इति प्रावृत सत्रात् पूर्वम् अद्य सर्वकारेण सर्वदलीय सभा आहूता। सत्रस्य कालखण्डे संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण कार्यं कर्तुं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहकार्यं याचयिष्यति। श्वः आरभ्य मानसून सत्रम् अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते, येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुखः अमित मालवीयः अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रमः राजनैतिक बिन्दु अंक निर्धारणेन चालितायाः पक्षपात पूर्ण आलोचनायाः अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्यः अस्ति, तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः। 20% इथेनाल मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं, ग्रामीण विकासः, सहकारीय संस्थाः, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। NTA इति राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थं OMR पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। NTA इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि OMR पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। NTA इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमं अथवा AI जनितानि OMR पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिक परिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं CBSE संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे, निवेशे, नवीनतायां, प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय

0: आर्थिक सहकार्य सुदृढ़ीकरण नूतना मगण अन्वेषण उभय देशा वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधय उद्योग नेतार व्यापार प्रतिनिधिमंडल सदस्या एकत्र आगता सन्ति। जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतो पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरं एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थीं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और

गोल्ड सुप्रभात लेकर पेश खिदमत है ये बंदा आपकी खिदमत में, विजय सिंह, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और गोल्ड सुप्रभात छोटा सा एक हिस्सा जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कुछ बातें बताएंगे, कुछ मौसम का हाल सुनाएंगे, एक आधी कविता भी पढ़ लेंगे और कुछ गाने सुनेंगे। ये प्यारा सा गाना आपके लिए, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में, बूंद जो

बूंद जो बन गई मोती, आसमान से जब चली तो सोचती होगी क्या होगी उसकी किस्मत, है ना। हमारे साथ सबके साथ यही होता है, ये भी नहीं पता चलता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, बूंद ऊपर से गिरेगी भी या नहीं। दिल्ली में तो जो हमें पता चल रहा है कि मौसम में आज मुख्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है, रात को हल्की बारिश होने की संभावना है। हल्की बारिश रात को अगर हो जाए, थोड़ी बहुत भी हो जाए, लेकिन बारिश होने से फिर वो गर्मी ज़्यादा बढ़ भी जाती है ना, ह्यूमिडिटी। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया था, और दिन के समय बारिश की संभावना 25% है। काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है मुझे तो। होनी चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि रात में ये बढ़कर 35% हो जाएगी। तो गर्मी रहने वाली है भाई, थोड़ा ध्यान से, ख़ास तौर पर पानी वगैरह पीना और धूप में बाहर ना निकलना। और हम में से ज़्यादातर लोगों को एयर कंडीशन्ड में रहने की जो आदत हो जाती है, और बहुत से लोगों को बाहर भी काम करना पड़ता है धूप में और चलना भी पड़ता है, ऐसे में थोड़ा अपना ख्याल रखें। जब आप एक एयर कंडीशन्ड कमरे से जब बाहर निकलते हैं तो जो बदलाव होता है, और फिर अंदर आना होता है गर्मी से तो जो बदलाव होता है, उसके प्रति जागरूक रहने पर आप बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी पीते रहें और धूप से बचाव जहाँ तक हो सके करें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरे प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता आपको सुनाते हैं हम पढ़कर। प्रार्थना 3। अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे, हर क्षण ये जान सकूं क्या मुझको खोना है, कितना सुख पाना है कितना दुख रोना है, अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, कुछ इतना बड़ा ना हो जो मुझसे खड़ा ना हो, कंधों पर हो जो हो नीचे कुछ पड़ा ना हो, अपने सपनों को प्रभु बस इतना ध्यान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे।

लता जी के गाए इस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। दो आंखें बारह हाथ का बड़ा प्यारा गाना, और उसके बाद हम समाचार सुप्रभात सुन

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
1: नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे।
0: बिल्कुल, आज है रविवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। साहिल लुधियानवी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा है।
1: बहुत खूब फरहत, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल कैन प्रॉब्ली लिव दिस, बिकॉज शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लगता है, isn't it? चाहे नई नौकरी हो, चाहे नया प्यार हो, फिर धीरे धीरे इंसान को कदर उसकी होना बंद हो जाती
0: लेकिन
1: है।
0: लेकिन सारा मेरा मानना है कि अगर साथ हो तो वो चाहे शुरुआत हो या अंत हो बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि इंसान का साथ ही सबसे बड़ी नेमत होती है। तो क्यों ना इससे प्यारी सी गजल है जगजीत सिंह की, उससे शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की।

0: सारा, जब भी मैं गजल सुनती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों जो है पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं
1: आपको अपनी नई नई जब चीजें शुरू हुई थी।
0: साथ याद आता है कि साथ वाकई में बहुत अहम होता है रिश्तों के लिए।
1: दैट इज वेरी ट्रू, एंड वो साथ किसी का भी हो, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट आई इनफैक्ट रेड दिस लाइन समवेयर दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ जर्नी, तो इज इट द डेस्टिनेशन, तो समबडी आंसर्ड नो इट्स द कंपनी।
0: बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं का साथ ही है जो आज हमें यहाँ पर कार्यक्रम को दोबारा जो है लेकर आए हैं उनके लिए, और वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का।
1: राइट, सो विदाउट मच डू ऑफ कोर्स वी वेलकम ऑल आवर लिसनर्स टू द संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे, वेयर वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज, ऑफ कोर्स दैट वुड बी देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल टेक यू टू द मेट्रो सिटीज एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन देयर सिटीज, एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ कोर्स इन व्हिच वी रिमेंबर द स्पेशल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे एंड द पर्सनालिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थडेज टुडे। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शुरुआत कल नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, फरहत उसी से की जाए।
0: जी बिल्कुल, और नेशनल फिल्म अवार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है।
1: दैट्स राइट, एंड अनाउंसिंग द अवार्ड्स यस्टरडे इन न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ ज्यूरी फीचर फिल्म जयराज सेड दैट ममूटी एंड कार्तिक आर्यन हैव वन नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर देयर मूवीज ब्रह्मा युगम एंड चंदू चैंपियन।
0: जी, और यामी ने इस फिल्म में खुफिया अधिकारी का भी किरदार निभाया है जो आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर रहती हैं, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और इसके अलावा किन फिल्मों को इसमें शामिल किया गया है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता अनुपम से।
2: राजकुमार पेरियासामी विल गेट बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड फॉर तमिल फिल्म अमरन। संजय मिश्रा विल रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल, वाइल सचना नमीदास एंड रूपश्री वरकड़ी विल रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल।

सचदेव एंड जी वी प्रकाश कुमार विल गेट द अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन. अब है जोधपुरकर एंड वाइकोम विजय लक्ष्मी विल रिसीव द बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड. तेलुगु मूवी चिन्ना कथाकाडू विल गेट द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड. कल्कि 2898 AD वॉज नेम्ड बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट. कैप्टन मिलर हैज गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल वैल्यूज. बेस्ट गुजराती फिल्म

0: While many fans have begun offering prayers and performing rituals for the success of their favorite team. After all, for Bengalis, football remains the greatest of all games, and tonight, Bengal will once again be swept away by the magic of the beautiful game. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: वहीं सारा फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य कई स्थान कल सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि ये फैसला फुटबॉल प्रेमियों को बड़े मुकाबलों का आनंद लेने का मौका देगा, साथ ही शहर की जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
2: वाओ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग नाइट, सो एंड स्पेशली इट्स अ वीकेंड, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव प्रोबब्ली अप्लाइड फॉर लीव्स ऑन मंडे, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि सुबह कि हम लोग जो मैच का लुफ्त उठाया फिर कह रहे नहीं आज तो स्कूल नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना। एंड नाउ मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट एज पार्ट ऑफ आवर सीरीज पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, इन आवर अपकमिंग एपिसोड वी विल बी स्पीकिंग टू आर माथवन। ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट ही इज एन एक्लेम्ड एक्टर एंड डायरेक्टर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस, बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबी नारायण जी, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे।
2: I'm sure the listeners are probably wanting to listen to the entire conversation, and for that you need to tune in to Akashvani Gold today at 9:10 a.m. and of course you can listen to it on the app also, the News on AIR app, and on the official YouTube channel, that is News on AIR Official.
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो सायरा, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
2: वेल, तामराम सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिगन द सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर। तामराम कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर एस बालाचंदर सेड दैट रेजिडेंट्स कैन सबमिट देयर हाउस होल्ड डिटेल्स ऑनलाइन थ्रू द सेंसस पोर्टल फ्रॉम 17th जुलाई टू 31st जुलाई यूजिंग अ मोबाइल फोन or computer. After submission, they will receive an 11-digit self-enumeration ID via SMS or email, which must be shared with enumerators during the door-to-door survey. The corporation has deployed 1,483 enumerators during the survey. Moving on to the city of Bengaluru, well, the second phase of the Greater Bengaluru Authority's footpath clearance drive commenced with the removal of abandoned vehicles from city streets. Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bhaira Gowda flagged off the drive in Malleswaram. The five city corporations, in coordination with the Bengaluru Traffic Police, are removing abandoned vehicles from roads and footpaths to improve pedestrian infrastructure. According to GBA, more than 4,200 abandoned vehicles have been identified across the city, with notices already issued to over 1,000 vehicle owners. The minister said that abandoned vehicles obstruct a pedestrian movement and that the drive will continue across Bengaluru, with citizens encouraged to report such vehicles through the Astram application. Another news coming in from Bengaluru, and of course we all know that the football frenzy is no less in Bengaluru. Well, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar will be joining football enthusiasts for public live screenings of the 2026 FIFA World Cup final between Argentina and Spain at the NGV Indoor Stadium in Koramangala, Bengaluru, in early hours of Monday. The live screening has been jointly organized by the Karnataka State Football Association and the Department of Youth Empowerment and Sports. The match will be telecast from 12:30 a.m. on Monday, that is of course tonight, and with sportspersons, dignitaries and members of the public expect

0: expected to attend the event alongside the Chief Minister. According to organizers, the screening has been arranged to celebrate the global football spectacle and encourage greater public interest in the sport. Moving on to Hyderabad, the Twin Cities celebrated a historic sporting milestone as the closing ceremony of the inaugural ILCA Open India International Sailing Championship and the YAI 40th Hyderabad Sailing Week 2026 concluded at the Hussain Sagar Lake. Lieutenant General Neeraj Varshney, Commandant of the Military College of Electronics and Mechanical Engineering and Commodore of the EME Sailing Association, presided over the event and felicitated the winners. Reflecting on the landmark event, General Varshney stated that hosting India's first international ILCA Open Championship fulfilled a grand vision for Hussain Sagar, while reaffirming EMESA's four-decade legacy of nurturing Olympians and Arjun awardees. He emphasized that sailing instills vital life lessons in discipline and leadership, urging the athletes to pursue new horizons with courage and determination. So Farhad, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
1: जी, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ये शून्य उत्सर्जन बसें अगले वर्ष अप्रैल से शुरू हो जाएंगी. वहीं महाराष्ट्र का रुख करते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को और एआई को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण राज्य में एग्री हैकाथॉन के रूप में राज्य व्यापी योजना को मंजूरी दी है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान खोजना है. और वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल पुणे क्षेत्र में यातायात जाम कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की है. और उन्होंने ये भी कहा है कि पुणे को एक ही स्तंभ पर सड़क, फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन वाली पहली त्रिस्तरीय परिवहन संरचना मिलेगी. और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं. गृहमंत्री आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में विश्व संग्रहालय का उद्घाटन होगा. वे कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम से हावड़ा जिले के संक्रराइल फूड पार्क में अमूल डेयरी की विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने की सुविधा की आधारशिला रखेंगे. और श्रोताओं, अब है बारी महानगरों के मौसम का हाल जानने की. तो सारा, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि मॉनसून का तो मौसम आ गया है, लेकिन उमस कम नहीं हो रही है. मॉनसून है लेकिन बारिश नहीं है.
0: राइट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट एल नीनो इफेक्ट प्रॉब्ली इज नाउ शोइंग एवरीवेयर.
1: जी,
0: तो बादल आते हैं लेकिन वही है ना कि जो गरज के रह जाते पर बरसते नहीं है.
1: लेकिन आज हो सकता है बादल बरस जाएं
0: दिल्ली में,
1: क्योंकि मौसम विभाग ने आज अनुमान व्यक्त किया है. और न्यूनतम तापमान में भी जो है वो गिरावट महसूस की गई है, 29 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. लेकिन मुंबई में भी मौसम अच्छा रहेगा, वहां पर भी बारिश हो रही है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: एंड ऑल द अदर सिटीज इन साउथर्न इंडिया, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद विल हैव सम रेन टुडे, अनलाइक दिल्ली. और आप कह रही हैं आज शायद दिल्ली में भी हो जाए बरसात, होपफुली. वेल, चेन्नई विल हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म. टेम्परेचर इन चेन्नई विल हॉवर बिटवीन 28 and 38 डिग्री सेल्सियस, वेल बेंगलुरु विल हैव अ क्लाउडी स्काई एंड सम लाइट रेन इज एक्सपेक्टेड देयर. मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 वेल मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस. हैदराबाद विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे एंड लाइट रेन और ड्रिजल इज एक्सपेक्टेड ओवर देयर. टेम्परेचर इन हैदराबाद विल हॉवर बिटवीन 24 and 32 डिग्री सेल्सियस.
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज है 19 जुलाई 2026.
0: Yes, and let's look at the important events. Well, in the year 1900, the Paris Metro was started with the initial section connecting Porte de Vincennes to Porte Melo.
1: 1848 में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के सेनेका फॉल्स में महिलाओं के अधिकारों पर पहला ऐतिहासिक सम्मेलन आज ही के दिन आयोजित हुआ था.
0: एंड लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक टू द ईयर 1553. ओनली अ 15-year-old प्रिंसेस लेडी जेन ग्रे वाज डिपोज्ड एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर ओनली 9 डेज इन फेवर ऑफ हर कजन मैरी. Also on this day in 1903, the first Tour de France bicycle race concluded with Maurice Gagin winning the race.
1: 1905 में भारत के तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी आज के दिन दी थी.
0: On this day, 1942, the agricultural chemist George Washington Carver arrived in Michigan at the invitation of Henry Ford, the founder of the Ford Motor Company, to begin an experimental project. Also, on this day, 1969, Apollo 11 reached orbit around the moon with astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins.
1: और 1969 में आज के दिन देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था.
0: And on this day, 1980, the Moscow Summer Olympics began following a boycott from dozens of nations that were boycotting the games because of Soviet military intervention in Afghanistan. And now when we remember some of the personalities for us, so who is the first on our list?
1: जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालमणि अम्मा की. वे महादेवी वर्मा की समकालीन थी जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थी. नालापत बालमणि अम्मा की गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित और प्रतिष्ठित मलयालम कवित्रियों में से की जाती है. उनकी रचनाएं अनुभूति मंडल का साक्षात्कार कराती हैं. उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं और उनका बहुत ही अच्छी कविता है आलस्य, जिसका हिंदी अनुवाद किया है रति सक्सेना ने. वो कहती हैं, आलस्य मुझमें फैलता है शाश्वत आनंद की छाया जैसे, यहाँ अभी है कर्तव्य अपार, कोशिश करती हूँ अपनी यादों से छुटकारा न पाने की. धरती को बिना श्रम मृदुलता से ढकने वाले फूलों के बीच, जीवन को सुंदरता देने वाली अकृत्रिम कल्पनाओं के बीच, कर्म कृषि में मेहनत करने वाले मेरे हाथ बिना हिले डुले पड़े रहते हैं.
0: And we all know that Balamani Amma, she was also the mother of renowned writer Kamala Das, and she won many awards and honors, including the Padma Bhushan, Saraswati Samman, Sahitya Akademi Award, and many other awards as well. Next on our list for her is another writer, novelist, Balai Chand Mukhopadhyay, who is best known by his name Banphool. And of course, he is overspanned in novels, poetry, plays, essays, and over 400 short stories, the genre for which he is best remembered. For his contribution to literature, he was awarded the Padma Bhushan in 1975.
1: और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के महान नेता और साहित्यकार खूबचंद बघेल का. वे विधायक और राज्यसभा के सांसद भी रहे. डॉक्टर खूबचंद बघेल का हमेशा से सामाजिक कुरीतियों को देखकर खून खौलता था. इन्होंने हमेशा उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेकों बार समाज के गुस्से का भी सामना करना पड़ा. 1946 में उनको तहसील कार्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था.
0: Today is the birthday of a very, very popular actor, especially in Telugu cinema. We are talking about Rajendra Prasad. He made his debut in the year 1977 with the film Sneham and gained recognition with Manchu Palaki, which came in 1982. He then went on to star in several successful comedy films such as Lady's Tailor and Appulu Appa Rao, among others. Of course, he received the Nandi Award for Best Actor for Era Mandaram. We have a song from one of his films.

0: 1968 में शशि कपूर के फिल्म कन्यादान का ये गाना लिखे जो खत तुझे को हिंदी फिल्मों के क्लासिक गानों में शुमार किया जाता है।
1: लिखे

1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी आई थी। इसमें नीरज का लिखा एक गीत था फूलों के कलम से दिल की कलम से। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत गाया गया।

0: What a beautiful song, isn't it? And Gopal Das Neeraj ki kuch panktiyan jo bahut famous hain. Ab to mazhab koi aisa bhi chalaya jaye jisme insaan ko insaan banaya jaye, jiski khushbu se mehak jaye padosi ka bhi ghar, phool is qism ka har simt khilaya jaye.
1: Bahut khoob.
2: और सारा उन्हीं की आवाज में हमने एक उनकी कविता निकाली है, आइए सुन लेते हैं.
3: आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य. रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम.
2: बहुत खूब, यानी

0: कवि का किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है वो इसमें देखने को मिल जाता है। और आज की शाम अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में जरूर जाएं, नृत्य प्रस्तुति का आयोजन होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सुबह 10 बजे होगा प्रदर्शनी कार्यकारी बाजार का आनंद।
1: एंड फॉर दैट दीजिए इजाजत, फरहत और सायरा को नमस्कार।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
4: Non-performing loans at under 1% today.
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच

0: विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने

0: और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममूना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतीज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुशउसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का तआवुन चाहेगी। मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालिदैन को जांच पड़ताल के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई ओएमआर शीट्स जाली या मस्नूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बायस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं क्लास के दूसरे बोर्ड इम्तहान 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर urlresults.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी इस पॉलिसी की सिफारिशात से हम आहंगी करते हुए सीबीएसई ने इस साल से 10वीं क्लास के दो बोर्ड इम्तहान शुरू किए थे। मेन बोर्ड इम्तहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तहान 15 मई से 21 जुलाई तक मुनक़िद किया गया था। सीबीएसई के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तहान के मजमू पास फीसद को जोड़कर इस साल नतायज 96.78% रहे। सीबीएसई के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतायज डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के पेश नज़र एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज़ को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हुक्काम ने कहा कि अगले हुक्म तक बालतल और नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप से यात्रियों की किसी भी तरह की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत के महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई खराब मौसम से मुतालिक एडवाइजरी के पेश नज़र वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। अकीदतमंदों को मशवरा दिया गया है कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूमात को अपनाएं। हुक्काम लगातार मौसम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू होगी जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमा मौसमियात ने

0: मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आईएमडी ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुतादिद जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह हसास मकामात की सख्ती से निगरानी करें और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को दिन रात फाल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि राहत और बचाव टीमें बर वक्त तैयार रहें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वह तोदे खिसकने के ज्यादा खदशात वाले रास्तों पर मशीनरी और दीगर जरूरी वसाइल को तैयार हालात में रखें। वहीं आफात से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सैयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में आईएमडी ने बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनयी, जो भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब के हमले में दो अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, एक लापता और चार फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नज़र बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में मारूफ अदाकार और हिदायतकार आर माधवन से बातचीत करेंगे, जो बावकार पद्मश्री एजाज याफ्ता हैं।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: आप इस गुफ्तगु को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। रिवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट डीआरआई ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी

0: जब्त की गई है। वजारत खजाना ने बताया कि इन कार्रवाइयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने मजीद बताया कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरों ने नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें स्मगल की गई कीमती धातें और नकद रकम जब्त की गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब में मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। ये रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अदा की जाएगी। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोशो जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर हैं। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है, ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अलावी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खवातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
2: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी, ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिया मौश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

इससे पहले कि आप एक खूबसूरत गाना सुनें और उसकी धुन में खो जाएं, 1962 में आई जो फिल्म असली नकली का गाना छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बीच में खड़ा हूं उस गाने के और आपके बीच में, क्योंकि मुझे बताना है कि मेरा नाम है विजय और ये है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दिल लगी की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है म्यूजिकल दिल लगी में, लेकिन बातें काम की भी होती हैं। और ये गाना जो कि मशहूर महान गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी, मोहम्मद रफ़ी, देवानंद, ऐसी शख्सियतें एक साथ मिल जाएं तो कमाल ही होगा ना। तो ये गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बताए बिना मैं रहूँगा नहीं, कि सेहत और स्वच्छता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास और खुद को कितना साफ सुथरा रखते हैं। ये बात भी तो बतानी जरूरी थी ना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देखो जी, अपनी बात तो हमें कहनी है, अपनी बात कहे बिना हम आपको गाना कैसे सुनने दे सकते हैं। आपको गाना सुनना है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, और हमारी बात ये है, बहुत काम की बात है, वो पिछली बात का एक्सटेंशन है, और सीधी बात है कि स्वच्छता जो है, सफाई, केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि बीमारियों के खिलाफ हमारा सबसे पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। सुन लिया, समझ गए, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए। और ठीक है, अब हाथी मेरे साथी का ये प्यारा सा गाना, 1971 में आई जो ये फिल्म थी ना, बहुत ही प्यारी फिल्म, इसका ये गाना सुन लेते हैं। आपको बहुत ही प्यारा ये गाना लगने वाला है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार। आइए, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

भाई हंसते खेलते ये जिंदगी अगर गुजरनी है ना, गुजारनी है या गुजरनी है आपकी, तो इसके लिए आपको स्वच्छता रखनी तो बहुत ही जरूरी होगी, क्योंकि फिर स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा तभी तो हंसना खेलना हो पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को भी सुकून देता है अगर आसपास स्वच्छता रहे। लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीनी है दोस्तों, तो सफाई को, स्वच्छता को अपनी आदत बनाना पड़ेगा। रविवार के दिन म्यूजिकल दिल्ली में मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रजाय जी ये आप ही का काम नहीं है झाड़ू पोछा करना। हाँ, ये भाई साहब को भी उठाओ और कहो जाओ दूध लेकर आओ और फिर आके झाड़ू लगाओ। ठीक है, अगला गाना आपके लिए आ रहा है। ये जो है ना बड़ा ही प्यारा गाना है, देखो ना, धर्मेंद्र और साधना अगर पर्दे पर हो, गाना आनंद बख्शी ने लिखा हो, एसडी बर्मन ने उसका संगीत तैयार किया हो, रफी और लता ने उसे गाया हो, तो फिर इश्क पर जोर नहीं हो ही जाता है ना।

0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए वार्ता करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर की ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्र में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मयामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमरीका की डायमंड प्रीशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलोग्राम और 57 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
3: बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजित दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजित दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
2: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
3: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
2: और आपने एक्सेप्ट किया ये भी,
3: मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देन है।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
3: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। It's a fabulous move. Competition भी बढ़ गया है, at the same time opportunity बढ़ गई है।
2: आप FTI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें,

0: स्टडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
1: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है, जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
0: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी, द नाम ऑफ द इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग थी। साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
1: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है। वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज़ पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आएं देखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया, उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
0: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से इतने युवाओं पर इसका इफेक्ट?
1: नंबी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अंदलाव नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कॉम्पिटिशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है। इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंबी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ

0: इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आएं, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या
1: जी, जी, जी।
0: ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: The craft,
0: like नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरेंद्र हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकम्पेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन, दोहराव से डर लगता है।

0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस. तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स. तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए.
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो या मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंदर. एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है. तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं.
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे. कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती. जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल. It was that very good. इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है. एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे. धुरंधर was exactly that. और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ. उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है. सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में, बाकी के देशों में. सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा.
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं. पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है. किस तरह से देखते हैं
0: ये? बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है. और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं. सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं. पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन.
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है. क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता. तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी.
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं. माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है. माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत. इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा. ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया.
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था. इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय. और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्रनाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

स्वरों की यात्रा निस्सीम होती है। स्वर न भाषा के दायरों में सिमट पाते हैं और न ही सरहदें उन्हें बांध पाती हैं। लेकिन जब कोई साधक अपने सुरों में मातृभूमि का प्रेम, अपनी संस्कृति की गरिमा और अपनी आत्मा की तपस्या को एक साथ पिरो देता है, तब संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं रहता, वो वतन का राग बन जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसी विलक्षण स्वर साधिका का स्मरण, जिनकी आवाज में कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय ऊंचाइयां थीं और देशभक्ति की प्रखर चेतना थी, जिन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी एक राह बनाई और अपने स्वरों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संगीत मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को अपने वतन से जोड़ता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात कर्नाटक संगीत विभूति पद्म विभूषण डी के पट्टम्माल की।

डी के पट्टम्माल यानी दामल कृष्णस्वामी पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें एम एस सुब्बुलक्ष्मी और एम एल वसंत कुमारी के साथ कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त है। उनका जीवन संगीत, साहस और परंपरा को एक नई दिशा देने वाली प्रेरक कहानी है। डी के पट्टम्माल का जन्म 19 मार्च सन 1919 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता दामल कृष्णस्वामी दीक्षितार स्वयं संगीत के गहरे जानकार थे। उनकी माताजी का नाम राजम्माल था। उनकी माताजी भी अत्यंत सुरीली गायिका थीं। लेकिन ये वो समय था जहां महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत गहरी खींची हुई थी। उन्हें घर की चार दीवारी के बाहर, यहां तक कि रिश्तेदारों के सामने भी गुनगुनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के भीतर छिपी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। वो अपने पिता की उंगली थामे संगीत सभाओं में जातीं और वहां जो कुछ भी वो सुनतीं वो उनके बाल मन पर अंकित हो जाता। घर लौटकर वो अपनी तुतली जुबान में उन कठिन बंदिशों को हूबहू गाया करतीं। इस छुप छुप कर चलने वाली स्वर साधना में उनके भाई डी के रंगनाथन, डी के नागराजन और डी के जयरामन उनके सहयात्री बने। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मद्रास में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। प्रतिष्ठित रसिका रंजनी सभा में उनके स्वर गूंजे तो श्रोता मंत्रमुग्ध थे। लेकिन उस दौर में एक लड़की का सार्वजनिक मंच पर तंबूरा लेकर बैठना एक सामाजिक भूचाल से कम नहीं था। समाज ने उंगलियां उठाई, रूढ़िवादियों ने आंखें तरेरी, लेकिन स्वर की एक मधुर यात्रा आरंभ हो चुकी थी। मद्रास कॉरपोरेशन रेडियो की तरंगों पर भी उनकी आवाज गूंजी और समय ने देखा कि कर्नाटक संगीत का इतिहास बदल रहा है।

कर्नाटक संगीत जगत में डीके पट्टम्माल की आमद से संगीत जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत का इतिहास अब दो भागों में बढ़ चुका है, डीके पट्टम्माल के आने से पहले का इतिहास और उनके आने के बाद का इतिहास। इसी स्वर्ण काल में उनका परिचय महान संगीतकार और गायक पापनाशम शिवन से हुआ, जिन्होंने इस पवित्र नदी जैसी गायिका को अपने तमिल कृतियों का अमूल्य खजाना सौंप दिया। कर्नाटक संगीत के मंच पर जब पूरी तरह पुरुषों का प्रभुत्व था, तब पहली बार डीके पट्टम्माल ने मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हुए इस परंपरा को बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति दी, बल्कि रागम तानम पल्लवी जैसी अत्यंत कठिन और उस समय तक केवल पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस शैली में भी प्रस्तुति दी। उस समय तक पुरुष कलाकार ये मानते थे कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रागम तानम पल्लवी कर्नाटक संगीत की वो विधा है जहां गणित की सटीकता, फेफड़ों की असीम शक्ति और कलाकार की कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है। उस समय के पुरुष कलाकार ये मानते थे कि महिलाएं केवल सरल भक्ति रस से पूर्ण कीर्तन गा सकती हैं, लेकिन वो इस बौद्धिक चक्रव्यूह को नहीं भेद सकती। डीके पट्टम्माल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल रागम तानम पल्लवी को गाया, बल्कि संगीत के इतिहास की सबसे जटिल और लंबी ताल सिंहनंदन ताल, जिसमें 128 अक्षर यानी 128 मात्राएं होती हैं, तथा शरभनंदन ताल में ऐसी पल्लवियों का ताना बाना बुना कि बड़े बड़े मृदंग वादक भी चकित रह गए। उनकी प्रतिभा का इतना अधिक सम्मान था कि प्रसिद्ध मृदंगम वादक विद्वान पालघाट मणि अय्यर, जो कि परंपरागत रूप से केवल पुरुष गायकों के साथ ही संगत करते थे, उन्होंने डीके पट्टम्माल के लिए ये परंपरा तोड़ दी। उनकी गायन क्षमता को गुणीजनों ने बहुत मान दिया और उन्हें स्नेहपूर्वक डीकेपी अम्मा कहा जाने लगा। उनकी बेजोड़ तकनीकी महारत को देखकर कर्नाटक संगीत जगत ने उन्हें नया नाम दिया, पल्लवी पट्टम्माल।

सन 1939 में डीके पट्टम्माल का विवाह आर ईश्वरन के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी संगीत यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण साथी बने। डीके पट्टम्माल ने देश की स्थिति को देखते हुए अपने स्वर को राष्ट्र आराधना का माध्यम बना दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी तमिल फिल्म त्यागभूमि में पहली बार पार्श्व गायन किया। इस फिल्म में उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के क्रांतिकारी गीतों को अपनी आवाज दी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई और फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। तब ऑल इंडिया रेडियो मद्रास के स्टूडियो में डीके पट्टम्माल तंबूरा लेकर खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, देश में रोमांच फैल गया। भारत आजाद हुआ और डीके पट्टम्माल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का अमर स्वतंत्रता गीत गाया, आडवो में पल्ली पाडवो में आनंद सुतंत्रम, जिसका अर्थ था आओ हम सब मिलकर नाचें, आओ हम सब मिलकर गाएं कि हमें वो पावन स्वाधीनता मिल गई है।

की आवाज में देश की आजादी का वो पहला जश्न तैर रहा था। इस गीत ने डीके पट्टम्माल को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की साझी चेतना का हिस्सा बना दिया। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अनेक गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया, जो आज संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। डीके पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियों की सबसे प्रामाणिक संवाहक बनी। दीक्षितर की कृतियां अपनी

विशेष गति दार्शनिक संस्कृत और बेहद सूक्ष्म गमकों के लिए जानी जाती हैं। डीके पट्टम्माल ने इन कृतियों के मूल स्वरूप को इस तरह से सहेजा जैसे किसी धरोहर को सहेजा जाता है।

के पट्टम्माल को तमिल फिल्मों में गीत गाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने केवल भक्ति और देशभक्ति से जुड़े गीत गाना ही स्वीकार किया। फिल्म त्यागभूमि के बाद उन्होंने फिल्म इरुवर, रामराज्यम, वेधाल उलगम सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। डी के पट्टम्माल केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान संगीत गुरु भी थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। पिता के साथ संगीत सभाओं में गुणीजनों को सुन सुनकर ही उन्होंने संगीत सीखा था, लेकिन स्वयं उन्होंने अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित किया। उनके छोटे भाई डी के जयरामन ने उनके मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर संगीत कलानिधि सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्रवधु ललिता शिवकुमार को भी संगीत सिखाया, जो अक्सर मंच पर उनके साथ संगत करती थी। और उनकी पौत्री और शिष्या नित्याश्री महादेवन आज कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। डी के पट्टम्माल को संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गान सरस्वती की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 16 जुलाई सन 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण संगीत विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया के लिए रवाना होंगी। ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली

0: यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जांजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिनवेई भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए विकल्पों पर बातचीत करेंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेंगे। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एस्टोनिया उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: Non-performing loans at under 1% today.
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव भी हो सकता है। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulation,

0: अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, फ्रांस को हराकर इंग्लैंड तीसरे स्थान पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर आज रवाना हो गई। एक रिपोर्ट।
1: तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। वे वहां मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू से मुलाकात करेंगी। श्रीमती मुर्मू मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। वहां वो राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मेकोस्की और संसद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। वो उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करने के साथ ही भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। वहां वो राष्ट्रपति निकोसुर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। वो भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष हुसैन अली वायनई भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट करेंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकासशील देशों के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री वास्केज कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पनामा के बीच संबंध साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और सद्भावना पर आधारित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
2: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
3: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध नए हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ईरान के हमलों में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। एक रिपोर्ट।
4: ये हमला जॉर्डन में हुए हमले के जवाब में किया गया जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 1 सैनिक लापता है और 4 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के आवागमन को अवरुद्ध करने की ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबी वादा ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
0: इससे पहले ईरान ने कल कुवैत पर कई हवाई हमले किए। इन हमलों में देश के बिजली और जल शोधन ढांचे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।
4: ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन

0: प्रोबेशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अपने ऑपरेशन नस्त्र 2 के 18वें चरण के तहत कुवैत स्थित अरिफजान ग्राउंड फोर्सेस सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि इस हमले में वहां तैनात कई अमरीकी सैनिक मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने अमरीकी अली अल सलीम एयरबेस पर रडार प्रतिष्ठान को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह स्थित अमरीकी नौसेना के ईंधन सहायता केंद्र और संचार केंद्र पर ड्रोन तथा मिसाइल हमले किए। इन हमलों का असर आवश्यक सेवाओं पर भी पड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अमेरिका के नागरिकों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र में रहने वालों को अधिक सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी परामर्शों से अवगत रहने को कहा। विभाग ने कहा कि क्षेत्रीय तनावों के कारण विमानन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, इससे उड़ानें रद्द हो सकती हैं। पाकिस्तान पुलिस ने लाहौर में 121 अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें से 28 लोगों के पास वैध दस्तावेज मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। शेष 93 लोगों को लाहौर के एक हिरासत केंद्र में भेज दिया गया।
2: पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। इस्लामाबाद ने 2023 के आखिर से अब तक लाखों अफगान नागरिकों को वापस भेजा है। इस महीने की शुरुआत में बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों की वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद यह कार्रवाई और तेज कर दी गई। उधर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान को जबरदस्ती वापस भेजने की कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मायामी में खेले गए एक मैच में फ्रांस को इंग्लैंड ने 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।
3: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली वायनई के बीच वार्ता आज नई दिल्ली में। अमेरिका ने जॉर्डन में ईरानी हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान पर फिर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से, फ्रांस को हराकर इंग्लैंड तीसरे स्थान पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu leaves on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Vice President C.P. Radhakrishnan to hold talks with President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, in New Delhi today. U.S. military launches new airstrikes in retaliation to Iranian strikes that killed 2 American troops in Jordan. India to take on England in series decider third ODI at Lord's.

101 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेलबॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। आवाजों की लकीरों पर एक रिश्ता लिखा है हमारा और आपका। इस रिश्ते में हम करीब आ जाते हैं कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में, जिसमें आप अपनी मेल और संदेश के जरिए हम तक पहुंचाते हैं अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम पर्वत से, और पसंद किन की है? जी हाँ, पसंद है डॉक्टर KB तिवारी जी की। डॉक्टर साहब हमें सुन रहे हैं पांडव नगर नियर मदर डेयरी दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपकी पसंद का गीत ये रहा खास आपके लिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, आपके संदेश आए जा रहे हैं, तो हम जल्दी से कम नाम तो मैं सभी का शामिल करने की कोशिश करूंगी। ये संदेश आया है मोताला महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुलरकर, और ये दिल से शुक्रिया भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश, किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश है मनाली हिमाचल से, लिखने वाले हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ सिटी से शैफाली, शैफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। अगला संदेश सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें ये अपना संदेश भेजते हैं। ये हमारे पास संदेश आया है शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान, अजलान, बबलू ठेकेदार, मोताला बाजार से ये संदेश हमें भेजते हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और ओम कुमार, रतनमाला सुलरकर, और इनका संदेश मैं पहले ले चुकी हूँ। अगला संदेश है हरिप्रसाद विश्वकर्मा, सुमन विश्वकर्मा, कॉलेज रोड गरोट, मध्य प्रदेश से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप का संदेश हम तक पहुँचा है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फारिया, फारिया ताहिरा का संदेश हम तक पहुँचा है। और ये संदेश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का, रामदेवरा से दिनेश चौहान का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है हरिप्रसाद विश्वकर्मा का, प्रणाम लिख रहे हैं, आपको भी प्रणाम। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर का संदेश हम तक पहुंचा है। लिख रहे हैं किसी भी गीत में नाम शामिल करें, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब अहमद, भारती, बबलू कश्यप,

अशरफ अली, महेश अग्रवाल, सिराज मिथुन का संदेश दिल्ली से हम तक पहुंचाया है। ये संदेश मोताला महाराष्ट्र से। आप कई कई बार संदेश भेजते हैं जिससे थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने में, तो कोशिश करें एक ही बार भेजें। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से संदेश आया है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और जयपाल यादव का। ये अगला संदेश शबाना भारती, अरहान अहमद, नवाब अहमद और सूफिया नवाब का हम तक पहुंचा है। ये बिलराम बल्ली मारान से संदेश आया है। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो बदन से, और जिसकी फरमाइश है राजकुमारी जी हरित विहार कमलपुर से। कमालपुर से हमें ये संदेश भेजती हैं, दो बदन फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं, मौसम भी है और दस्तूर भी है। चलिए ये जो गीत है सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

जी हाँ, सभी को अपने अपने किसी की याद आ गई होगी ये गाना सुनकर। और फिर संदेश की बारी। ये संदेश आया है अहमद भाई फूलवाले दुखनी सदब आरजू, जो ही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले का

बसीड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आजमा परी, राबिया मतन शाह, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार का ये संदेश है। टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये मल्होत्रा परिवार का संदेश हम तक पहुंचा है। राधे श्याम वर्मा, ये इनका संदेश हम तक आया है और अगला जो संदेश है ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गुटाना जैन का भी संदेश हम तक पहुंचा है। नबी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद अब्बासी, किदवी नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिहा अंजुम खान का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश आया है, ये कौन है लिखने वाले, इनके नाम आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा और मंडी शर्मा का, इनके सभी परिवार के सदस्य का नाम शामिल करते हैं इसमें। श्री सुधाकर राजी जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजी जाधव, कुमार सचिन वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणति देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख भी हमें संदेश भेजते हैं। नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, अशरफ अली, महेश अग्रवाल, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये अगला संदेश कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना का भी हम तक संदेश पहुंचा है। और ये संदेश हमें भेजने वाले हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज घोरवाल, गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। कमलेश दिल्ली से, नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु का भी संदेश हम तक पहुंचा है। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वानी थांदी, आपका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके अलावा ये संदेश हम तक आया है खंडवा बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश है नागरकोरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म मासूम का, ये गीत है और पसंद कर रही हैं हेमा जी और साथ में है बच्चे पुनीत, सानिया और हेमा जी की पसंद का ये गीत, आइए सुनते हैं। ये हमें संदेश भेजते हैं कमालपुर पुराड़ी से, आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं फिल्म मासूम से।

परेशान मत होइए, आपके संदेश हम शामिल किए देते हैं। बहुत सारे हमारे सुनने वाले शिकायत भी कर रहे हैं, चलिए शामिल करते हैं। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या, गायकवाड़, ये हमें संदेश भेजते हैं, इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और ये प्रणाम लिखते हैं, आपको भी प्रणाम। सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, फरुखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा यूपी से ये संदेश आया है, हम तक पहुंचा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार भी हमें संदेश भेज रही हैं। अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, दाऊद सराय सहारनपुर से ये हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश आया नरेश, राम नरेश चिक, रेखा चिक, करण चिक, अल्पेश चिक, संगम विहार, हनुमान मंदिर दिल्ली से ये संदेश भेजते हैं हमें। और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी और परिवार के सभी सदस्य हैं, ये संदेश हमें भेजते हैं। इनका भी संदेश हमें मिला है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून का भी संदेश हम तक पहुंचा है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति, पौरुष, वाइट फील्ड, बेंगलुरु से हमें संदेश भेजते हैं। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान खुराना, इन सबका संदेश हमें मिला है। मस्किन परिवार का गोवर्धन

कॉलोनी दिल्ली से हमें ये संदेश पहुंचा है। आदाब लिखते हैं, आपको भी आदाब। गंज डुंडवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, ये हमारे पास पहुंचा है। गंज डुंडवारा कासगंज से ही अंसारी परिवार का संदेश जो मैं शामिल कर चुकी हूँ। गंज डुंडवारा से ही शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान का भी संदेश हम तक पहुँचा है। किशोर साबलकर धोंडराई वीड महाराष्ट्र से, इनका संदेश भी हमें हम तक आया है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, ये तारीफ लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये संदेश भवरपुर बसंता से, बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश गोविंदा, अक्षय कुमार देवांगन का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान कंजुडोडवारा से हमें संदेश भेजते हैं। ये अगला संदेश ये है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का नमस्ते भेजते हैं। ये हैं दादरी गेट भिवानी से हमें संदेश भेज रहे हैं। और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवा रहे हैं भागचंद साहू जी, भीलवाड़ा राजस्थान से हमें फरमाइश भेजते हैं। मुकेश का गाना सुनना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं फिल्म अनोखी रात का ये गीत सुनते हैं।

सागर में। इसी गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं पर बंद करते हैं। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो राष्ट्रपति माया सैंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की ये यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान

0: कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिविनी भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। बैठक के दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के समूचे दायरे की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी आज जंजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से यह अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया में दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu has embarked on a 3-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. On the first leg of her visit, the President will reach Moldova tomorrow, where she will meet and hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu. President Murmu will also meet the President of Parliament of Moldova, Igor Grosso, and will interact with the members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi,

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और आज के मेहमान में मैं आपके साथ हूँ रश्मि कुकरेती और मेरे साथ है मेरी सखी दर्शनी प्रिया। दर्शनी
1: जी, तो हम एक खास अतिथि का स्वागत कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में, गनी ब्रदर्स का, जो कि लोक गायकी में महारत हासिल रखते हैं और खास तौर से मांड गायकी में तो इनकी बड़ी सफलता है, इतने सिद्धहस्त हैं कि पूरा देश विदेश इनको जानता है। राजस्थान की जो लोक संगीत है मांड गायकी, वो इनके रग रग में भरा हुआ है। बीकानेर से आते हैं दोनों।
0: लोकगीत तो जो है ना, वो तो भारत की मिट्टी का संगीत है ना, और जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो हम और भी, जिसे कहते, समृद्ध होते हैं, और भी विकसित होते हैं और हम और भी सशक्त होते हैं
1: जी।
0: जब हम लोकगीत की बात करते हैं प्रिया, तो राजस्थान का जो लोकगीत है बड़ा समृद्ध इसका इतिहास है, तो शुरुआत मुझे लग रहा है कि क्यों ना एक मांड से की जाए।
2: देखिए, आपने बहुत सही शुरुआत करी है, क्योंकि रश्मि जी इतना अच्छा बोल रही हैं और हमारे दर्शनी जी भी, आपकी इतनी मीठी आवाज है, हमारी मांड जैसी ही आवाजें आपकी लग रही है। तो इसलिए क्या कि हमें बोलने से ज्यादा मांड से शुरुआत करना ही बेहतर लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे हमारी मांड का जो सॉन्ग है केसरिया बालम, वो किसी भी खुशी के मौके पर गाया जाता है। राजा महाराजाओं में शादियां होती थी, अभी भी होती है, अभी हमारे प्रोग्राम बहुत होने लगे हैं शादियों में, मतलब बड़ी शादियां होती हैं, तो उसमें केसरिया बालम से शुरुआत करते हैं, तो उसी से हम शुरू करते हैं।

0: वाह वाह वाह वाह, आप हमारे
1: डूब
0: देश
1: जाने
0: आ
1: को
0: चुके हैं और आप हमारे अतिथि बन चुके
1: वकील की गायकी में डूब जाने का दिल
0: हैं।
1: करता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, जो ये
1: वाह,
0: हमारा देश है, आकाशवाणी का गोल का जो स्टूडियो है, तो ये तो आपका स्वागत कर ही रहा है और बहुत सारे श्रोताओं के दिल आपके स्वागत में कालीन बिछाए बैठे हैं। आप उनके दिल पर राज कर रहे हैं अपनी गायकी से।
1: आप राजस्थान के छोटे से शहर, छोटे से गांव से हैं, बीकानेर से। आपने फिल्मों में भी खूब संगीत दिया है, आपने सूफी एल्बम्स के लिए, पंजाबी गायकी के लिए, काफी सारे एल्बम्स के लिए आपने संगीत दिया है।
2: जी
1: वो सफर थोड़ा बताएं कि वहां बीकानेर से मुंबई का सफर ये कैसे हुआ था।
2: ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो बम्बई का सोचता है अपनी समझ पकड़ने के बाद, तो वो बम्बई जो कलाकार होता है, हर कलाकार का सपना होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। कुछ कलाकारों की लिमिट होती है कि मैं थोड़ा सा संगीत सीखूंगा, टीचर लग जाऊंगा, तो वो वहां तक उसको सफलता मिल जाती है। और कुछ कलाकारों का ये सपना होता है कि मैं पूरे दुनिया में नाम करूँ। तो नाम होने के जो जरिए हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है ना, या फिर रेडियो तो है ही है। और रेडियो की बात बीच में हम करना इसलिए पसंद करते हैं कि हमारी युवा वाणी आपका एक प्रोग्राम आता था रेडियो
0: जी,
2: में,
0: जी
2: तो हम लोग 14 14 15 15 साल के थे। उस वक्त हमने युवा वाणी में गाना शुरू किया, तो हमें बीच में भी गुलाम अली साहब के प्रोग्राम सुना हमने, तो उन्होंने भी ये याद दिलाया कि मैंने 15 साल की उम्र में, या युवा वाणी बोलते, वो उर्दू में कुछ और बोलते होंगे,
0: जी युवाणी ही बोलते हैं।
2: हाँ युवाणी, तो उन्होंने भी उससे शुरू किया प्रोग्राम, तो हमें बड़ी खुशी मिली कि यार रेडियो से ये भी जुड़े हुए हैं।
0: आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम है जो कि युवा कलाकारों को मंच देता है,
2: मंच देता है, वाह
0: और
2: वाह
0: जो हम
2: वाह।
0: तो कहेंगे कि कलाकारों की और बहुत बड़े बड़ी प्रतिभाओं की नर्सरी रहा है।

0: तो इसमें से
1: वाह
0: जो निकला है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा है।
2: जी
1: जी
2: बिल्कुल
0: जी
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो युवाणी से जो है ना हमने शुरुआत की, और हमारे एक दोस्त थे हमारे गांव के जो गनी भाई साहब के मेरे
2: खास
1: परम मित्र
2: श्री लाल तावणिया शर्मा,
0: जी
1: तो वो पहले कलकत्ता रहते थे, वहीं पढ़े थे, वो बाद में दिल्ली भी रहे, फिर अभी बीकानेर में इन दिनों। तो हमारी जिंदगी में मेरे दोस्त श्रीलाल का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा नहीं मतलब वो सब कुछ, अगर वो शुरुआत नहीं होती तो शायद हम गांव में ही रह जाते,
2: वो गांव से कलकत्ता ले
1: तो उनका हर जगह हमारा नाम उसका आ ही जाता है क्योंकि वो दिल में बसा हुआ है, उसने बहुत साथ दिया। तो कलकत्ते ले गए वो, हमारे पिताजी ने इतना अच्छा गाते हुए गांव में रह गए, लोगों तक आवाज पहुंच नहीं पाई। हमें अभी पता चलता है कि वो कितने बड़े सिंगर थे, अगर वो बाहर निकलते तो हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते, मगर खैर ईश्वर की मर्जी होती है, वैसा ही होता है। तो हमने सीखा उनसे, पिताजी से, फिर सोचा कि पिताजी तो यहाँ गांव में ये गाना बजाना जो है ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, मगर हमें ऐसा करना नहीं है, या तो ये सिखाते नहीं हमें, अगर सिखा दिया तो हम लोग अब आगे इसको लेके जाएंगे। बचपन से हम ताजुब करते हैं कि उस जमाने में हमारे जहन में ये बातें क्यों आई, कैसे आ गई। तब ईश्वर को मानना पड़ता है कि उसको जहाँ लेके जाना होता है ना तो वो रास्ते वो बनाता है अपने आप। तो श्रीलाल से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, अगर हम जाना चाहते हैं, निकलना चाहता हूँ गांव से, तो वो बोला यार कलकत्ते तो मैं ले जा सकता हूँ, बम्बई का तो मुझे मालूम नहीं। तो हमने सोचा कि गांव में जो है ना हमारी जो भाषा, जैसे हरियाणा की भाषा है ना, उससे भी कहीं ज्यादा कड़क भाषा है गांव में।
0: अच्छा।
1: और हमने बचपन से शौक कर लिया गजलों का, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को सुनना, लता जी।
0: मारवाड़ी से आप उर्दू पर आए?
1: मारवाड़ी से सीधा, ऐसी मारवाड़ी, अरे भाई कटे हो गए तू के यार के, ऐसी भाषा के आप समझ नहीं पाएंगे, उतनी खेचा उसमें था। खैर तो अचानक जाके जंप मार दिया ने उर्दू में जाके, जो
0: नफासत जिसका दूसरा
1: नफासत
0: नाम है।
1: तो नफासत और जो हमारी गांव की जो भाषा है उसमें तो रात दिन का अंतर है। तो खैर साहब हमने सोचा कि कलकत्ता जाएंगे तो म्यूजिक को भी थोड़ा पॉलिश हो जाएगी और गाने बजाने के रहन सहन की, बोलने की तमीज थोड़ी आएगी, फिर बम्बई जाएंगे, ये जहन में सोचा।
0: हाँ।
1: तो कलकत्ते गए तो श्रीलाल ने 12 महीने तक अपने पास ही रखा, पहले मैं अकेला गया तो उसे 1 साल तक अपने पास रखा, खाना पीना बैठना उठना सारा कुछ रहना सहना उसी ने किया। ठीक है, तो बाद में हमारा टैलेंट था मेरा, हम लोगों ने गुलाम अली साहब को, मेहदी हसन साहब को, हमें बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पीसा लिया था उनको एकदम, इतनी लगन थी, इतनी दीवानगी कि गुलाम अली साहब को हम गाते थे ना तो लोग पहचान नहीं पाते थे कि वो गा रहे हम गा रहे,
0: तो फिर हो जाए एक ऐसा ही कुछ।
1: हाँ, और गुलाम अली साहब को काफी लोगों ने कलकत्ते में कह भी दिया था कि गुलाम अली भाई आपको पर्दा लगा देंगे ना तो आपकी गजल जो है, अगर आप गनी भाई अली भाई ये गुआएंगे तो आपको
0: तो दोनों में
1: आप महसूस नहीं करेंगे,
0: जी जी,
1: आप मतलब पहचान नहीं पाएंगे गुलाम अली गा रहे हैं,
0: अंतर नहीं कर
1: सकते। गुलाम अली साहब की हमने गायकी काफी गाई
0: जी
1: उन दिनों में, वो गजल चलती थी।

0: हम लगातार ट्यून कर रहे हैं गनी ब्रदर से और बातचीत कर रहे हैं उनकी मांड गायकी के सफर को लेकर। सर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे से गांव बीकानेर से निकल के मुंबई पहुंचे, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, अलग अलग तरह के लोग हैं, क्या कुछ कठिनाइयां आई शुरू के वक्त में, और जब आपने उन कठिनाइयों को पार पा लिया तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को जो इस दिशा में आना चाहते हैं और मांड गायकी के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे?
1: उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमने गांव से कलकत्ता, कलकत्ता से बम्बई गए, मगर वो सफर कितना कठिन कितना मुश्किल रहा, मगर हमें तो एक कलकत्ते के लिए एक श्रीलाल दोस्त मिल गया और बम्बई के लिए एक दाऊलाल शर्मा मिल गया जो हमारे अली भाई का दोस्त खास था। बम्बई में एक पीआर जोशी भी रहे, उन दोस्तों ने हमें महसूस नहीं होने दी स्ट्रगल जो है
0: जी।
1: और मजे की बात यह है कि हम लोग जब भी पैसे वैसे खत्म होते थे तो उनको फोन करते थे, वो भिवंडी रहते थे। मैंने कहा यार अभी तो स्ट्रगल होने मुश्किल हो रही है,
0: गॉडफादर की तरह थे।
1: हम फोन करते थे कि भैया अभी हमारी स्ट्रगल करने के लिए पैसा वैसा खत्म हो गया है, हम कैसे करेंगे? तो बोले यार आ जाओ अभी जागरण लगवाते हैं और कुछ इंतजाम हो जाएगा। तो हम जाते थे फिर भिवंडी, तो एक रात को जागरण लगा दिया जो रथ जगह या आप बोलते हैं
0: माता की चौकी,
1: माता जी की चौकी जैसे होती है वैसे, वो हनुमान जी का राम जी का जागरण वागरण लगा के जो है 5-7-10 हज़ार रुपए हम लोगों को बना के दे देते थे, वो लेके हम लोग फिर मुंबई में वापस चले जाते थे।
0: क्या बात है।
1: तो इस तरह से बम्बई का सफर कटा, तो हमें दोस्तों की वजह से ये कठिनाई ज्यादा नहीं हुई, मगर जो अभी जो बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं
0: जी जी,
1: जो बम्बई जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले अगर म्यूजिक में जाना चाहते हैं, हम तो म्यूजिक की बात करेंगे
0: जी,
1: वो बच्चे जो है पहले म्यूजिक सीखें
0: जी, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: पहले म्यूजिक सीखें और किसी गुरु से सीखें
0: जी,
1: और गुरु को पूछें कि गुरुजी हमारा म्यूजिक अब कहाँ तक पहुंचा है, अब हम बाहर जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कुछ अच्छा बनने की? तो गुरुजी बोलेंगे बेटा अब तुम जा सकते हो, तुम अभी बहुत लायक हो और तुम सीख चुके हो, रियाज कर चुके हो थोड़ा, अब स्ट्रगल करने के काबिल हो, क्यों वैसे तो रियाज जिंदगी भर खत्म होता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल ठीक कहा।
1: तो इस तरह से गुरुजी बोले तो जाओ, क्यों आजकल क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है यंग लड़के कॉलेज में 2-3-4 दोस्तों के साथ कोई गाना सुना दिया और उसने बोल दिया हाँ यार क्या गाते हो, वाह वाह
2: वाह कर दी,
1: हाँ उन्होंने वाह वाह कर दी तो वो फूल गए बेचारे,
0: उन्हें लगता
1: और दोस्त फोर्स से बोल देते हैं कि यार आपको तो यार बम्बई जाना चाहिए, है ना, फट से
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो वो बम्बई निकल जाते हैं,
0: वो युवा जोश होता है,
1: युवा जोश। उस युवा जोश में क्या होता है कि होश खो बैठते हैं बच्चे जो है तो वो निकल जाते हैं मुंबई, फिर वहां बहुत स्ट्रगल बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों को, सीखिए और सीखने के बाद आपके गले में कुदरत की देन है। अच्छा एक बात और है, गुरुजी से आप ये पूछेंगे तो गुरुजी बता देंगे कि आप सीखने काबिल भी हैं या नहीं
0: जी। बिल्कुल,
1: क्योंकि आप में म्यूजिक ऐसी चीज है कि उसमें गॉड गिफ्ट जरूरी है, अगर गॉड गिफ्ट मतलब गला आपका अच्छा जरूरी है ना, अगर आपका गला अच्छा नहीं है ना तो फिर आप मत
0: सीखिए, कितने भी प्रयास कर लें,
1: कितने प्रयास करो आप सीख सकते हो, टीचर लग सकते हो,
2: गॉड गिफ्ट तो जरूरी है,
1: गॉड गिफ्ट जरूरी है। तो ये चीज़,
0: तो हमारे युवाओं को आप ये संदेश दे रहे हैं कि पहले वो खुद को मांझे और चमकाएं, आधार बनाएं, फिर वो मुंबई का रुख करें
1: करें।
0: तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि तभी बनता है सोना जब वो स्वर्णकार के हाथों जो है अच्छे से वो पिटता है। तो हमारे युवाओं को भी पहले खूब कोशिश करनी चाहिए और गायकी का प्रयास करना चाहिए, रियाज करना चाहिए, और रियाज जब खूब हो जाए और ये लगे आत्मविश्वास कि हम कर सकते हैं तो मुंबई का रुख करें। सर, मांड गायकी में मीरा के एल्बम्स भी कुछ निकले हैं, मुझे लगता है मारो सावरिया करके कुछ मांड गायकी में है, तो आप अगर सुना सके तो कुछ एक
1: पंक्तियां। यानी ये भी हमें इतनी खुशी है कि हम लोगों की गायी हुई जो मीरा के भजन है
0: जी जी,
1: मारा सावरिया है और भी है ना,
2: बोल सुआ राम राम,
1: बोल सुआ राम राम,
0: सुआ
1: मतलब तोता
0: जी जी।

0: इतने हिट है कि हमें एक बार फोन आता है बंबई में कि भाई अली गनी साहब से हम बात करना चाहते हैं और हम मीरा जी के मेड़ते से बोल रहे हैं।
1: अच्छा,
0: वहाँ का जो ट्रस्ट है, मीरा जी का जो खास शहर है, गांव है
1: जी,
0: वहाँ से हम बोल रहे हैं, हम आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपकी कैसेट सुबह शाम मंदिर में
2: बजती है,
0: आपकी ही बजती है।
1: ओहो, क्या बात है।
0: तो अब हमने सोचा था कि 10-12 साल से बज रही है, अब हम सोच रहे हैं कि इतनी कैसेट बजी है तो इनको लाइव सुना जाए, तो हमारा प्लान है आप बुलाने का, तो हम गए भी वहाँ, प्रोग्राम करके आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो उन भजनों में से कोई हम आपको
1: जी स्वागत है।

0: केवल मैं ही नहीं, स्टूडियो में बैठे लोग ही नहीं, श्रोता भी जो देश भर से आपको सुन रहे हैं, आपकी गायकी को सराह रहे होंगे, आपकी गायकी की मिठास वहां तक पहुंच रही होगी। और सर ठीक ही कहा गया है कि राजस्थान की जो मिट्टी है ना, वो वीर और वीरांगनाओं की तो है ही, लेकिन लोक गायकी की भी वो मिट्टी है। तो जो मिठास आपके सुरों में है वो निश्चित ही एक तप और साधना से निकली हुई चीज है।
1: हम लोग जब कलकत्ते गए ना मैडम
0: जी,
1: तो कलकत्ते में हमारी उस वक्त गले में तैयारी इतनी करके गए थे, वो तैयारी अभी भी काम कर रही है, वही चीज है। तो जैसे ये है, सांवरिया नारी बदन लगे।

0: मीठी। तो कलकत्ते में हमारे कुछ बंगाली भाई दोस्त थे, क्योंकि
1: जी
0: बंगाली लोगों में हमारे कलकत्ते में बहुत म्यूजिक का
1: हाँ बहुत
0: शौक है,
1: बहुत
0: बहुत पागल
1: कला का
0: लोग,
1: केंद्र है,
0: कला का केंद्र है। तो वो
1: हर
0: बोले
1: घर
0: कि
1: में
0: आप
1: गायकी।
0: लोग जो राजस्थान से आए हो तो क्या वहाँ की जो बालू रेत है उससे गला मांझ के आते हो क्या?
1: बहुत सुंदर कहा उन्होंने, और
0: इतना
1: सच
0: जो
1: में आप मांझ के
0: हाँ,
1: गए थे।
0: अब रही बात के संगीत जो फोक है,
1: जी
0: आप मुझे बताऊं दर्शनी जी, फोक हर जगह का अच्छा है,
1: जी
0: किसी जगह का
1: बिल्कुल
0: फोक कम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: अपना अपना
1: हर लोक
0: ढंग है,
1: गायकी की अपनी मिठास
0: हर लोग
1: मिठास
0: गाए थे। मगर क्या है कि जैसे सारे स्टेट वाले सिंगर म्यूजिक के लोग सब ये मानने लगे हैं और मानते आ रहे हैं कि राजस्थान का फिर भी कुछ अलग है। क्यों कि हमने एक शादी अटेंड करी, शादी जब हल्दी का
1: जी
0: रस्म होता है उससे लेके जो लड़कियां विदा होती है, शादी कंप्लीट हो जाती है, फिर मेहमान विदा होते हैं, घर की जो बेटियां बुआएं वो जो आई हुई होती हैं उनको सियोफ करने के लिए जाते हैं ना जैसे, तो वो उनको वापस आने के लिए बोलती है औरतें, गाना ऐसा होता है। उस गाने तक हमने सुना ना, तब सोचा करे बाप रे बाप, वाकई में
1: वो
0: राजस्थान का म्यूजिक
1: पीर,
0: रिच है।
1: वो पीर है उस
0: अरे
1: गाने में।
0: बाप, हर रस्म का गाना है।
1: जी जी
0: और आप औरतें,
1: और
0: 20-20 औरतें मिलके गाती हैं
1: यही तो
0: दरअसल।
1: हमारी लोक संस्कृति की संपदा है,
0: जी जी जी
1: हर चीज के लिए गायकी उपलब्ध है, ठुमरी से लेकर अलग अलग, जैसे मांड गायकी की बात कर रहे हैं वो भी है। एक सवाल और है जो मेरे
0: जी
1: जहन में बहुत देर से है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप दोनों बहुत छोटी आयु से साथ साथ गा रहे हैं, तकरीबन 6 वर्ष की उम्र से ही गा रहे हैं, पिताजी ने आप दोनों को सिखाया है, कभी आपस में कोई मनमुटाव, कभी आपस में परस्पर वैमनस्य झगड़ा कुछ हुआ, या फिर विषयांतर हुए गाने को लेकर?
0: विषयांतर अगर कुछ ज्यादा हुआ होता तो अब तक साथ में नजर नहीं आते आप।
1: जी
0: अगर कुछ ज्यादा हुआ होता, हल्का सा तो होता है, नहीं यार ये ठीक नहीं है
2: थोड़ी देर के लिए
0: जिंदगी,
2: होता है।
0: हल्के से थोड़ी देर हो जाता है, क्योंकि जैसे कुछ सुर हमको अच्छे लगते हैं यार इस गजल को जो है इस राग में कंपोज करो तो ज्यादा अच्छा होता है, कहते नहीं इसमें नहीं इसमें अच्छा रहेगा। हालांकि वो इन्होंने अपने समझ से कहा है और मैंने मेरे समझ से कहा है, तो हल्का सा थोड़ा होता है, मगर वो कुछ वो होने वाली बात नहीं होती। और कुछ ऐसी बातें होती तो फिर इतना लंबा साथ कैसे चल सकता है।
3: जी, जो संगीत में तो इतनी ताकत है वो तो अजनबियों को दोस्त बना देता है,
0: वाह
3: तो फिर ये
0: वाह
3: तो
0: वाह,
3: खून के रिश्ते हैं, तो फिर ये
0: जी
3: तो क्या बात है। और कहते हैं ना, एक से एक मिलता है तो 11 हो जाते
0: ग्यारह
3: हैं,
0: हो
3: तो
0: जाता है।
3: सुर भी जहाँ संभालना होता है, जहाँ कुछ विशेष मुर्कियाँ लेनी होती हैं, तो क्या बात है। खासकर जब मंच पर जब प्रस्तुति कर रहे होते हैं ना, तो गायक को भी
1: तालमेल
3: हाँ,
1: बिठाना, ये
3: तालमेल
1: भी
3: बिठाना,
1: हाँ,
3: वही
1: कितने सालों तक
3: हाँ,
1: आपने
3: और
1: तालमेल
3: सुनने वालों
1: बिठाया।
3: के लिए भी विशेष आनंद
1: हाँ
3: है,
1: हाँ
3: उनको
1: बिल्कुल,
3: भी आनंद आता है। आपने जो ये मांड गायकी लोक संगीत तो आपने सुनाया, पर फिल्मों में भी मांड के बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं,
0: बिल्कुल
3: तो आप बताएं कि आपको जो पसंद आए हैं

0: कृपा कर सकते हो आप? तो मैंने कहा भैया ऐसा है, इलार उनका कैसा स्टाइल है, उनका हम एल्बम कर चुके, हंसराज हंस सूफी सिंगर है उनका हम कर चुके, पंकज उदास गजल सिंगर हैं उनका कर चुके, अलका याग्निक को गवा चुके, अब कितनी वैरायटी आपको चाहिए? कहाँ तो इलारून है।
1: इला अरुण की आप बात कर रहे हैं, इला जी तो खुद बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, उनके तो गाए हुए राजस्थानी लोक संगीत
2: अपनी एक स्टाइल है।
1: जी बिल्कुल, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज गाना उनका,
0: वो भी एक कलर अलग है,
3: बिल्कुल खसक है उनकी आवाज में।
2: अब उनके लिए अगर एल्बम करेंगे तो फिर उन्हीं के हिसाब का गाना बनाना पड़ेगा ना
1: भाई। लम्हे में जो उन्होंने गाया है भाई, क्या बात है,
3: वो अद्वितीय
1: है ना,
3: वो तो इतिहास बन
0: गया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, इला जी हमारे साथ तो दो एल्बम कर चुकी हैं, हमारे साथ घरेलू तालुकात है, उनकी एक ही बेटी है, उनकी बेटी की शादी में उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किए थे, तो वहाँ गुलाम अली साहब की गजल का भी रखा, हमारा भी रखा, खुद का भी किया, नाटक भी किया, वो एक्टर भी है बहुत बड़ी। तो उनके अंदर वो बोली, कह रहे कि नहीं साहब, अली साहब मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो गाने में एक्टिंग करती हूँ, तब लोगों को पसंद आ जाता है। मैं कोई इला जी ऐसा है कि जब आपको एक साल का बच्चा या दो साल का बच्चा, उससे आप गाना गवाइए, बोल सारे ऐसे करेगा ना, तो भी सुर में लगेगा, सुरों के आसपास ही नहीं है मगर आपको बेसुरा नहीं लगेगा, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आप अपने अंदाज में गाती ना तो रू आपकी लगी रहती है गाने के अंदर, है ना, और दिल से गाती है आप, गागर हो जो गुमे हो, और वो कौन सा लम्हे का गाना कितना प्यारा गाना था, लता जी के साथ मैच हो रही, देखिए आप
1: मोरनी बागा, तो कुछ हो जाए जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद लता जी ने उठाया था वो गीत।
0: हाँ
2: मेरा तुम छन चूड़िया

0: तो मैं आपको लेकर चलती हूँ थोड़े और पीछे यादों के गलियारों
1: जी,
0: में।
1: जी,
0: हालांकि वो फिल्म तो कभी ना भूलने लायक है प्रिया, मैंने बहुत बार देखी है, पाकीज़ा, मतलब एक कालजयी फिल्म, मास्टरपीस। उसमें भी तो बहुत सारे मांड के प्रयोग हुए हैं
2: जी। हाँ, बहुत हुए,
3: बहुत हुए ना। वो हमारे राजस्थान के म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम मोहम्मद साहब,
2: बीकानेर के थे, वो
3: हमारे शहर के थे।
0: तो सुनाइए कुछ।

0: हाँ ये
1: तो
0: मांड
1: मैं
0: सच में
1: कहूंगी
0: है।
1: साक्षात सरस्वती कंठ में विराजमान है,
0: हाँ
1: और आपने मांड गायकी को जो पुनर्जीवित किया है, ये इतिहास याद रखेगा
0: और
1: कि
0: अभी
1: धन्यवाद।
0: आपको नौशाद साहब ने भी मांड को कितना इस्तेमाल किया है।
1: जी जी

0: ये हमारी गजल,
1: वाह,
0: ये गजल हमने रिकॉर्ड की पंकज उदास साहब की, बहुत बड़ा एल्बम था, तो उसमें ये और फिर तेरी कहानी ये दोनों साथ में चलते थे। हमारी इस एल्बम से ही वीडियो क्लिप शुरू हुई थी
1: जी,
0: प्राइवेट एल्बम की, पहले वीडियो नहीं बनते थे, तो ये गाना साथ में चलता था। बोले अली गनी साहब का ये गाना कभी आंसू कभी खुशबू और नौशाद साहब का फिर तेरी कहानी, ये दोनों का नाम साथ में आते थे रेडियो में।

0: अब देखिए, आंसू की जो फील है, एक मिसरे में तीन कलर है, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा, तीनों रंग अलग अलग है एक मिसरे के अंदर। तो कंपोजर को जो है इसमें बहुत ही मतलब
1: पूरी जान डालनी पड़ती
0: पूरी जान डालनी पड़ती है कभी।

0: वाह वाह
1: ऐसा
0: वाह
1: लगता है सुरों का ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे, बदस्तूर जारी रहे।
2: इस समय तो गोल्ड के स्टूडियो में सुर की धारा बह रही है। चलते चलते और कुछ सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को।

0: वाह वाह वाह वाह
1: वाह,
0: भाई हम तो
1: मदमस्त हो गए। आज समूचा राजस्थान स्टूडियो में उतर आया है।
0: जी बिल्कुल, और हम तो कहेंगे यूं पहलू में बैठे रहो। लेकिन जो घड़ी है वो ये कह रही है कि समय हो चला है इस महफिल को समेटने का। जो आज के मेहमान कार्यक्रम में सजी थी, मन तो कर रहा है कि इसी तरह से आपके गीत सुनते जाएं, गजलें सुनते जाएं, नगमे सुनते जाएं, और जो मांड की जो मिठास है, मिट्टी की खुशबू है, उससे सरोबार रहें, लबरेज रहें। लेकिन समेटने का समय हो गया है कार्यक्रम को। प्रिया
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जिस मांड गायकी के ताज के आप नगीने हैं, कोहिनूर, वो कोहिनूर हीरा बने रहे, और लोक गायकी को आप सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों तक भी पहुंचाए, इसी अपेक्षा के साथ
0: और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ।
2: बिल्कुल,
1: और आपको पद्म सम्मान भी मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और
2: ऐसे लोगों की दुआओं से मिला है, जो भी मिला है दुआओं का खेल है
0: जी।
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको कुछ सुनाया
0: जी। समेटते हैं हम अपना कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। आज के मेहमान में आज हमारे साथ थे गनी ब्रदर्स और मेरी सखी प्रिया दर्शनी, और मैं रश्मि कुकरेती। हम आपसे कहते हैं
1: नमस्कार
0: नमस्कार
2: नमस्कार।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट, सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

12:11 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार जो आता है केवल और केवल रविवार कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है सुपरहिट फिल्म 1970 में रिलीज हुई फिल्म आन मिलो सजना। आज आपके साथ हूं मैं आशीष, सभी को नमस्कार। और आन मिलो सजना, सचिन भौमिक ने इसको कहानी को लिखा और साथ ही साथ इस कहानी के साथ उनके साथ निभाया। पटकथा में एहसान रिजवी ने, जिन्होंने संवाद लिखे, और सचिन भौमिक के द्वारा ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया गया। जगदीश कुमार इस फिल्म के थे प्रोड्यूसर और मुकुल दत्त साथ में सचिन भौमिक के थे निर्देशन में। और फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख ने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जबकि

अन्य भूमिकाओं में विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ और निरूपा राय सहायक कलाकारों में थे। संगीत यादगार संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी के। ये फिल्म सुपरहिट रही और ये फिल्म लगातार जो राजेश खन्ना ने रिकॉर्ड बनाया था उस समय 1969 से लेकर 1971 के बीच लगातार 17 सुपर डुपर हिट फिल्म्स देने का जो आज तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है, उन 17 फिल्मों में से एक थी आन मिलो सजना। कैमरा पक्षभार संभाला इस फिल्म में वी बाबा साहब ने और इस फिल्म के एडिटर थे प्रताप दवे। और फिल्म, जैसा हमने बताया कि राजेश खन्ना की 17 लगातार सुपरहिट फिल्मों में से एक रही उस समय की फिल्म आन मिलो सजना।

आन मिलो सजना, जिसमें राजेश खन्ना ने किरदार निभाया अजीत का, आशा पारेख ने किरदार निभाया वर्षा और दीपाली दोनों किरदार निभाए। जी हाँ, डबल रोल नहीं था लेकिन किरदार दो निभाए, कैसे बताएंगे आपको। विनोद खन्ना थे अनिल चौधरी के रोल में, निरूपा राय सावित्री चौधरी जो अनिल की माँ है। इसके अलावा राजेंद्र नाथ, जूनियर महमूद, तरुण बोस, सुजीत कुमार, अभी भट्टाचार्य रमेश बाबू के किरदार में थे अजीत के पिता, इंद्राणी मुखर्जी, दुलारी, चमनपुरी दीवान, बीरबल, शिवराज, सुंदर, और साथ में थी निरूपा राय, ये जो सावित्री देवी थी। और अरुणा ईरानी ने किरदार निभाया था दीपाली का, जो कि वर्षा यानी आशा पारे की सहेली होती है। कहानी क्या है बताते हैं। सावित्री चौधरी एक विधवा लेकिन बेहद अमीर औरत हैं, जो अपने राजमहल में रहती हैं और तमाम जायदाद और मिल्कियत की मालकिन हैं, लेकिन अक्सर बीमार भी रहती हैं। इकलौता बेटा है अनिल, जो कि पैसे की कदर नहीं करता, अय्याशी में डूबा रहता है। मौज मस्ती उसका जीवन का एकमात्र मकसद है, इंसानियत से कोसों दूर, अच्छाई तो मानो उसे छू कर भी नहीं गई। और मां दिन रात इस इंतजार में रहती है कि कब उसका लाल, कब उसका इकलौता बेटा सुधरेगा और घर बसाएगा। वो भी अपनी बहू का, पोते पोतियों का मुंह देखेगी, लेकिन अनिल वो इस तरफ सोचता भी नहीं है। उसे केवल और केवल अपने बाप दादाओं की जो जायदाद है, संपत्ति है, वो हथियानी है अपनी मां से इस इंतजार में। और ये बात सावित्री अच्छी तरह जानती है कि वो केवल उसके मरने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो सब कुछ हासिल कर सके, और अगर जीते जी उसको मिल गया तो उसने दाने दाने को मोहताज कर देना है सावित्री को। इसी बीच दीवान के कहने पर अनिल ये सोचता है कि क्यों ना मां के साथ नाटक किया जाए और अपनी एक प्रेमिका जो दीपाली है उसको मां के सामने मंगेतर के तौर पर पेश किया जाए, ताकि दीपाली उनका दिल जीत सके। लेकिन दीपाली नहीं मानती, तब वो उसे डरा धमका कर मनाने की कोशिश करता है और उसकी सहेली वर्षा जो है वो दीपाली बनकर आ जाती है हवेली में। दीपाली यानी वर्षा दिन रात सावित्री की सेवा करती है। सावित्री भी दीपाली से बेहद मुतासिर होती है, इंप्रेस होती है और उसके रूप में अपनी बेटी और बहू का रूप देखती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सब एक चाल चली है अनिल ने, जबकि दीपाली जो है वो उसी गांव के एक लड़के अजीत से करती है बेहद प्यार। अजीत जो इंसानियत से लबरेज है, इंसान की कद्र करता है, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करता है, छोटों को प्यार देता है, हर एक के काम आता है।

और अजीत के पिता ही इस जुर्म में सजा काट चुके हैं कि उन्होंने सावित्री देवी के पति का कत्ल किया था। लेकिन सावित्री इस बात को नहीं जानती है, अजीत भी इस बात को नहीं जानता। वो तो बस मस्त मौला होकर सभी की मदद करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है और दीपाली उसे टूट कर प्यार करती है।

दूसरी तरफ सावित्री देवी की दिन रात की सेवा के बाद सावित्री देवी दीपाली से इस कदर मुतासिर होती हैं, प्रभावित होती हैं कि वो तय कर लेती हैं कि वो इसे अपने घर की बहू बनाएंगी अगर ये चाहेगी तो, और साथ ही साथ अपनी संपत्ति का, सारी जायदाद का एक लौता वारिस वो दीपाली को ही बनाना चाहती हैं। लेकिन अनिल तो कुछ और ही मंसूबे बनाकर बैठा है। वो तो यही चाहता है कि किसी तरह से माँ को बहला फुसला कर सारी जायदाद अपने नाम कर ले। ये तो केवल एक नाटक है अच्छे बनने का। माँ के साथ अक्सर अब मंदिर जाने लगा है, दान पुण्य में हाथ बटाने लगा है, लेकिन पीछे मकसद वही है। हालांकि दीपाली जानती है और उधर अजीत भी जानता है। अजीत कई बार कहता है कि तुम वहां पर मत रहो, लेकिन दीपाली कहती है मैं केवल सावित्री देवी के लिए ही रह रही हूं, उसमें एक माँ का रूप देखती हूँ और उन्हें धोखा देते हुए अनिल को देखकर बेहद दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि वक्त आने पर अनिल की असलियत सावित्री माँ को पता चल जाए। इस बीच अजीत भी वहां पर नौकरी करता है उसी एस्टेट में, और उसकी भी ईमानदारी से सावित्री देवी काफी प्रभावित होती हैं। एक दिन ऐसे ही अपनी हवेली में पूरे जश्न के साथ, पूरे जोश के साथ दीपाली का जन्मदिन मनाया जाता है। अनिल भी वहां पर पहुंच रहता है और वहां पर आता है अजीत दीपाली के जन्मदिन पर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और

0: शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

12:49 और 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है 1970 में रिलीज हुई फिल्म राजेश खन्ना और आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में फिल्म आन मिलो सजना

धीरे धीरे अनिल भी दीपाली की ओर खींचा चला जा रहा है। वो देख रहा है कि उसकी माँ दीपाली को किस कदर पसंद करती है और उस पर आंख बंद कर विश्वास भी करती है। अब उसके मन में एक बात आती है कि अगर दीपाली के साथ उसका विवाह हो जाए तो एक तीर से दो निशाने। दीपाली बेहद खूबसूरत लड़की है, वो उसे जीवन में उसे मिल जाएगी और साथ ही साथ माँ की तमाम जायदाद का वो इकलौता वारिस बन जाएगा, क्योंकि जो कुछ दीपाली को माँ देगी वो आखिरकार अनिल को ही तो मिलेगा। लेकिन दीपाली अनिल की मंशा को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो उससे दूरी बनाए रखती है। एक तरह से कहें कि वो उससे नफरत करती है तो कहना गलत नहीं होगा, और वो तो बस अजीत के साथ सुंदर सपने देखने में मग्न है। और एक बार सावित्री देवी के कहने पर जब वो रिश्ते की बात छेड़ती है तो वो अपने मन की बात बता देती है कि माँ, मैं अजीत से करती हूँ प्यार और उसी की ही जीवन संगनी बनना पसंद करूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। सावित्री देवी, जो दीपाली को अपनी बेटी की तरह चाहने लग गई हैं, वो कहती हैं कि मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारा विवाह होगा तो अजीत के साथ ही। और इधर अनिल को जब ये बात पता चलती है तो बेहद आग बबूला होता है और वो अजीत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगता है और उसे रास्ते से हटाने की हर कोशिश करने लगता है। समय समय पर उसे नीचा दिखाता है, सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन अजीत अपने संस्कारों के चलते कुछ आगे से पलटकर जवाब नहीं देता, केवल और केवल दीपाली और सावित्री देवी की वजह से। और इधर दीपाली अजीत से मिलना जुलना जारी रखती है।

सावित्री देवी के दिल में अजीत के लिए कैसे नफरत पैदा करे, अनिल यही सोचता रहता है। उसे मौका हाथ लगता है और वो सावित्री देवी को बता देता है कि अजीत के पिता ने ही आपके पति यानी मेरे पिता का कत्ल किया था। और सावित्री देवी सुनने के बाद दीपाली को कहती है कि किसी भी हालत में अजीत का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जा सकता। लेकिन समय बीतता है, सच्चाई का पता चलता है कि उसके पिता बेकसूर थे, उन्हें नाहक ही झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। अब ये चाल भी अनिल की विफल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो अब वो करे तो करे क्या। इसके बाद मोहन नाम का एक आदमी है, उसी गांव में रहता है जिसकी पत्नी है सीता, जो अजीत को अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहती है। सीता के बलात्कार और उसकी हत्या के झूठे जुर्म में अनिल फंसा देता है अजीत को। अजीत के पीछे पुलिस है और

और वो भागा फिर रहा है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच की आखिर में जीत ही होती है, और होता भी यही है। अजीत और अनिल के बीच होती है हाथापाई, और एक समय ऐसा आता है जब अनिल मरने की कगार पर है, लेकिन तभी अजीत उसे बचाता है। अनिल को शर्मिंदगी का एहसास होता है, अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं, और आखिर में अजीत ने फिर भी उसका साथ दिया। वो अपना जुर्म कबूल करता है और सभी के सामने अपनी मां के चरण छूकर माफी मांगता है। मां, जो मां ही होती है, सब कुछ भूलकर अनिल को सीने से लगा लेती है और एक बार फिर से माफ कर देती है। लेकिन इस बार अनिल असलियत में सुधर गया है, और ये सब देखने के बाद दीपाली और अजीत की आंखों में भी खुशी के आंसू आते हैं। मां का आशीर्वाद मिलता है, अनिल को उसके किए की सजा मिलती है, और अजीत और दीपाली का साथ एक बार फिर से बन जाता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म आन मिलो सजना की। उम्मीद है कि आपको फिल्म की कहानी और गीत पसंद आए होंगे। और जाते जाते आपको इस फिल्म का एक और गीत सुनाते हैं, जो कि उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई 1970 में, तो ये वैसे तो सभी गाने इस फिल्म के बेहद लोकप्रिय हुए, पॉपुलर हुए, लेकिन ये गीत खास तौर पर लोगों की जबान पर चढ़ गया। आते जाते लोग इस गीत को गुनगुनाने लगे। इस गीत के साथ कई सिचुएशंस को बना लिया गया, और ये गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाया हुआ। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों के तुरंत बाद यानी 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। मधुर तरानों का गुलदस्ता लिए हाजिर रहूंगा मैं, जिसका नाम है दिल ढूंढता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा

के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बजकर 11:03 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम दिल ढूंढता है। दिल ढूंढता है ऐसे गीतों को जो कल भी सदाबहार थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, जिन्हें बार बार सुनने का, गुनगुनाने का मन करता है। ऐसे ही गीतों का गुलदस्ता लिए हाजिर हूं मैं, आशीष नमस्कार। शुरुआत करते हैं अमर प्रेम फिल्म के उस अमर गीत से जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने और बेहतरीन बोल निकले हैं आनंद बख्शी की कलम से।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

सारी रात इंतजार में कई बार कट जाती है और कई बार वक्त है कि साथ नहीं देता, जिसे चाहा उसका दामन थामने को नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही कहा गया फिल्म दिल ने पुकारा के इस गीत में, जिसे गाया है मुकेश ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार इंदिवर।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल

0: पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

1:22 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम दिल ढूंढता है। अगली पेशकश है अनोखी रात फिल्म से, गाया वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और संगीत से सवारा रोशन और गीतकार कैफी आजमी।

जाते जाते दोस्तों इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपकी नजर करते हैं। फिल्म है सफर, गायक कलाकार किशोर कुमार, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार इंदिवर। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: तस्य शेषं प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः संस्कृतामृत सागर ज्ञान कौशलादि सम्पूरिते संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे ज्ञानानन्दामृत प्लावितानां समेषां श्रोतृवर्याणां हृदयान्तस्थभावेन स्वागतम् अभिनन्दनम्। अहं सुरेश चन्द शर्मा कार्यक्रमस्य उद्घोषकत्वेन कार्यक्रमस्य एतस्य नामाङ्केन सह समुपस्थितोऽस्मि। श्रोतारः ज्ञानालङ्कृत झङ्कृते सुभाषितम् इति प्रभागे आह्लादित प्लावित गंगा प्रवाहः प्रवहति। तत्क्रमे मम सहयोगिनी ऋचा झा प्रस्तौति कार्यक्रम शुभारंभ स्वरूपं सुभाषित इति प्रभागम्।
1: न्यायोपार्जित वित्तेन कर्तव्यं धर्म संचयं दानञ्च विधिना देयं सत्पात्रेभ्यः सुभक्तितः। अर्थात मनुष्य को हमेशा न्याय और ईमानदारी के मार्ग से अर्जित किए गए धन से ही धर्म और पुण्य का संचय करना चाहिए, साथ ही उस धन का कुछ अंश पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सही विधि से योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को दान में देना चाहिए।
0: शोभनम। श्रोतारः संस्कार संस्कृति स्वरूपः कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रभागः लय ताल सुरवाणी स्वरूपेण श्रोतृणां चित्तम् आह्लादयति प्रभागः एषः। सम्प्रति प्रस्तूयते जतिनः शर्मा इत्यमुना मम सहयोगिना।

प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट महाभागाः विराजन्ते। प्रोफेसर भट्ट महाभागाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण शास्त्रस्य मूर्धन्याचार्याः कुशलाः शैक्षणिक प्रशासकाश्च वर्तन्ते। पाणिनीय व्याकरण तंत्रस्य नदीष्णाः विद्वांस इमे संस्कृत शिक्षणे गवेषणायां भारतीय ज्ञान परम्परायाः प्रसारे अध्ययनाध्यापने च श्लाघनीयं कर्म कुर्वन्ति।

0: आलस्यं दीर्घसूत्रता अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति।
1: मान्य श्रोतारः, कार्यक्रमस्य अन्तिमे प्रभागे एकीकृत भारतस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते। वसुधैव कुटुम्बकम् इति वचनं सम्पोषयन् एकं भारतम् एशिष्टं भारतम् इति प्रभागेन सह समुपस्थितः मम सहयोगी ललित मोहन तिवारी।
2: प्रथमं वाक्यमस्ति, हरेला उत्तराखण्डस्य प्रमुखं लोकपर्व अस्ति। हरेला उत्तराखण्ड का प्रमुख लोकपर्व है। कुमाऊनी भाषा में हरिया उत्तराखण्डक प्रमुख लोकपर्व छ। द्वितीयं वाक्यमस्ति, इदं पर्व वर्षाकालस्य आगमनस्य सूचकम् अस्ति। यह पर्व वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कुमाऊनी भाषा में यह पर्व वर्षा ऋतु आगमनक प्रतीक छ। तृतीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् पर्वणि जनाः सप्त धान्यानि रोपयन्ति। इस पर्व पर लोग सात प्रकार के अनाजों को बोते हैं। कुमाऊनी भाषा में यह पर्व दिन लोग सात प्रकार के अनाजक बुनी।
1: प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमं उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम्। एषः सुरेश चंद शर्मा। संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले कार्यक्रमस्य नवाङ्केन सह पुनः उपस्थास्यामहे। तावत् शुभं मंगलम्।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मधु किए जाने पर अलामती वॉक आउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
3: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरां पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लियमानी पार्टी नहीं है, अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नूनाबांदी गाँव में एक मकान के गिरने से एक खातून उनकी मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गईं या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासरा कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की और राजौरी ज़िले में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासिरा लोगों की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज़ के दौरान खत्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज़ बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनज़र श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि नामुआफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब मया संधु के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज़ शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुंचेंगी। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादर वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے ہیرا پھیری کر کے بنائی گئی دستاویزات کے معاملے پر بڑھتی ہوئی تشویش کے تناظر میں سخت وارننگ دی ہے اور جانچ کے لیے او ایم آر شیٹس جمع کرانے کے بارے میں طلبہ اور والدین کے لیے ایک سخت ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایجنسی نے بتایا ہے کہ جانچ کے لیے حال ہی میں جو او ایم آر شیٹس داخل کی گئی ہیں ان میں سے کئی فرضی یا اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑیوں اور اولمپک میں دو

बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मधु किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉ मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली

ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है थैला। इस कहानी के लेखक हैं नरेंद्र जोशी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक थैला।
1: गणेश, अरे गणेश, कितनी बार कहा है हाथ पकड़ कर चला कर, मेले में कहीं खो गया तो?
2: हाँ माँ, आ रहा हूँ।
3: माँ,
1: हाँ,
3: देखा आपने?
1: क्या?
3: कितना बड़ा झूला है माँ।
1: झूलना है क्या?
3: नहीं, मैं तो बस देख रहा था माँ।
4: कैसी हो गणेश की माँ?
1: कैसी हो राधा की माँ?
5: मैं ठीक हूँ
6: चाची, नमस्ते।
1: अरे जीती रहे जीती रहे, बड़ी अच्छी लग रही है इस फ्रॉक में। अरे गणेश, कुछ खाया तूने?
3: नहीं अभी नहीं।
6: ये ले खट्टी मीठी गोलियाँ, खा ले, बहुत अच्छी हैं, माँ ने मुझे अभी दिलाई हैं।
3: नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी।
6: अरे ले ना।
3: अच्छा ठीक है, दे दे।
6: कैसी हैं? अच्छी है ना?
3: ये तो बहुत अच्छी है, तू भी खाना।
6: नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी।
3: अरे एक और खा ले।
6: कहा ना नहीं खानी।
3: अच्छा ठीक है बाबा।
1: नीता बहन, तुम तो जानती हो सब कुछ, उनके जाने के बाद बस गणेश ही है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। ऐसा नहीं कहते सुमित्रा बहन, हम हैं ना, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना जरूर।
6: गणेश, तू कुछ लेगा?
3: नहीं।
6: क्या लेगा बताना?
3: रबर।
6: बस रबर? अपनी माँ को बोलना, वो ले देंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, माँ से नहीं कहूँगा।
6: क्यों? मुझे तो जो भी चाहिए होता है मैं बाबा अम्मा

0: से बोल देती हूँ और वो ले देती हैं।
1: अच्छा,
2: और बताओ सुमित्रा बहन। पूछो मत नीता बहन, समझो किसी तरह घर में चूल्हा जल जाता है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा।
3: अच्छा मैं चलूं, कुछ सामान भी खरीदना है।
2: हाँ हाँ ठीक है,
3: चलो राधा बेटी।
0: गणेश, थैला चाचा ने कहा था ना, अगर किसी से कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो।
1: हाँ कहा तो था।
3: राधा बेटी जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी।
0: हाँ माँ आई, चलो चलो।
3: अच्छा बहन चलती हूँ, फिर मिलूंगी।
2: ठीक है बहन, फिर मिलते हैं। गणेश, गणेश।
1: जी माँ।
2: चल बेटा अब चलते हैं।
1: हाँ चलो माँ।
2: चल वो और क्या देखा मैंने। में
1: माँ, माँ
2: क्या गणेश?
1: वो देखो कॉपी किताब की दुकान।
2: कुछ चाहिए क्या गणेश? अब पेंसिल ले ले।
1: पेंसिल नहीं चाहिए, रबर।
2: रबर? रबर चाहिए?
1: हाँ हाँ, रंगीन वाली, हरी वाली।
2: अच्छा भैया।
4: जी।
2: ये हरी वाली रबर देना।
4: जी ये लो बेटा।
2: कितने की है?
4: जी 1 रुपए की।
2: हाँ ये लीजिए।
4: जी धन्यवाद।
2: बेटा माना कि हम तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दिलवा सकते, पर ये तो दिलवा ही सकते हैं।
1: ओ माँ,
2: कुछ चाहिए तो मांग लिया करो।
1: माँ थैला चाचा कहते हैं मांगना है तो भगवान से मांगो।
2: वो बात तो ठीक है, पर भगवान जी से रबर थोड़े ही मांगोगे। चलो चलो उधर चलते हैं।
1: हाँ, हाँ माँ चलो।

0: हाँ भैया बन रही है भैया, बैठ जाओ।
1: अदरक के दूध ज्यादा
0: हाँ भैया। अरे लौंग इलायची तो हम डाल के रखते हैं
2: भैया, दूध रोक के पत्ती ठोक के देना। रहा
3: मेरी बिना चीनी वाली बनाई हो
4: तो हमारी भी है, थोड़ी मलाई वाली।
1: भैया तीन चाय देना मेरी।
0: अरे आपकी कितनी चाय?
5: तीन चाय है
3: भैया, बिना चीनी वाली मेरी।
1: भैया
0: बिना चीनी वाली में टाइम लगेगा,
1: कोई बात नहीं।
6: यहाँ पर काफी रौनक दिखाई दे रही है, लगता है चाय वाला बढ़िया चाय बनाता है। अरे इस चाय वाले की शक्ल तो पहचानी हुई लगती है।
7: कैसे हो भैया, एक चाय मेरे लिए भी बना दो।
8: नमस्कार जी।
7: नमस्कार।
8: बहुत दिनों बाद आना हुआ भाई साहब गांव में।
7: हाँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारी शक्ल भी वही ज्यों की त्यों।
8: अरे यहाँ क्या बदलना है, बदलते तो शहर है, गांव थोड़ी बदलते।
7: ठीक कहते हो, तुम्हारे सामने वाला प्याऊ वैसा का वैसा ही है।
8: आप तो भूल ही गए गांव को शहर जाकर है।
7: अरे ना जी, कुछ भी नहीं भूला हूँ। प्याऊ के आगे जो पत्थर लगा है उस पर लिखा है, सेठ जगत प्रसाद ने ये प्याऊ अपने पिता सेठ गोपाल प्रसाद और माता ज्ञानवती देवी के नाम पर 17 जुलाई 1980 को बनवाया था।
8: वाह जी वाह, आपको ये भी याद है।
7: और क्या, गाँव की हर बात याद है। प्याऊ के बीच में जो खिड़की है और जिसमें वो बूढ़ा आदमी लोटे से लोगों को पानी पिला रहा है, उसकी शक्ल भी याद है भाई।
8: अच्छा हरिदास की बात कर रहे हो? आपको गांव का ये हरिदास थैले वाला चाचा भी याद है, भाई वाह।
7: और क्या, और उसका वो खास थैला भी उसके पास।
8: वो तो उसकी जिंदगी है भाई, थैले वाला चाचा भले देख नहीं सकता पर उस थैले में ही उसकी जान बसती है। ये लीजिए चाय पीजिए।
7: बढ़िया, 7 हो गए मुझे गांव छोड़े हुए, पर पहली चुस्की में तुम्हारी चाय का स्वाद फिर से याद आ गया। वही स्वाद, कसम से ऐसा स्वाद शहर के किसी चाय में नहीं है।
8: साहब ये देवदत्त की चाय है, इंसान की नियत थोड़ा ही है, हमारी चाय का स्वाद कभी नहीं बदलेगा।
7: क्या बात कही। अच्छा वो थैले वाला चाचा अब भी वही नीले रंग का थैला टांगे घूमता है?
8: हाँ जी, मेरे चाय का स्वाद और उसका थैला दोनों ही नहीं बदला। ऊपर वही 3 बटन बंद करने के

0: के लिए सामने खूबसूरत सी कढ़ाई, ऐसा थैला मैंने कहीं और देखा ही नहीं।
1: ये प्याऊ वाला थैला चाचा टिक गया यहाँ?
0: हाँ?
1: मुझे तो लगा था अब तक कहीं चला गया होगा। बिना आंखों के मुश्किल है जीना।
0: इसने भला कहाँ जाना है? 7 साल पहले अपने दोस्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। जब यहाँ बांध बनाने का काम हो रहा था ना, तो इसका दोस्त यहाँ आया था।

0: सोचकर यही रुक गया। वो तो भला हो सेठ जी का जिन्होंने इसे रहने के लिए जगह दे दी और साथ ही प्याऊ पर पानी पिलाने का काम भी।
1: अच्छा
0: हाँ, उसे अपने थैले से बहुत लगाव है भाई, कुछ खास ही लगाव। पता है कुछ दिन पहले इसका कोई थैला ले भागा था।
1: थैला ले भागा?
0: हाँ, ये शाम को प्याऊ से निकला, कोई आया और थैला खींच लिया। ये देख तो सकता नहीं, गिर गया, सिर फूट गया, खून बहने लगा, पर थैला पकड़ा रहा, झपट मारने इसे मारा भी, सड़क पर रगड़ा भी, और भाई साहब इसने थैले को नहीं छोड़ा। तो कुछ लोग आ गए तो झपट मार भाग गया, हम भी पहुंच गए। सब इसकी चोट की चिंता कर रहे थे, पर इसे अपने चोट की नहीं थैले की फिक्र थी। मेरा थैला, मेरा थैला। थैले को समेट कर इसने अपने सीने से ऐसे लगा रखा था भाई साहब, जैसे माँ अपने बच्चे को लगा कर रखती है।
1: हाँ?
0: सब कहते हैं इसके थैले में कुछ कीमती सामान है, वरना एक थैले की क्या कोई इतनी चोट सहेगा। दे देता थैला, कम से कम चोट तो नहीं लगती।
1: बड़ी अजीब बात है, कुछ तो खास है थैले में।
0: वो तो है, उसके बाद से तो ये अपने थैले को गर्दन में ही लटकाए रहता है।
1: अच्छा?
0: एकदम अपने पास रखता है।
1: हाँ?
0: हर दो मिनट में उसे छूता रहता है।
1: हाँ?
0: सहलाता रहता है।
1: अरे?
0: बच्चे की तरह ख्याल रखता है अपने थैले का।
2: भैया कितने पैसे हुए?
0: दो चाय थी ना आपकी।
2: हाँ?
0: 6 रुपए।
2: अरे 6 रुपए? मेला लगा है तो तुम भी लूटने में लग गए।
0: 6 रुपए में ताजमहल खरीद लूंगा क्या? महंगाई तो देखो भाई।
2: ठीक है ये लो पैसे।
0: हाँ, नहीं लग रही है चाय। दूध का भाव चल रहा पता?

0: थैला चाचा कब आओगी?
1: अरे आया बाबा आया। अरे तुम लोगों को पता तो है, थैले से भी पूछना पड़ता है कि आज कौन सी कहानी सुनानी है। अब जो कहानी ये बताता है मैं वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूँ।
2: थैला चाचा आज कौन सी कहानी सुनाओगे?
1: भाई आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा राजकुमार वीर सिंह की कहानी, जो इतना बलशाली

0: मेरी माँ कहती है ऐसा तो राक्षस करते हैं।
1: अरे बुद्धू, राजकुमार बोला ना। चाचा आगे की कहानी सुनाओ।
2: एकदम ठीक, राक्षस नहीं, राजकुमार वीर सिंह। एक बार दुश्मनों ने उसके देश पर हमला कर दिया और लड़ाई में उस राजकुमार के पिता को पकड़ कर ले गए। राजमहल में राजकुमार वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जब उसने ये बात सुनी कि उसके पिता को बंदी बना लिया गया है, तो बस उसके अंदर की वीरता जाग उठी और वो बढ़ चला लड़ाई के मैदान की ओर।
0: अच्छा खेला चाचा जी,
1: लड़ाई के मैदान की ओर।
2: युद्ध के मैदान में सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। उन सैनिकों के बीच में से दुश्मनों के हमले से बचता हुआ और सैनिकों का मुकाबला करता हुआ वो घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा है। उसका घोड़ा भी बहुत शक्तिशाली था। वो राजकुमार के हर इशारे को समझ जाता था और दुश्मन राजा उसे चारों ओर से उसके सैनिकों ने घेर रखा था। उस तक पहुंचना आसान नहीं था।
1: अच्छा फिर क्या हुआ था चाचा?
2: भाई घोड़े पर राजकुमार बैठा हुआ था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दुश्मन राजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, समझे? राजकुमार ने अपने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा समझ गया कि राजकुमार उससे क्या कहना चाहता है। घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े के नजदीक खड़े कुछ सैनिक अचानक पीछे की ओर गिर गए। घोड़े ने एक ऊंची छलांग लगाई और सैनिकों की दीवार को फांदा

0: हुआ वो राजा के रथ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उस राजा को मारने के लिए तलवार उठाई,
1: नहीं राधा, इसे छोड़ दो, हम इसे मारेंगे नहीं, कमरे में बंद कर देंगे।
2: अरे अरे क्या हो गया इसे?
3: क्या बोल रहा है ये?
1: मैं तो राधा को बोल रहा था।
0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों आगे सुनो। राजकुमार वीर था, उसने दुश्मन राजा को मारा नहीं और अपने पिता को दुश्मन की कैद से छुड़ा लिया।
1: छुड़ा लिया?
0: हाँ। राजकुमार ने दुश्मन राजा को मारा नहीं, इस बात का असर उस राजा पर पड़ा, पर उसने राजकुमार से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काहे का हाथ बढ़ाया?
4: दोस्ती का।
0: शाबाश, दोनों दोस्त बन गए और वहां से चले गए। और अब कहानी खत्म।
5: बस
2: बहुत छोटी कहानी थी।
5: नहीं धैला चाचा, एक और कहानी सुनाओ ना।
0: देखो देखो देखो।

नाराज हो जाएंगे, इसलिए अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, समझ गए ना। देखो बच्चों, कल थैले में से एक और कहानी निकाल

मेरे प्यारे थैले, मेरे दुलारे थैले, सो जाओ सो जाओ।

0: 예! 출디! 허레!
1: अमित ये बताओ कल तुम्हें क्या हो गया था जब थैला चाचा कहानी सुना रहे थे।
2: वो कल उस समय मुझे लगा कि तुम राजकुमार हो और मैं तुम्हारा सेनापति।
1: मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है। थैला चाचा जब भी कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं भी उस कहानी में पहुँच जाती हूँ।
3: वो सुनाते ही बड़े प्यार से हैं।
2: सब उनके नीले वाले थैले का कमाल है। मुझे तो लगता है कि वो कोई मामूली थैला नहीं है।
4: मुझे पता है उस थैले में क्या है।
3: क्या सच में?
5: सच में
6: बताओ ना क्या है उस थैले में।
1: तुझे कैसे पता और क्या है उस थैले में? बता तो सही, हमको भी तो पता चले।
4: मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं कि जरूर उस थैले में कोई जिन है।
1: सच में?
6: पर जिन तो अलादीन के चिराग में रहता है।
2: लेकिन थैले में जिन कैसे रह सकता है? जिन तो इतना बड़ा होता है।
4: जब चिराग में रह सकता है तो थैले में क्यों नहीं? थैला तो चिराग से बड़ा ही होता है।
2: वैसे उस थैले में कितनी कहानियाँ हो सकती हैं?
1: बहुत सारी।
3: कितना मजा आता है ना?
4: हाँ हाँ बहुत। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी देर से घर पहुँचते हैं तो अब्बू डांटते हैं तो और भी मजा आता है।
1: गणेश क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो?
7: कुछ नहीं राधा, बस बाबा की याद आ गई। वो हमें छोड़कर क्यों चले गए?
1: याद है थैला चाचा ने एक कहानी सुनाई थी कि जो चला जाता है वो तारा बन जाता है ताकि वो हमेशा उन्हें देखता रहे जिन्हें वो छोड़कर चला गया है।
2: चल अब घर चल, माँ तेरी बाट देखती होगी, रात को मिलेंगे।
8: ए बोला, लगता है स्कूल में कोई गणेश भाई का खाना खा गया।
9: हाँ यार।
6: अरे कुंदन और भोला, तुम लोग इस वक्त यहाँ?

0: क्या हुआ गणेश, इतना लटक लटक कर क्यों चल रहा बे?
1: मुझे जाने दो, हट जाओ मेरे आगे से।
2: अच्छा बेटा, हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा अब तू? जरा ये तो बता गणेश, आज तेरा पागल चाचा कौन सी कहानियां सुना रहा है?
1: बोला, वो हमारे थैला चाचा हैं। उन्हें पागल कहा ना तो ठीक नहीं होगा।
2: अच्छा, चल हट। क्या कर लेगा तू?
3: वैसे तुम लोगों ने उस बिना आंख वाले का नाम सही रखा है,
4: थैला चाचा।
2: राधा कह रही थी कि उसके थैले में बहुत सारी कहानियां हैं।
1: हाँ है तो?
2: कुंदन, हम एक काम करते हैं, एक दिन उसके थैले को ही हम उससे छीन लेते हैं।
1: अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं थैला चाचा को बोल दूंगा।
3: अच्छा, तू जरा बोल के तो दिखा है? फिर देख तेरा क्या हाल बनाते हैं हम।
2: हाँ
3: चल भाग यहां से, बड़ा आया थैला।

0: का थैला चुराने की बात कर रहे थे।
1: ये ठीक नहीं है।
2: अगर थैला चुरा लिया तो?
0: नहीं,
2: ये बहुत गलत है।
0: क्या हमें चाचा को बताना चाहिए?
2: उनको बताएंगे तो थैला चाचा चिंता करेंगे।
3: अरे

0: थैला चाचा, हम आ गए।
1: हम आ गए।
2: हाँ हाँ बच्चों, आ गया हूँ मैं भी। अरे सभी बच्चे आ गए?
0: हाँ थैला चाचा।
1: हाँ थैला चाचा, आ गए सभी बच्चे। आ गए,
2: ठीक है, सब मेरे पास बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो बैठो
1: जी, जी
2: चाचा। बैठो,
3: जल्दी से थैले से पूछो ना, आज कौन सी कहानी होगी?
4: थैले बताए कहानी दो, कौन सी बताए इसको, तो मैं कैसे सुनाऊं कहानी। साला बोल।
2: तो आज इस थैले में से जो कहानी निकली है वो है शेर और खरगोश की कहानी।
1: थैले का ध्यान रखना, वो कुंदन और भोला भी इधर ही घूम रहे थे।
5: ठीक है।
2: तो बच्चों, पुरानी बात है, एक बार जंगल में एक शेर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वो जब भी आता कई जानवरों को मारता, उनमें से कुछ को खाता और पेट भर जाने पर वापस चला जाता। जब जंगल के सभी जानवर इस बात से दुखी हो गए तो उन्होंने एक सभा बुलाई। क्या बुलाई?
0: सभा।
2: सभा। और फैसला किया कि रोजाना एक जानवर शेर के पास खुद ही उसका भोजन बनकर जाएगा।
3: अच्छा।
2: लेकिन शेर के पास ये सुझाव लेकर भला जाएगा कौन? आखिरकार लोमड़ी से सबने प्रार्थना की कि वो ही जाकर शेर को समझाए। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर समझाया तो शेर को भी लगा कि चलो अच्छा है, फालतू में जंगल में भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, जब घर बैठे ही शिकार मिल जाएगा। और शेर मान गया। और इधर शेर के पास जाने के लिए नंबर लग गया। रोजाना एक जानवर अपने परिवार से रो रो कर विदा लेकर शेर के पास जाता।
3: अच्छा।
2: और ये सिलसिला रोज चलता रहा। और एक दिन खरगोश की बारी आई। सारे जानवर उसे विदा करने के लिए जमा हो गए। तभी उस खरगोश के बेटे ने कहा, आज तुम नहीं मैं जाऊंगा। खरगोश ने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और चल पड़ा शेर की गुफा की ओर। जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने शेर से कहा कि आपके जंगल में एक और शेर महाराज आ गए हैं। तो कहने लगा, शेर मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम मेरे पास आओ।
4: बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका शिकार हूं। इससे पहले कि वो मुझे मार कर खा जाए, आप जल्दी से मेरा शिकार कर लीजिए।
2: ये किसने कहा?

0: खरगोश
1: खरगोश ने शेर को ये जानकर बहुत गुस्सा आ गया कि उसके रहते जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है। बस वो उस दूसरे शेर से मिलने उस खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वो शेर इसी गुफा में रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वो दहाड़ा, उसे अपनी परछाई दहाड़ती हुई दिखाई दी। उसे लगा गुफा वाला शेर उस पर दहाड़ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उस परछाई को सच का शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। कौन कूदा?
0: शेर।
1: शेर। और बच्चों, खरगोश की जीत हुई। और खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो सब हैरान रह गए। फिर उसने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और सभी खुशी से दिन व्यतीत करने लगे।
2: क्या जंगल में ऐसा भी हो सकता है?
1: अरे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा बच्चों, चलो चलो चलो चलो चलो, सब अपने अपने घर जाओ।
3: कौन है? मेरा थैला
4: कर दिया।
5: अरे सुनो भैया, थैला
6: क्या हुआ? थैला चाचा, अरे कुंदन और भोला थैला छीन कर भाग रहे हैं। रुको, थैला वापस करो नहीं तो मैं प्रधान जी से बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दूंगा। रुक जाओ।
7: ए भोले।
8: हाँ।
7: अरे हाँ बात, ये गणेश कहाँ से आ गया? जल्दी कर, देख तो सही थैले में क्या है।
8: हाँ ठीक है, देखता हूँ। कुंदन,
9: कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी फ्रॉक है और एक लड़की की फोटो है बस।
7: अरे अच्छे से देख मोटे।
9: अरे
6: थैला वापस कर।
8: हाँ।
6: मैं कहता हूँ थैला वापस कर।
9: ये ले।
7: इसमें कोई कहानी वानी नहीं है, थैले में तो एक छोटी सी फ्रॉक है और एक लड़की की फोटो।
6: कहानी नहीं है?
1: हाँ,
6: नहीं है।
1: सही कहा उसने, इसमें कोई कहानी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी की कुछ यादें हैं जो मैं इस थैले में संजो के रखता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी बेटी को हर दिन कहानी सुनाया करता था। बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। मेरे सामने ही एक दुर्घटना हुई। मैं देख नहीं सकता, देख सकता तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती और न ही उसकी जान जाती। जो कहानियां मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं वो सब मैं पहले अपनी बेटी को सुनाया करता था।
9: थैला चाचा,
1: तुम लोगों को जब कहानियां सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बेटी को सुना रहा हूँ। इस थैले में कहानी नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी यादें।
9: थैला चाचा मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैला चाचा, मैं माफ कर दीजिए।
10: माफ कर दीजिए थैला चाचा।
1: नहीं बेटा, नहीं, भगवान का शुक्र है मेरा खोया हुआ परिवार मुझे मिल गया। गणेश बेटा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम नहीं होते तो शायद भोला और कुंदन मेरे थैले को न जाने कहां फेंक देते। चलो घर चले। बच्चे आ गए होंगे कहानी सुनने के लिए। चलो
10: थैला चाचा,
6: हम भी चले।
1: हाँ,
6: चलो चाचा।
0: अभी आप सुन रहे थे नाटक थैला। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, सिद्धार्थ, कमल कुमार वर्मा, सुनील कुमार लोहिया, ममता मलकानी, राजश्री, एसपी इलाहाबादी, सुशील शर्मा, जगदीश दुआ, संजय वर्मा, सजग अरोड़ा, मासिफा परवेज, ईशान शर्मा, नौशीन बेगम, सैयद एहसान अली और विशारद। प्रस्तुति सहयोग विजयलक्ष्मी शर्मा का था और नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल हैं। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों तक बगैर किसी देरी के हर संभव मदद पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला होगा स्पेन से। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला रात 12:30 से शुरू होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex ahead of the monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in the Rajya Sabha, Jagat Prakash Nadda, Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were also present in the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of National Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the state assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. Talking to media, TMC MP Mohia Moitro said that the entire opposition parties, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM, Trinamool Congress and Aam Aadmi Party have walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Deputy Leader of the Opposition, the Rajya Sabha Pramod Tiwari, described the walkout as a symbolic boycott against the NCPI being invited to the meeting. However, after registering the protest, the opposition members attending the meeting. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. With this meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament in the upcoming monsoon session of the parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. Speaking to media after the meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to cooperate in ensuring the smooth conduct of the monsoon session. He expressed hope that members from both the ruling party and opposition would participate constructively in the legislative business.
1: We will inform and we will follow the norms, procedures, the rules, and then we'll introduce. Right now, I have informed the members and to you that the bulletin which we have released through two secretaries, that is the business in hand. There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament functions smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee. Congress has written the letter earlier also. They have written letter now also. It is the right of the Congress party and any other political party to make demand and request. And government will definitely take the steps whatever is necessary, but we can't force each other.
2: In Jammu and Kashmir, at least 4 persons, including 3 women, lost their lives and several others are missing after heavy rainfall triggered landslides and flash floods at multiple places today. The worst affected area is Surankot, Tehsil of Poonch district, where all deaths have been reported. Rescue teams have been deployed in the area to evacuate stranded residents and provide relief to affected families. A woman was killed after a house collapsed in Noonabandi village, while her husband and 3 children were rescued with injuries. Union Home Minister Amit Shah spoke with Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah and took stock of the flood situation. Mr. Shah assured them of all possible assistance from the central government to ensure the safety and security of those affected. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Nirmala Sitharaman which highlights how traditional Indian craftsmanship can drive economic growth through innovation and global partnerships. In a social media post, Mr. Modi said the One District, One Product initiative is helping local

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवंत भी। विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा, इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
3: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
3: सर आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
4: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारनबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया।
3: जी सर।
4: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
3: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारी, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को हो, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
4: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं, एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक, ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं, और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुल प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
3: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है, एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वह कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
4: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहार को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
3: आप वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
4: कहीं जाई थी लजाने, कहीं जाई थी लजाने, कटो परी दे ले बसी।

0: पीपल दीवाने, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुंचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन अकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर अकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन

0: कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस फ्रीक्वेंसी पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 3:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो किड्स। मगर उससे पहले पहुंच रहा है आप तक फिल्म आमने सामने से गीत। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद पक्षी। फिल्म रिलीज हुई 1967 में। शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ और मदन पुरी जैसे कलाकार फिल्म में शामिल थे और फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आशी और हमारे साथ है हमारे दोस्त मोक्ष, दर्शिता, वंशिका, आरवी, रोहानी और राजर। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम
1: रेडियो प्लेस।
0: तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो दोस्तों अपनी मुस्कान बनाए रखिए और तैयार हो जाइए आज के मजेदार और ज्ञान से भरपूर सफर के लिए।
2: चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार कार्यक्रम रेडियो किड्स।
0: आरवी बताओ, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है?
2: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ठंडी ठंडी हवा, काले बादल और रिमझिम बारिश, कितना मजा आता है।
0: बिल्कुल, बारिश होते ही पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल उठते हैं और चारों ओर ताजगी फैल जाती है।
2: हाँ, और हम बच्चों की तो बात ही अलग है। हम कागज की नाव बनाते हैं, रेनबो देखते हैं और गरम गरम कॉर्न खाते हैं, कितना मजा आता है।
0: लेकिन दोस्तों बारिश के मौसम में हमें सावधान भी रहना चाहिए।
2: क्या दीदी?
0: जैसे गंदे पानी में नहीं खेलना चाहिए, भीग जाए तो सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए।
2: बारिश किसानों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अच्छी बारिश से फसलें लहरा उठती हैं और हमें भरपूर अनाज मिलता है।
0: इसीलिए हमें बारिश का आनंद लेने के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।
2: साथ ही हमें अपने घर और स्कूल के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसमें मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरवी।
2: दीदी मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊं?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, धरती पहने हरी सी साड़ी, नाचे मोर चहके पंछी, खुश हो जाए दुनिया सारी।
0: वाह, कितनी प्यारी कविता थी। तो दोस्तों बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अच्छा आरवी, तुमने तो कविता सुना दी, मैं भी सुनाऊं?
2: हाँ सुनाओ, क्यों नहीं।
0: बादल आए झूम झूम कर, बूंदे बरसी धूमधाम कर, धरती ने मुस्कान सजाई, संग हरियाली भी ले आई। नाचे मोर पंख फैलाकर, चिड़िया गाए गीत सुनाकर, कागज की नाव चली इठलाकर, बचपन हंसा खिल खिलाकर। बारिश देती जीवन सारा, नदियों का भर देता किनारा, आओ मिलकर प्रण ये ले,

0: पानी बचाए पेड़ भी लगाए।
1: वाह, कितनी अच्छी कविता सुनाई आपने, धन्यवाद।
2: अब मेरे को ना एक बाल कविता याद आई है, मैं सुनाऊं?
1: हाँ सुनाओ।
2: आ गई बारिश, मच गया शोर, काले काले बादल आए, अपने साथ डबरू लाए, गड़गड़ शोर मचाए, टिप टिप करके पानी बरसाए, चिंटू भागा छाता लेकर, हवा चली तो वो उड़े ऊपर, छाता बन गया पैराशूट, कीचड़ में जा गिरे उनके बूट। पिंटू ने जब नाव चलाई, मम्मी को फिर याद दिलाया, मम्मी जी अब छोड़ो काम, लाओ पकोड़े गर्मा गर्म। मेंढक भैया गाते तराना, भूल गए वो सुरताल पुराना, टर्टर सुन चिंटू बोला, लगता है इनके गले में चोला। भीग गए सब कपड़े लते, पेड़ों से भी झड़ गए पत्ते, स्कूल की छुट्टी का मिल गया बहाना, अब तो बस है मौज मनाना, अब तो बस है मौज मनाना।
0: अच्छा आरवी, बारिश की बातें तो बहुत होगी, कुछ गीत सुनना चाहोगी?
1: हाँ, मेरा तो चक दुम दुम सुनने का मन कर रहा है,
0: तो चलो सुनते हैं।

0: अच्छा आरवी, बारिशों के मौसम में हमें वैसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए।
1: क्यों दीदी?
0: क्योंकि ज्यादा जंक फूड खाने से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता, इससे बहुत तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
1: दोस्तों, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी जरूरी पोषण तत्व हो, जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, रोटी, चावल आदि।
0: आरवी, क्या केवल अच्छा खाना ही काफी होता है हमारे लिए?
1: नहीं, समय पर खाना खाना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही, और हमें धीरे धीरे अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए, इससे भोजन आसानी से पचता है।
1: याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
0: अच्छा आरवी, तो मैं एक कविता सुनाऊं?
1: हाँ, सुनाओ।
0: फल खाओ, सब्जी भी खाओ, दूध दही से ताकत पाओ, दाल रोटी चावल खाओ, स्वस्थ शरीर और मन बनाओ, जंक फूड कम पानी ज्यादा, यही है सेहत का इरादा। अच्छा भोजन अच्छी आदत, यही है खुशियों की असली दौलत।
1: अरे वाह, क्या अच्छी कविता सुनाई है आपने।
0: थैंक यू।

0: आज हमारे साथ हमारे तीन और दोस्त मोक्ष, दर्शिता और वंशिका हमें चंद्रशेखर आजाद पर कुछ जानकारी और कविताएं सुनाना चाहते हैं। तो सुनते हैं।
1: आज मैं आप लोगों को चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या तुम लोग भी जानना चाहते हो?
2: हाँ, हम जानना चाहते हैं।
1: तुम्हें पता है, जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। उनके दिल में देश के लिए बहुत प्यार था। जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जब जज के सामने पेश किया तो जज ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताप दिया, सीना तानकर शेर की तरह धारते हुआ कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। यह सुनकर अंग्रेज जज सन रह गया। उन्हें कोड़ों की सजा दी गई, पर हर कोड़े पर वो वंदे मातरम और भारत माता की जय चिल्लाते रहे। उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी और उन्होंने अपनी कसम आखिरी सांस तक निभाई। जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली और देश के लिए शहीद हो गए, पर वो आजाद ही रहे।
3: मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद पर। देशभक्ति सबसे ऊपर उनके लिए, देश पहले अपनी जान बाद में, हमेशा कहते दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है आजाद ही रहेंगे। बहुत अच्छे निशानेबाज थे, इसी वजह से अंग्रेज भी उनसे डरते थे, हार नहीं मानते थे। कितनी भी मुश्किल आई, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आखिर तक लड़ते रहे।
2: मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ चंद्रशेखर आजाद पे। चंद्रशेखर आजाद वीर महान, देश के लिए दिए अपने प्राण, अंग्रेजों से कभी न डरा, आजाद बनके वो जीता जग सारा।
0: अरे वाह, क्या अच्छी जानकारी और कविता सुनाई आपने।
4: अच्छा आरवी, अब मैं भी एक कविता सुनाऊं?
0: हाँ क्यों नहीं।
4: चंद्रशेखर आजाद थे वीर, देशभक्ति थी उनकी तकदीर, अंग्रेज से डटकर लड़े, कभी नहीं वे पीछे हटे, भारत माँ के सच्चे लाल, हिम्मत थी उनकी बेमिसाल, आजाद रहना था उनका प्रण, देश के लिए किया जीवन अर्पण। आओ उनसे सीखे हम सच्चाई और साहस हर दम, देश का मान बढ़ाएंगे, मिलकर भारत सजाएंगे।
0: अरे वाह आसवी, क्या अच्छी कविता थी।
4: थैंक यू।

0: अच्छा आरवी, आज हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, तो चलो जानते हैं उनका नाम।
1: मेरा नाम राजन बड़ोत्रा है।
0: आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
1: नर्सरी B4।
0: और आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं?
1: एक कविता
0: सुनाइए।
1: हम

जीते देख भाग पिता एक भालू, उसका नाम था कालू, कालू खाता था आलू। हमने तीन चीज की पापा तीन चीजे दे, हमने तीन चीजे देखी पापा तीन चीजे देखी। बाग में था एक लकड़ी, उस पर बैठा मकड़ी, मकड़ी खाता था ककड़ी।

0: देख, बाग में था एक मोर, उस पर बैठा चोर, चोर मचा रहा था शोर। हमने तीन चीजें की बाबा, तीन चीजें देखी। हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी।
1: अरे वाह राजन, आपने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और राजन, आपने तो तीन नहीं बहुत सारी चीजें सुना दी हमें और दिखा भी दी।
2: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
1: उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा।
2: हम फिर मिलेंगे नई जानकारी और ढेर सारी मस्ती के साथ।
1: तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना परिवार का भी। तो सुनते रहिए
3: रेडियो किड्स।
4: बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सरकार ने आज सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल हैं। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वो संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान दें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी तथा विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई जिसमें तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सुरनकोट तहसील में हुई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे ने मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय है फिल्म संगीत का। गीत पहुंच रहा है आप तक फिल्म पंचायत से। आवाजें लता मंगेशकर और गीता दत्त की हैं और संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। उसके बाद परिक्रमा 4:30 पर गाते गुनगुनाते लिए मैं नूपुर आपके साथ रहूंगी 5:10 से, और पूर्वोत्तर डायरी का समय 5:30। लेकिन फिलहाल तो वक्त है एक बहुत ही प्यारे सदाबहार गीत का, डांसिंग नंबर इसे बोल सकते हैं। यह है फिल्म पारसमणि से, जो कि रिलीज हुई 1963 में। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया और गीत के बोल असद भोपाली जी ने लिखे हैं, और गीत जो है वो आप सुनते ही ऐसा लगेगा कि बस नाचने पर मजबूर हो जाएं हम, और शायद कदम थिरकने भी लगें। आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की है।

0: information technology, electronics and telecommunication, or a related discipline, along with 1 to 5 years of programming experience. For the economics domain, candidates should hold a master's degree in economics, commerce, business economics, finance, or business administration with 1 to 5 years of research and report writing experience, expertise in handling large data sets, and working knowledge of econometric and statistical software such as eViews, Stata, SPSS, or R. The last date to apply is 31st July 2026. Detailed information is available in the What's New section under the Employees Corner of the Department of Revenue website. Kindly do look up www.dor.gov.in. I repeat, it is www.dor.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड में सिस्टम इंजीनियर के 30 पद भरे जाने हैं। ये पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 है। आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विस्तृत जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ihmcl.co.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता, स्कोर कार्ड, चयन प्रक्रिया आदि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.svpuat.edu.in। विश्वविद्यालय का भर्ती पोर्टल www.recruitmentsvpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषक, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, केंद्रीय निष्कीटीकरण एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी, अस्पताल वास्तुविद, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भंडार अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी। आवेदन का फॉर्मेट और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है। विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन पर कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
2: हेलो वैष्णवी,
1: कैसी हैं आप और बताइए आज क्या क्या रहने वाला है कार्यक्रम में?
2: वेल, आई एम डूइंग वेरी वेल एंड टुडे वेल द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इज फाइनली हियर एंड फुटबॉल फीवर इज इन द एयर एंड इट इज वेरी रियल। वेल दैट राइम्ड। सो द एक्साइटमेंट हैज स्पिल्ड ऑन टू द स्ट्रीट्स। इट्स ऑल अबाउट फीफा टुडे एंड द फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो देयर विल बी पब्लिक व्यूइंग, स्पेशल फैन जोन्स एंड मिडनाइट स्क्रीनिंग्स एज वेल, एंड इट हैज ड्रॉन मैसिव क्राउड्स। सो टुडे इट्स ऑल अबाउट दैट अलॉन्ग with. Well, if we focus and turn our attention to our program, it will be of course full of excitement and the stuff which we have lined up for our listeners. Selection of news, our discussion segment Dateline India. Well, we are discussing a very potent topic today, and reports and capsules which we have lined up for you, and tributes as well, and all of this over the next 30 minutes with me, Shagun Chopra and Vaishnavi. And first listeners, we will begin with the headlines. So let's begin.
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया।
2: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पार्टीज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ पार्लियामेंट।
1: जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया।
2: President Draupadi Murmu embarks on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania.
1: बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया।
2: And in the football fever, it peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. So listeners, this is our discussion segment Dateline India, and we'll focus all our attention to this topic, the topic being modified Udaan scheme. So we'll give you in-depth knowledge and details about it. So connectivity has long been the backbone of economic progress, we all know that, and linking production to markets and people to opportunity. So the ability to move quickly and reliably, it has become essential to sustaining growth, reliable, and the ability to move quickly. And in this particular evolving landscape, aviation has emerged as a powerful pillar of speed, access, and reach. And for generations, this connectivity did not reach everyone equally. So air travel in India was largely concentrated in a handful of major cities. Many smaller towns, they lacked regular air services. And this gap highlighted the growing need to extend the benefits of air connectivity beyond metropolitan centers. And more regions, they needed to be integrated into the national aviation map, right?
1: जी शगुन, सबको साथ लेकर चलने वाली और व्यापक हवाई कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए अक्टूबर 2016 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS उड़ान स्कीम को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ता, आसान और अधिक सुलभ बनाना। अब श्रोताओं जरा सोचिए कि जिन क्षेत्रों में पहले हवाई सेवाएं बहुत कम थी या बिल्कुल नहीं थी, वहां भी अब हवाई संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। यही बदलाव उड़ान योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भारत

0: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। इस विकास में उड़ान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Exactly, Vaishnavi. And building on this, the modified Udaan scheme, this was launched on 4th of July 2026. This marks another transformation in India's aviation journey. The scheme is being implemented over a period of 10 years, from 2026-27 to 2035-36, the financial year with a total outlay of 28,840 crore rupees. And this new phase, it places greater emphasis on expanding airport infrastructure, second, improving operational support, third, creating a viable ecosystem for airline operators serving smaller markets. It also seeks to consolidate earlier gains and address emerging demands.
0: शगुन, सिर्फ नई हवाई रूट शुरू कर देना ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना, भरोसेमंद ऑपरेशनल सिस्टम और छोटे शहरों में काम करने वाली एयरलाइनों के लिए प्रभावी सहयोग भी जरूरी है। भारत के कई क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। ऐसे इलाकों में विशेष प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीपैड और बेहतर संचालन व्यवस्था ही लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बनती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो क्षेत्रीय विमानन को लंबे समय तक टिकाऊ, मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित है।
1: That's true. And now we'll talk about the development of aerodromes, which is a central pillar of the modified Udaan scheme, the aerodromes. Well, under this component, 100 airports will be developed from existing unserved airstrips to expand aviation infrastructure across the country. And this initiative seeks to integrate smaller towns and remote regions more effectively into the national transportation network. The sustainability of smaller aerodromes, it depends on continued operations. So the modified Udaan scheme provides structured operation and maintenance support as well.
0: जी, और देश के कई हिस्सों में अगर हम देखें तो भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक एयरपोर्ट बनाना हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शगुन, इसी उद्देश्य से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी से वंचित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव है। इन सुविधाओं से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज पहुंच संभव होगी, बल्कि आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिलेगी।
1: एंड द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम इनकॉर्पोरेट्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस एविएशन कैपेसिटी अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। And one of the operational challenges has been the limited availability of small fixed wing aircraft and helicopters suited for operations in remote and difficult terrain. The scheme proposes two HAL Dhruv helicopters or HAL Dhruv helicopter for Pawan Hans and two HAL Dornier aircraft for Alliance Air.
0: उड़ान स्कीम के बाद क्या कुछ परिणाम आगे निकल कर के आए हैं।
1: Let's begin with that.
0: तो श्रोताओं, उड़ान योजना के लागू होने के 9 वर्षों से अधिक समय में इसके उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। 15 जुलाई 2026 तक देश भर में 679 हवाई रूट, 95 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम को आपस में जोड़ चुके हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ दूर दराज, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों को मिला है। तेजपुर, पासीघाट, दीव, पिथौरागढ़, राउरकेला और ऐसे अनेक क्षेत्रों में लोगों के लिए हवाई यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और सुलभ हुई है।
1: ऑल्सो एयर ट्रैवल एनी वे रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम एंड उड़ान हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन डिफरेंट सिटीज। वन सच एग्जाम्पल इज द एयर रूट कनेक्टिंग विजयवाड़ा एंड कडप्पा। And well, what was once a long and time-consuming journey can now be completed in about an hour. Just an hour by air. And this actually demonstrates the tangible benefits of improved regional connectivity.
0: बिल्कुल। और दुनिया के बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहते हैं। भारत ने इस दिशा में एक अलग और अभिनव मॉडल अपनाया। उड़ान योजना के अंतर्गत आरसीएस लेवी मैकेनिज्म के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए आवश्यक फंडिंग एविएशन सेक्टर के भीतर ही जुटाई जाती है। इसके लिए घरेलू उड़ानों की कुछ चुनिंदा श्रेणियों पर एक छोटा सा शुल्क लगाया जाता है। ये व्यवस्था क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को निरंतर और टिकाऊ आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शगुन, ये सब बातों से मुझे लगता है कि उड़ान से लेकर मॉडिफाइड उड़ान तक का ये सफर हमें दिखाता है कि भारत की हवाई कनेक्टिविटी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। गोवा के युवा फिल्मकार आदित्य सुहास जांबले की फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उपलब्धि न केवल आदित्य जांबले बल्कि पूरी गोवा के लिए एक गर्व का विषय है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित गोवा और भारतीय फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: आदित्य सुहास जांबले की फिल्म आर्टिकल 370 वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अपनी सशक्त कहानी और प्रभावशाली निर्देशन के कारण इस फिल्म को देश भर में सराहना मिली। अब इसे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। यह आदित्य जांबले का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके पहले उन्हें आबा एकतायना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गैर फीचर फिल्म और खरवस के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। आइए सुनते हैं इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा के बारे में उन्होंने क्या कहा।
2: 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया था, आज भी मैं मानता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट डेज इन माई लाइफ पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एक भारतीय होने के नाते बहुत अच्छा लगा जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होके कश्मीर भारत का भाग बन गया, पूरा का पूरा एक भारत एकजुट हो गया। तो वो कथा, उसके पीछे कैसी चीजें हुई, एनआईए ने क्या सेक्रीफाइसेस किए, सीआरपीएफ ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, ये सब कहना बहुत ही जरूरी था। और वो पॉलिटिक्स भी दिखाना बहुत ही जरूरी था विदाउट शाइंग अवे फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। हमने सारी चीजें रिसर्च बैक्ड कर दी थी और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस जो प्रशंसा मिली, जिस तरीके से प्यार मिला, जिस तरीके से 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया फिल्म ने, ये बहुत ही बड़ी चीज होगी मेरे लिए बतौर एक डायरेक्टर।
1: राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यह फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि मजबूत कहानी और संवेदनशील निर्देशन दर्शकों के दिल तक अपनी जगह बना सकते हैं। आदित्य जांबले की यह सफलता न सिर्फ उनके फिल्मी करियर का अहम पड़ाव है बल्कि गोवा के उभरते फिल्म जगत के लिए भी गर्व और प्रेरणा का विषय है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: So from Goa, now we'll head to Bengaluru, where Indian Standard Time, IST, has entered a new era with the launch of an indigenous time dissemination network based on White Rabbit technology in Bengaluru, of course. The initiative is aimed at establishing a uniform, highly accurate and secure national time standard while reducing India's dependence on foreign time sources such as GPS. And the project has been launched under the vision of One Nation, One Time. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Technology, Energy, I beg your pardon, Shri Pralhad Joshi inaugurated the Indian Standard Time Dissemination Demonstration Network, Indian Standard Time Dissemination Demonstration Network at the Regional Reference Standards Laboratory in Jakur, Bengaluru. We have details on this from our correspondent. Listen in.
4: Speaking on the occasion, Sri Pralhad Joshi said the initiative marks a historic step towards strengthening the sovereignty of India's digital infrastructure through a secure and precise national time standard. He said the new system would reduce dependence on external time reference and enhance the security of critical sectors including banking, financial markets, telecommunications and the national power grid by protecting them against cyber threats and data manipulation. The minister said the project is being implemented by the Department of Legal Metrology in collaboration with the National Physical Laboratory, ISRO, BSNL and SEBI. He added that while complying with the global UTC, Coordinated Universal Time Standards, the indigenous system would strengthen India's internal security and support technology-driven governance and transparent public service delivery. Ponnumon, Akashwani News, Bengaluru.
0: और बेंगलुरु से अब चलते हैं शिमला की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक नई पहल की गई है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश को हर मौसम में पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की हसीन वादियां देशी और विदेशी पर्यटकों से सदैव गुलजार रहती हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के जलाशयों को लग्जरी और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोविंद सागर झील में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउसबोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के हरनौड़ा से तत्तापानी

0: तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय भी लिया है। वहीं हमीरपुर जिला के नादौन में ब्यास नदी पर और शिमला जिला की सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहते हैं। उधर कांगड़ा जिला का बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न देशों से प्रतिभागी पैराग्लाइडिंग में भाग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके साथ साथ हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा आरंभ की है। राज्य सरकार ने भारत चीन सीमा से सटे रणनीतिक और ऐतिहासिक शिपकीला दर्रा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों को देश के अंतिम छोर तक पहुंचने का अनुभव देना है। राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के दृष्टिगत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया जारी है और प्रदेश के जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट के लिए कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही नवोन्मेषी पहल निश्चित रूप से प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ विकास को नए आयाम प्रदान करने में मददगार साबित होंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा।
1: Well, listeners, Jammu and Kashmir has emerged as a key beneficiary under various schemes of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and according to annual report of the ministry, 8,54,502 farmers in Jammu and Kashmir received 170.9 crore rupees under the 21st installment of the PM Kisan scheme. And of them, 85,410 women farmers were provided financial assistance amounting to 17.08 crore rupees, and this reflects their growing participation in the agriculture sector. We have a report. Let's listen in.
2: As per the annual report of Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 1,26,967 farmers from Jammu and Kashmir had been enrolled under the Pradhan Mantri Kisan Mandan Yojana as of January 25, 2026, ensuring pension benefits for small and marginal farmers. Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the restructured weather-based crop insurance scheme, the Union Territory recorded 11.62 lakh farmer applications covering 6.34 lakh hectares. Jammu and Kashmir recorded an increase in approvals under the Paramparagat Krishi Vikas Yojana framework with 5 projects sanctioned during 2024-25 and 6 projects approved for 25-26. Jammu and Kashmir also registered interstate trade through the Electronic National Agriculture Market ENAM. The ministry has continued special support for Jammu and Kashmir under its seed transportation program in view of the region's difficult terrain. The UT is entitled to 100% reimbursement of the difference between road and rail freight charges for certified seeds brought from outside J&K, beside reimbursement of intra-UT transportation costs to make quality seed more affordable for farmers under the National Horticulture Board's Commercial Horticulture Program. Open field cultivation project in the Union Territory are eligible for assistance up to Rs 50 lakh, while large-scale projects involving crops such as apple, walnuts and almonds can receive financial support of up to Rs 1 crore. In another key development, the ministry recommended an additional 50 days of employment under MG Narega over and above the existing 100 days for flood and natural calamity affected areas of Himachal Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir during 2025-26. This is N. Gulshandana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
1: शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल।

0: तो शगुन, आज दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें एक ही जगह पे मुकाबले पर टिकी हुई हैं।
1: जी, फुटबॉल फीवर हैज ग्रिप्ड फैंस अक्रॉस द ग्लोब। वेल डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना एंड यूरोपियन पावर हाउस स्पेन प्रिपेयर फॉर अ थ्रिलिंग शोडाउन इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल।
0: जी, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। भारतीय समय अनुसार ये रोमांचक मैच रात 12:30 से शुरू होगा। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है।
1: एंड द शेड्यूल, द टाइटल क्लैश इज शेड्यूल्ड टू किक ऑफ एट द न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम। एंड वेल, लास्ट नाइट लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट इंग्लैंड सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस 6-4 इन अ थ्रिलिंग थर्ड प्लेस मैच एट मायामी स्टेडियम। The French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. Now let's tell you about badminton. Well, star Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu scripted history, becoming the first Indian to win the prestigious Japan Open. Well, she clinched the women's singles title in Tokyo today, defeating local favorite and three-time world champion Akane Yamaguchi in a straight games 21-17, 21-17. And well, with the win, Sindhu ended she has secured this title after more than 2 years. Sindhu's previous title came at the Sayyid Modi International in 2024. The triumph is her biggest title since winning the World Championships in 2019. Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya congratulated PV Sindhu on the historic triumph in a social media post. Dr. Mandaviya said the entire nation is proud of her.
0: श्रोताओं, कभी कोई अपने शब्दों से समाज को नई दिशा देता है तो कोई अपने कर्मों से इतिहास रच देता है। आइए अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका 19 जुलाई से एक खास संबंध है और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट पहचान बनाई।
1: दिस इज व्हाट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर।
0: जी, हम ना अपने आप ही आए दुखों के इस नगर में, था मिला तेरा निमंत्रण ही हमें आधे इस सफर में, किंतु फिर भी लौट जाते हम बिना गाए यहां से, जो सभी को तू बराबर तौलता अपनी नजर में। अभले कुछ भी कहे तो, खुश की या ना खुश रहे तो, गांव भर को हम सही हालत बताकर ही उठेंगे, विश्व चाहे या ना चाहे। ये भावपूर्ण शब्द हिंदी के यशस्वी कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी कविता गीत में लिखे थे। नीरज जी की रचनाओं की यही खूबसूरती थी कि वे जीवन के सच को बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में कह जाते थे। उनके लिखे गीत जैसे कारवां गुजर गया, फूलों के रंग से और शोखियों में घोला जाए आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया था।
1: Well, listeners, tributes to the great freedom fighter Mangal Pandey on his Jayanti. His extraordinary courage and unwavering resolve during the revolt of 1857 ignited the flame of India's first war of independence and inspired countless Indians to fight for the nation's freedom.
0: जी, और मंगल पांडे की यही अदम्य साहस, देश प्रेम और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। श्रोताओं, मंगल पांडे का साहस केवल उनके कार्यों से ही नहीं था बल्कि उनके शब्दों में भी झलकता था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मंगल पांडे का एक दमदार संवाद।
2: अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता, जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए, जाओ।
1: Well, Aamir Khan playing the character of Mangal Pandey and his legacy, it continues to motivate us to uphold and the ideals of courage, sacrifice and service to the nation.
0: श्रोताओं, स्वतंत्रता की इस मशाल को आगे बढ़ाने में देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक महान व्यक्तित्वों ने अपना योगदान दिया। आइए अब ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व खूबचंद बघेल के बारे में जानते हैं। खूबचंद बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने किसानों, ग्रामीण समाज और क्षेत्रीय संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में उनका योगदान आज भी खास महत्व रखता है।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जयंत विष्णु नार्लिकर, द एस्ट्रोफिजिसिस्ट, परफॉर्म्ड रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव कॉस्मोलॉजी। ही रोट टेक्स्ट बुक्स ऑन कॉस्मोलॉजी, पॉपुलर साइंस बुक्स एज वेल एंड साइंस फिक्शन नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इवन आई एम एन एविड रीडर ऑफ साइंस फिक्शन नॉवल्स। सो नार्लिकर

0: Jayant Vishnu Narlikar studied at Banaras Hindu University and Cambridge University, where he obtained his PhD in 1963, working with Fred Hoyle. So after postdoctoral work in Cambridge in 1972, he was appointed a professor at the Tata Institute of Fundamental Research. In 1988, he became the first director of the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So I was telling you about Jayant Vishnu Narlikar.
1: शगुन, जैसा कि आपने कहा नार्लिकर जी के बारे में, तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। अब बात एक ऐसी कवित्री की जिनकी रचनाओं में मातृत्व, संवेदनाएं और जीवन का सौंदर्य सहज रूप से झलकता है। नालापत बालमणि अम्मा मलयालम साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित कवित्रियों में गिनी जाती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया था।
0: वेल, इट इज ट्रू एंड अ टाइमलेस लेगेसी वैष्णवी, इट इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स दैट इंस्पायर जनरेशंस, वी ऑल बिलीव दैट। सो यस, वी आर रिमेम्बरिंग नालापत बालमणि अम्मा on her birth anniversary. Well revered as the mother of Malayalam poetry, she enriched Indian literature through her heartfelt poems that celebrated motherhood, compassion, as well as human values. So her remarkable works, let me name two of them, Amma and Muthasi. They continue to inspire readers across generations.
1: अब नमन उस वीर सैनिक को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं राजीव संधु के बारे में। वे भारतीय सेना के साहसी अधिकारी थे। राजीव संधु को अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका साहस और बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सब नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जांजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The government today convened an all-party meeting at Parliament House, Annexe, ahead of the monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in Rajya Sabha Jagat Prakash Nadda, Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were also present in the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues. He stressed that meaningful debate rather than disruptions is essential for strengthening democracy.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Earlier, just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in state assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. Talking to media, TMC MP Mohua Mitra said that the entire opposition parties, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM, Trinamool Congress and Aam Aadmi Party, have walked out from the meeting.
4: Today, the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party have all walked out, all party meeting in protest.
2: President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. In Jammu and Kashmir, at least four persons, including three women, lost their lives and several others are missing after heavy rainfall triggered landslides and flash floods at multiple places today. The worst affected areas is Surankot, Tehsil of Poonch district, where all deaths have been reported. Rajouri town was also hit by flash floods following incessant overnight rainfall. Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the relief and rescue operations in Rajouri and Poonch. Chief Minister Omar Abdullah has also assured that all agencies are engaged in rescue and relief efforts. Union Home Minister Amit Shah spoke with Jammu and Kashmir Lieutenant Governor and Chief Minister and assured them of all possible assistance from the central government. Meanwhile, the Sri Mata Vaishno Devi Yatra and Sri Amarnath Ji Yatra remains suspended due to adverse weather conditions. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall today over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttarakhand. Parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad and Uttar Pradesh are also expected to receive heavy rainfall during the day. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of Class 10 Second Board Examinations 2026. Students can access the results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. Prime Minister Narendra Modi has congratulated PV Sindhu on winning the women's singles title of the Japan Open 2026. In a social media post, he described the win as a historic feat for Indian badminton. Prime Minister Modi said her determination and exceptional skills were on full display throughout the tournament. Earlier, PV Sindhu became the first Indian shuttler to win the prestigious Japan Open title. She defeated the local favourite and three-time world champion Akane Yamaguchi in straight games. Football fever has gripped fans across the globe as defending champions Argentina and European powerhouse Spain prepare for a thrilling showdown in the FIFA World Cup final at the New York, New Jersey Stadium tonight. The title clash is scheduled to kick off at 12:30 a.m. Indian time. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at the Miami Stadium. French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. The series deciding third ODI between India and England is currently underway at Lord's in London. Opting to bat first, England went 129 for no loss in 21.2 overs when reports last came in. India made three changes to their playing 11, bringing in KL Rahul, Arshdeep Singh and pacer Prince Yadav. Fast bowler Jasprit Bumrah has been rested due to a knee injury. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार। हिंदी फिल्म उद्योग का 90 का दशक यानी वो दौर जब कैसेट प्लेयर, वॉकमैन और दिल को छू लेने वाले गीत लगभग संगीत से प्यार करने वाले हर घर की पहचान हुआ करते थे। उस समय हर गीत मानो किसी न किसी याद से जुड़ा होता था। कभी पहली मोहब्बत की मीठी धड़कन, कभी दोस्तों की महफिल की रौनक, तो कभी परिवार के साथ बिताई गई सुनहरी शामों की मुस्कुराहट। ये वो दौर था जब ऑडियो कैसेट्स की बिक्री अपने चरम पर थी। कई फिल्मों का संगीत उनकी रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो जाता था और लोग फिल्म देखने से पहले उसके गीतों को बार बार सुना करते थे। संगीत केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और यादों का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। यही तो कारण है कि आज भी 90 के दशक की ये गीत सुनते ही यादों का कारवां आंखों के सामने गुजरने लगता है। सच ही तो है, 90 का दशक केवल फिल्मों का दौर नहीं बल्कि एहसास का दौर था। बस इन्हीं मधुर यादों और गीतों को आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम गाते गुनगुनाते और मैं नूपुर। आइए यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। फिल्म लम्हे का एक गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और हरिहरन के स्वरों में।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का।

0: आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: बिल्कुल आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम का आते गुनगुनाते साथ हूँ मैं नूपुर और साथ है हमारे 90 का संगीत। तो संगीत की जनाब यही तो खूबी है, ये वक्त की सरहदों को पार कर सीधे हम तक पहुँचता है, दिलों तक पहुँचता है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही बरसों पुराने चेहरे, मुलाकातें और पल फिर से ताज़ा हो उठते हैं। अब 90 के दशक की बात करें तो उस दौर में संगीतकारों और गीतकारों की ऐसी शानदार टीम्स बनी जिन्होंने हर भाव के लिए मानो एक यादगार गीत लिख दिया हो, रच दिया हो, है ना। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, दोस्ती हो या हो जीवन का उत्सव, हर एहसास को सुरों में ढाल दिया गया। कहते हैं अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। समय बदलता है, संगीत की शैली बदलती है, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं कि हमेशा हमारे दिलों में जगह बनाए रखती हैं। ऐसा ही एक गीत पहुंच रहा है आप तक फिल्म हम है राही प्यार के, आवाजें कुमार सानू अलका याग्निक साथियों की।

बेचैनियों को थोड़ा करार देता 90s का ये प्यारा संगीत पहुंच रहा है आप तक कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में फिल्म दामिनी से। गीत के बाद ठीक 5:30 पर सुनिएगा पूर्वोत्तर डायरी।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना ने देश भर की महिलाओं को सशक्त किया है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदियां अपना आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रही हैं, दूसरों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। त्रिपुरा में भी हमें ऐसी ही कई पहल देखने को मिली है जहां महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूहों के जरिए लोगों को आजीविका देने का मौका दिया है। तो आज हम आपको पश्चिम त्रिपुरा जिले की दो महिलाओं की प्रेरक कहानियां सुनवाने जा रहे हैं। हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने। आइए सुनते हैं।
2: लखपति दीदी का मतलब केवल सालाना 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करना नहीं है। यह आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, कौशल विकास और बाजार से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं, जिससे वे स्थायी आजीविका स्थापित कर रही हैं। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM के माध्यम से इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य भर में महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई, पशुपालन, कृषि तथा अन्य आजीविका गतिविधियों के जरिए सफलतापूर्वक अपने उद्यम चला रही हैं। इन प्रेरणादायक महिलाओं में पश्चिम त्रिपुरा जिले के चनखला हायर सेकेंडरी स्कूल के निकट सेकरकोट की रंजली सिंह और विजयनगर मॉडल पंचायत की संदीपा कर्मकार प्रमुख हैं। स्वयं सहायता समूहों के सहयोग, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर इन्होंने अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। आज ये दोनों न केवल सफल लखपति दीदी हैं, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी हुई हैं। रंजली सिंह एक विलेज क्लस्टर की अध्यक्ष हैं और कई स्वयं सहायता समूहों का मार्गदर्शन करते हुए महिलाओं को आय सृजन के लिए प्रेरित कर रही हैं।
3: I work in our Manipuri handloom spices, gotari, mushroom, etc. units. Here, I did not have a regular source of income. Now we make several products which has helped us earn a good income. The Lakputi Didi initiative and our SSG gave me training under the guidance of Tripura Rural Livelihood Mission to gain confidence and the opportunity to move forward. Today, I am financially independent and I encourage other women to start their own work and become self-reliant. My dream is to take our product to more people and help our group grow even further.
2: रंजली की सफलता ग्रामीण त्रिपुरा में हो रहे व्यापक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जो महिलाएं कभी पूरी तरह परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर थी, वे आज अपनी आय अर्जित कर रही हैं, बचत कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाएं अपने गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। इसी तरह संदीपा कर्मकार भी आज अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। अपने उद्यम के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने जीवन और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि अपने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। संदीपा का कहना है कि अपनी मेहनत के बल पर लखपति दीदी बनना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
4: मैं 2015 में SHG ग्रुप में शामिल हुई हूँ। SHG ग्रुप में शामिल होने के बाद मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह मिला, जैसे कि मेंबरशिप ट्रेनिंग, कैसे बिजनेस करना है, वो सब ट्रेनिंग ब्लॉक से मेरा TRL जो सर मैम है, उस सर मैम लोगों ने हम लोगों को वो ट्रेनिंग वगैरह दिया। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है घर पे। तो फिर मैंने घर पे जाके मैंने मेरे हस्बैंड

0: के साथ बात की, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो लोन लेकर हम लोग घर पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एसएचजी ग्रुप से लोन लेकर मैंने मेरे घर पे पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया। पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के बाद मेरा बिजनेस जब एक दो महीने चल रहा था मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा ही मिला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारे जो बिजनेस वो है उसको बड़ा करना है। फिर मैंने फिर से एसएचजी ग्रुप से लोन लिया। लोन लेके मैंने मेरे घर पे दो पोल्ट्री का बिजनेस फार्म किया। वो फार्म करने के बाद हम लोगों का जो इनकम वगैरह है वो अच्छा ही चल रहा है अभी तक। मतलब रबर का प्लांटेशन करने का बहुत इच्छा था। फिर हम लोगों ने मेरे जो पोल्ट्री का बिजनेस का जो इनकम वगैरह था वहाँ से हम लोगों ने रबर का प्लांटेशन शुरू किया। फिर मुझे और बिजनेस को आगे बढ़ाना था। फिर मैंने फिर से एसएचजी ग्रुप से सीसी लेने के बाद मेरे जो पुकुर है वहाँ पे मैंने मछली चार्ज अभी भी चल रहा है वो वगैरह। फिर मेरे बिजनेस और बढ़ने लगा। मेरा घर का जो प्रॉब्लम वगैरह था वो भी सॉल्व हो गया। लोन लिया मेरा सीएलएफ से लेकर मैंने मेरे हस्बैंड को एक बास खरीद के दिया। वो बास का बिजनेस भी बड़ा अच्छा ही चल रहा है। कुछ बिजनेस वगैरह मिलके मुझे मेरे घर पे बहुत अच्छा ही प्रॉफिट होता है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि आज के दिन पे मैं एक लखपति दीदी हूँ।
1: हाल ही में त्रिपुरा के दौरे पर आई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से करीब 1,30,000 महिलाएं त्रिपुरा की हैं, जबकि राज्य में लगभग 5,40,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और बाजार से जोड़ने का कार्य लगातार कर रहा है। इन प्रयासों से महिलाएं सफल उद्यमी बन रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रही हैं।
2: Our livelihood coordinators and cluster coordinators play a crucial role in strengthening the livelihoods of SHG members. We regularly identify potential lakhpati didis, prepare household livelihood plans, provide continuous handholding support, and motivate members to take up multiple income generating activities.
1: रंजली सिंह और संदीपा कर्मकार की कहानी यह साबित करती है कि जब महिलाओं को अवसर, कौशल और संस्थागत सहयोग मिलता है तो वे केवल अपना जीवन ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। लखपति दीदी पहल के माध्यम से जैसे जैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, वैसे वैसे त्रिपुरा महिला नेतृत्व वाले विकास, समावेशी प्रगति और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। यह पहल विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
3: त्रिपुरा से अब हम चलते हैं मेघालय। मेघालय का पाइनएप्पल फेस्टिवल इस बार भी कृषकों के लिए आय और लोगों के लिए स्वाद का एक बहुत बड़ा परिचायक बना। तो हम आपको लिए चलते हैं मेघालय और सुनवाते हैं पाइनएप्पल फेस्टिवल पर हमारे सहयोगी उत्पल और निशा की ये खास रिपोर्ट।
4: नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित 3 दिन के मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल में इस बार 30 मैट्रिक टन ताजा अनानास की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यह पिछले साल की तुलना में लगभग दुगनी और वर्ष 2023 में हुए पहले फेस्टिवल से करीब 4 गुना ज्यादा है। सरकार का कहना है कि बढ़ती बिक्री से साफ है कि लोग मेघालय के कृषि उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता को पहचान रहे हैं। सफलता के बाद राज्य सरकार अब बड़े रिटेल स्टोर, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, निर्यातों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ अनानास ही नहीं बल्कि लोकाडोंग, हल्दी, अदरक, शहद और दूसरे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए भी बेहतर बाजार तैयार करना है। इस वर्ष के फेस्टिवल की एक बड़ी उपलब्धि फ्लिपकार्ट और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के साथ समझौता हो रहा है। इससे किसानों को ऑनलाइन बाजारों के जरिए देश भर के ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सरकार अब केवल खेत से फसल बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। इसके लिए संग्रह, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित यह फेस्टिवल अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं

की एक व्यापारिक मंच बन गया है। इसके जरिए किसानों को रिटेल चेन, होटल, निर्यातों और बड़े खरीदारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फेस्टिवल में आने वाले लोगों ने ताज़ा अनानास के साथ मेघालय के पारंपरिक व्यंजनों और अन्य उत्पादों का भी आनंद लिया। मेघालय फाइनेंस्ड ब्रांड के उत्पादों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस दौरान कई किसानों ने पहली बार नई दिल्ली का दौरा किया।

0: के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इसके जरिए राज्य के कृषि, पर्यटन और संस्कृति को एक साथ जोड़कर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, अब हम आपको फिर से मेघालय लिए चल रहे हैं। मेघालय शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक खास सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रशासन में बुनियादी सुधार और तकनीकी के प्रयोग को लेकर नेक्स्ट जेन ई गवर्नेंस प्रशासनिक सुधार सम्मेलन में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता शामिल हुए और किस तरह से नीतियों को, प्रशासन को कुशल बनाया जाए, नागरिक केंद्रित बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई। तो आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
2: शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स में विशेष जोर दिया गया। इस सम्मेलन में देश भर से वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने तकनीक और नवाचार के बेहतर उपयोग से शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने पर विचार विमर्श किया। नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग और राज्यों के सफल अनुभवों को साझा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि नई तकनीकों को प्रशासन से जोड़ते समय आम लोगों की जरूरतों और सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार की कई डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया गया। इनमें जनधन योजना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम्स, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था प्रमुख हैं। बताया गया कि इन प्रयासों से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनी हैं। सम्मेलन में जानकारी दी गई कि पिछले कुछ वर्षों में करीब 2000 पुराने और अप्रासंगिक सरकारी नियम समाप्त किए गए हैं ताकि कामकाज आसान हो और अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल सके। साथ ही ये भी कहा गया कि समय समय पर नियमों की समीक्षा जरूरी है क्योंकि पुराने प्रावधान अक्सर बेहतर प्रशासन में बाधा बन जाते हैं। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि पिछले एक दशक में सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विभिन्न राज्यों में ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों से प्रशासनिक नवाचारों और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिल रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यों से नई प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकनीक शासन को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब कार्यशैली और सोच में भी बदलाव आएगा। उन्होंने पिछले सम्मेलन में अपनाई गई शिलांग घोषणा का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार शिलांग घोषणा 2.0 के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विशेष प्राथमिकता के कारण पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, संपर्क व्यवस्था और प्रशासनिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत निवारण जैसी पहलें बेहतर परिणाम दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बदलाव को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि प्रशासनिक बदलाव की राह में सबसे बड़ी चुनौती पुरानी कार्यप्रणाली को छोड़ने में हिचकिचाहट है। उन्होंने अधिकारियों से अपने अपने विभागों में छोटे लेकिन व्यावहारिक सुधार शुरू करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि ऐसी पहलें आगे चलकर व्यापक परिवर्तन का आधार बन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने मेघालय सरकार के CM कनेक्ट कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकार और आम लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। इससे शिकायतों के समाधान में तेजी आई है, कमियों की पहचान आसान हुई है और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव भी मिले हैं। डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, लेकिन स्थायी प्रशासनिक सुधार तभी संभव है जब व्यवस्था आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दे, बदलाव को खुले मन से अपनाए और बेहतर जनसेवा को

0: अपना मुख्य उद्देश्य बनाए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रियंका अरोड़ा।
1: श्रोताओं, बीते दिनों डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित भी किया था। उन्होंने त्रिपुरा में निवेशकों के प्रोत्साहन पर जोर दिया, तो हम आपको आज ये खास रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबोधन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की जाएगी और कैसे पूर्वोत्तर भारत में निवेश और व्यापार का एक सुगम माहौल बन रहा है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
2: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया। उन्होंने उद्योग जगत से त्रिपुरा में उपलब्ध निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र की पहचान बदल दी है। अब यह केवल सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की पहुंच का प्रमुख द्वार बन चुका है। इससे व्यापार, निवेश और संपर्क के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा तेजी से निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उनके अनुसार अगरतला की रणनीतिक स्थिति इसे आसियान देशों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह क्षेत्र 76 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाले बड़े बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ प्राकृतिक गैस, बांस, अगरबुड, रबर, चाय, मसाले और बागवानी उत्पादों की भरपूर उपलब्धता है। इसके साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन, उद्योग हितैषी नीतियाँ, बेहतर होती आधारभूत सुविधाएं और देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे राज्य की बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि बांस उत्पादन में त्रिपुरा देश में पहले और प्राकृतिक रबर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में विनिर्माण, खाद प्रसंस्करण, निर्यात, लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए यहां व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, सबरूम विशेष आर्थिक क्षेत्र, मैत्री सेतु और एकीकृत जांच चौकी जैसी योजनाएं त्रिपुरा को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य लगातार बेहतर संपर्क, आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योग जगत से निवेश का आह्वान करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि त्रिपुरा अब केवल स्थल से घिरा प्रदेश नहीं रहा बल्कि बंगाल की खाड़ी तक पहुंच का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी बन चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अष्ट लक्ष्मी राज्य विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक। रिपीट। यह क्षेत्र 67 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाले बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है।
1: श्रोताओं, अब हम बात करने जा रहे हैं नागालैंड विश्वविद्यालय की एक खास पहल के बारे में। नागालैंड में बैकयार्ड पोल्ट्री परियोजना के जरिए लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद की है जिसमें पोल्ट्री के व्यापार को बढ़ोतरी मिल रही है और इसमें जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसके मुताबिक 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की आय अर्जित करने में लोगों को मदद की जा रही है। तो ये खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें कैसे नागालैंड में पोल्ट्री का व्यापार नागालैंड विश्वविद्यालय की मदद से फल फूल रहा है, इस पर बात की गई है।
3: यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से संचालित की गई। इसे नागालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र जुन्हे बोटो ने लागू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन और कम लागत वाले अंडा इंक्यूबेटर के उपयोग के जरिए परिवारों के

0: पोषण स्तर में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम में अकुलुतो ब्लॉक के सुमिसेत्सु, जाफुमी, लुमामी, अलाफुमी और शिचिमी गांव की महिलाओं को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को वैज्ञानिक मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रेनबो रूस्टर नस्ल के एक दिन के चूजे, शुरुआती 20 दिनों के लिए चारा, टीकाकरण, दवाइयां, आवश्यक उपकरण और कम लागत वाले अंडा इंक्यूबेटर भी उपलब्ध कराए गए। नागालैंड विश्वविद्यालय के अनुसार परियोजना के दौरान लाभार्थी परिवारों ने अपने उपयोग के लिए 1300 से अधिक मुर्गियों का इस्तेमाल किया, जबकि 2000 से ज्यादा पक्षियों की भी बिक्री की गई। औसतन प्रत्येक परिवार को लगभग 66 किलोग्राम अतिरिक्त चिकन मांस प्राप्त हुआ। इस पहल से कुल 30,80,308 रुपए की आय हुई। प्रत्येक महिला को औसतन लगभग 32,000 रुपए का शुद्ध लाभ मिला। योजना के दौरान 22,000 से अधिक अंडों का उत्पादन हुआ। इनका उपयोग परिवारों की जरूरत पूरी करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए भी किया गया। इससे पोषण स्तर बेहतर हुआ और अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी मिला। इस परियोजना का नेतृत्व डॉक्टर राकेश कुमार चौरसिया ने किया। उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र जुनेबेटो की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को संतुलित आहार प्रबंधन, कम लागत वाले पोल्ट्री शेड का निर्माण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से चारा तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। नागालैंड विश्वविद्यालय का मानना है कि यह मॉडल दूर दराज के उन इलाकों में भी सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है जहां किसानों को अच्छी नस्ल के चूजे, आवश्यक संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
2: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहां शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एक

मात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल है। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।

0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: पूर्वोत्तर डायरी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल

0: जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्री कृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTEC, MTEC और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended this meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India India, NCPI. The NCPI is a registered party.

0: श्रोताओं, बेहतर संपर्क किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। ये लोगों को नए अवसरों से जोड़ता है और व्यापार तथा विकास को गति देता है। आज के समय में तेज, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन व्यवस्था विकास की एक महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। ऐसे में नागरिक उड्डयन क्षेत्र भी देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। हालांकि लंबे समय तक भारत में हवाई संपर्क मुख्य रूप से कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा। अनेक छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी दिशा में उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से छोटे शहरों और कम सेवा वाले क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे न केवल लोगों के लिए यात्रा आसान हुई बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क भी मजबूत हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना के प्रमुख परिणाम क्या रहे और संशोधित उड़ान योजना में क्या बदलाव किए गए।
1: पिछले एक दशक में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2014 में देश में 74 परिचालित हवाई अड्डे थे, जबकि 15 जुलाई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 165 हो गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार बन चुका है। इस बदलाव में उड़ान योजना ने नई हवाई मार्ग शुरू कर और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकार ने इस योजना के अगले चरण के रूप में संशोधित उड़ान योजना शुरू की है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ लागू किया जाएगा। इस चरण में हवाई अड्डों के विकास, उनके बेहतर संचालन और छोटे शहरों में हवाई सेवाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत देश भर में 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके लिए अगले 8 वर्षों में 12,159 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। योजना के अंतर्गत छोटे हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों को शुरुआती वर्षों में अधिक खर्च और कम आय जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हवाई अड्डे को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 3,06,00,000 रुपए, जबकि प्रत्येक हेलीपोर्ट और जल एरोड्रोम को प्रति वर्ष 90,00,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जहां सामान्य हवाई अड्डों का निर्माण आसान नहीं है, वहां बेहतर हवाई संपर्क के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इस पर अगले 8 वर्षों में 3,661 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन हेलीपैडों से स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा राहत और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलेगी। छोटे शहरों के हवाई मार्गों पर सेवाएं लगातार चलती रहे, इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके लिए 10 वर्षों की अवधि में 10,043 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत एयरलाइन कंपनियों को 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे तीसरी वर्ष से चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा, जबकि किसी मार्ग पर विशेष परिचालन अधिकार 3 वर्षों तक ही दिए जाएंगे।
0: श्रोताओं, संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि देश के छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को विकास की नई संभावनाओं से जोड़ना भी है। सरकार का मानना है कि हवाई अड्डे केवल परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र भी बनते हैं। 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई अड्डे केवल आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन भी हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।
2: किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी।

0: स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है।
1: श्रोताओं, पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब नई उड़ान योजना के साथ इस पहल को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि बेहतर हवाई संपर्क छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को कैसे आसान बना रहा है, इससे पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे नई गति मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में उड़ान योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 जुलाई 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 679 क्षेत्रीय मार्गों के माध्यम से 95 हवाई अड्डों और हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल को जोड़ा जा चुका है। योजना की शुरुआत से अब तक 3,58,000 से अधिक उड़ानों का संचालन हुआ है, जिनके जरिए 1,68,00,000 से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त की है। इस योजना का प्रभाव देश के कई दूरस्थ पर्वत और द्वीपीय क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। तेजपुर, पासीघाट, दीव, पिथौरागढ़ और राउरकेला जैसे क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर होने से लोगों की आवाजाही आसान हुई है और छोटे शहरों को बड़े शहरी केंद्रों से जुड़ाव मजबूत हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्वास्थ्य तथा आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच भी बेहतर हुई है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी कई पहल की गई है। उड़ान यात्री कैफे के माध्यम से हवाई अड्डों पर किफायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं फ्लाइब्रेरी जैसे पहल के जरिए यात्रियों को निशुल्क पुस्तकों और निशुल्क वाईफाई जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उड़ान योजना ने यात्रा का समय कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए विजयवाड़ा और कडप्पा के बीच सड़क मार्ग जिससे जहां पहले 8 से 10 घंटे लगते थे, वहीं अब हवाई यात्रा से ये दूरी लगभग 1 घंटे में तय की जा सकती है। इसी तरह यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि कई क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक तेज, सुविधाजनक और किफायती हो गई है। संशोधित उड़ान योजना में आत्मनिर्भर भारत पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में संचालन के लिए पवन हंस को 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा अलायंस एयर को 2 HAL डॉर्नियर विमान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को मजबूत करना है बल्कि स्वदेशी विमान निर्माण क्षमता को भी बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ान से संशोधित उड़ान तक का ये सफर केवल हवाई सेवाओं के विस्तार की कहानी नहीं है, ये छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर संपर्क, नए अवसरों और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: श्रोताओं, भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाना केवल नए हवाई अड्डे बनाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था जरूरी है और इसी सोच के साथ उड़ान योजना के लिए भारत ने एक विशेष वित्त पोषण मॉडल अपनाया है, जिसके तहत इस योजना के लिए धन की व्यवस्था नागरिक उड्डयन क्षेत्र के भीतर से ही की जाती है। इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लेवी कहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ये व्यवस्था क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को और मजबूत बनाने में मदद कर रही है। श्रोताओं, ये स्पष्ट है कि उड़ान से मॉडिफाइड उड़ान तक की ये यात्रा केवल हवाई यात्रा को आसान बनाने की पहल नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, दूरदराज के क्षेत्रों और आम नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी एक प्रयास है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई और वाचक स्वर मुनीश शर्मा।
3: और आइए अब सुनते हैं समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। श्वः आरभ्यमाणस्य संसदः प्रावृट् सत्रात् प्राक् सर्वकारेण सर्वदलीय सभाम् आहूतम्। सभायाम् NCPI दलम् आमन्त्रणे विपक्षेण प्रतीकात्मकरूपेण बहिष्कारं कृतम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः सुगमतया सञ्चालनं सुनिश्चेतुं प्रार्थितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया

0: 444-233-1-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज नियरली 12,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय शेयर बाजार में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया. सराफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत. देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते FPI का. लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने जुलाई में लिवाली की है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है. सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से FPIs अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं. देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है. लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो FPIs ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है. जुलाई में अब तक उन्होंने FAR के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
0: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. कांता जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछे. जी,
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम.
1: जी, सवाल पूछे. जी
3: जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो PPF होता है ना, PPF में निवेश कितना, बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में PPF खोला, वो कितना सुरक्षित है?
1: PPF में पैसा कितना सुरक्षित है?
2: कांता जी, PPF क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये काफ़ी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं. यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है. तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उनसे काफ़ी ऊपर है. तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं.
1: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार

0: लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फ़ायदे दिखते थे, क्या बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
1: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि ये एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है तो वो
0: तो वो तो
1: पैसे
0: रहेगा
1: तो
0: ही जी।
1: रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है। और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
0: जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से, अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन रिलेटेड, लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज अर्निंग एंड एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन। सो आई हैव ट्रांसफर माय म्यूचुअल फंड्स टू माय मदर, एंड व्हेन आई एम फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न इन अ न्यू रेजिम बोथ फॉर मायसेल्फ एंड माय मदर, so it is showing of like of rupees around 10 lakhs and under the like the off market transaction credit in EIS and KIS statements. So I want to know whether ki how this tax whether I have to pay any tax or how the tax calculation will be done while filing the this return for me and for my mother, like I transferred the mutual funds.
0: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ज़्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
3: गुड इवनिंग।
4: माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset that is the mid cap or small cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
1: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. How the other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And yeah, that should be helpful.
0: जी, अगले कॉलर के पास चलें सरबजीत।
3: जी, चेन्नई काशीनाथ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: गुड इवनिंग मैडम।
3: गुड इवनिंग।
5: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप, और दो फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप। इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है, इस पे बने रहना चाहिए? हर फंड में 2-2 हजार जा रहा है, ये क्या अच्छा है, इसकी अच्छा जानकारी चाहिए। धन्यवाद।
1: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे, बहुत ज़्यादा ओवरपार ना कर ले, क्योंकि होता क्या है लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा

होती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए। बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में, तब आप डरे नहीं, आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें, क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक एक ही स्ट्रैटेजी होती है।

0: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। लगता है
1: मीनवाइल
0: आकाश
1: यस
0: से हमारा संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, सरबजीत।
1: यस आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष जी, सवाल पूछें।
2: हाँ, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार।
2: मैडम, अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या, जैसे डेप्ट फंड में उनके टैक्स रिबेट का दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
0: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं, मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार में निवेश किया है, और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है। वो भारत के पूंजी बाज़ार का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए। जी, अगले कॉलर के पास चले हम।
1: यस, लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली।
0: जी आकाश,
3: मुझे दो बातें पूछनी है। एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे, और क्योंकि हम लोग की एफडी है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा एफडी के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा। कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं। आप लोग कहीं, आपका ऑफिस भी होता है जहाँ आप लोग आम आदमी म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना जाता है। धन्यवाद
1: जी। आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट।
0: जी ऐसा अक्सर होता है।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए। जब आपको आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। एक साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म, एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन, वेल्थ जनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे। अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए। और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा, जो आपने बोला कि FD एक साल की लेनी चाहिए या ज़्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ़ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है, आप और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमीडिएट

0: कंसिस्टेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसका डर खत्म हो जाता है।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी,
2: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस एनएवी में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
0: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पे मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इस पर अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पर कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है, AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पर क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि दिनेश जी, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नज़रिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए। बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं। बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है। बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
3: ऑलराइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, सवाल पूछे।
4: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैकेज आ रहे थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है। और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड।
0: जी योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद वापस आ जाता है। तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उन पे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहां पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है। और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि डेट फंड्स, बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का

0: स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है. लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली, तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फ़ायदा रहेगा.
1: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई.
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी. ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे.
2: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र जी, सवाल पूछे.
3: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है. जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है, तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये है. दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था, तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
0: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए. ये दो रीजन्स अगर आपके इसमें टिक होता है कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता. SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में.
1: जी, अगले कॉलर है भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
4: नमस्ते मैडम. नमस्ते मार्केट मद्रा टीम. मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही हैं टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग?
0: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो. इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस. अदर देन दैट, लेट्स से फॉर समबडी हु डज नॉट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ही और शी कैन सिंपली स्टार्ट विद अ पैसिव फंड. सो इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to a different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid-cap, passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well. And if you are investing in those, then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap, passive really has a long way to, you know, beat active management. So there also active works best.
2: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashuji, sawal puche.
5: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund, and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae large cap and mid cap? What are the prospects? And I have some points in that particular fund. So should I redeem it or should I continue investing?
0: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you're looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid-cap or a small-cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need, you know, any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi-cap, can be included in the portfolio.
2: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week, with three main board IPOs scheduled for listing.
1: आज वक्त इतना ही है स्नेहा कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
2: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting with the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
0: Talking to me.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो की दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भरता को किस दिशा में ले जा रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इस ऐतिहासिक

0: अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम से जुड़कर उन्हें बधाई दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया।
0: डॉक्टर काले, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
2: जब से इसरो ने काम चालू किया था, तब से एक देखा था कि सभी काम जो है उसकी जो संस्था है, जो सेंटर से, वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जब अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है, वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में जाकर स्थित हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खातरी है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं, मगर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें हाथ भर होता है और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
0: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
2: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इससे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
0: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
2: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।
0: जी डॉक्टर काले, ये आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, संचार, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं?
2: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले SLV तैयार किया, उसके बाद में ASLV तैयार किया, PSLV तैयार किया, मगर ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए। तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने। अगर ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी।
0: जी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था, अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब इसमें शामिल हैं, सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। हम अगर भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की, अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक, तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है, क्या उनको गति मिलेगी, उनको तेजी मिलेगी?
2: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे आगे जाकर जो भी कुछ सामान बना सकते हैं उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। और ऐसे टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा।
0: जी, और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें, जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने, शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनमें ये जो चार क्षेत्र हैं इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है?
2: डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं। अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
0: जी, और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी, तो क्या खेती बाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है?
2: हाँ, हो सकता है। जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से ऐसे सैटेलाइट जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है। और ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं।
0: जी, और डॉक्टर काले, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं, भू राजनीतिक, कई जगह तनाव रहे हैं, कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में, ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
2: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो हमें इसके लिए काम में ला सकते हैं तो ये सैटेलाइट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे सैटेलाइट्स, छोटे जो सैटेलाइट्स है, बड़े भी सैटेलाइट्स है, ऐसे हम बना सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा।
0: जी, और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं?
2: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सबको अभी पता है कि भारत ये कर सकता है लेकिन उनको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम मिला सकते हैं अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम सर करना होगा।
0: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
2: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कमती हो रहा है, जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए। अगर जब वहां तक जो ये पहुंच सके अच्छी तरह से, तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा।
0: जी।

0: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है, इसरो की है, दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं, और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ भार लगा सकते हैं।
1: जी, और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं। इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं, स्पेस में जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं, और रेगुलेशंस से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो अभी हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
0: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए जो हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को का भी पूरा पालन होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका तो पालन ये करेंगे ही, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका अच्छी तरह से समझ पहुंचना चाहिए। और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टडीज जिसे कह सकते हैं उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
0: हाँ, बन सकता है, मैंने अभी जैसे कहा, तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो ये अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काले जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

शाम ढलती है तो यादें भी साथ लाती है, शाम ढलती है तो यादें भी साथ लाती है, दिल की खामोशी में कुछ बातें कह जाती है। सूरज छुप जाता है पर रोशनी रह जाती है, वैसे ही तुम्हारी यादें हर शाम महका जाती हैं। जी हाँ, आपकी याद आती है हमें भी, तभी तो हम खींचे चले आते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: फिलहाल वक्त है सांझ ढले का। यह खूबसूरत सी शाम और शाम के समय आधा दिन जब बीत जाता है तो हमारे दिल में कुछ बातें हलचल मचाती हैं, साझा करने जाती हैं कुछ अपनों के साथ, ढूंढती हैं उन खास अपनों को जिनसे हम अपनी बातें कहकर अपने दिल को कुछ हल्का कर लें। तो घबराइए नहीं, हम जो आपके साथ हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर सांझ ढले में आज आपके साथ है आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो कहिए क्या कहना है आपको।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

तो लीजिए जनाब, फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ सांझ ढले में। और सांझ ढले में इस वक्त वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:36:19। आप हैं रूपा के साथ। तो जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब अपना कोई ख़ास दोस्त बहुत दिनों बाद मिलता है तो हमें लगता है कि अरे आज ये कहाँ से आ गए भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खासी मुलाकात हो गई। तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल में कोई बात छुपी हुई थी और मिलने की चाहत तो थी लेकिन मिल नहीं पा रहे थे समय की कमी के कारण। लेकिन जब एकदम से हमारा पुराना कोई परिचित सामने आता है या दोस्त सामने आता है तो हम उनसे अक्सर यही पूछते हैं

भाई सांझ का समय है और अगर आपके अपनों की मुलाकात हो ही जाती है तो गिले शिकवे कैसे। गिले शिकवे भूलकर अपने दिलों की बातों को एक दूसरे

मंजिल तो आपकी और हमारी एक ही है, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और फिलहाल रूपा विदा लेती है, 8:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।

0: फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दो नई पहले शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारम्भ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट रहने का संदेश दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन

0: बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान के बजाय सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दो नई पहल शुरू की है। उन्होंने गांधीनगर में स्मार्ट पैड माउंटेन सबस्टेशन का उद्घाटन किया और सोलराइज ईस्ट अभियान की शुरुआत की।
2: सोलराइज ईस्ट अभियान का उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक वर्ष में बिजली क्षेत्र में 1427 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इस निवेश के माध्यम से ट्रांसमिशन और वितरण को सुदृढ़ किया जा रहा है, साथ ही नए सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुराने बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधुनिक तकनीकी को तेजी से अपनाया जा रहा है। श्री सूद ने कहा कि किसी भी आधुनिक शहर के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी बिजली व्यवस्था होती है। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों का दैनिक जीवन निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि विश्वसनीय, किफायती, स्मार्ट और हरित बिजली सुनिश्चित करना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवर लाइन का लोकार्पण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।
3: इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, सड़कों का विस्तार और निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में सीवर व्यवस्था सुदृढ़ होगी, गंदे पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी तथा जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही गंदे पानी के जमाव से होने वाली बीमारियों की आशंका भी काफी हद तक कम होगी। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुनिक शहरी क्षेत्रों के समान विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
0: दिल्ली सरकार ने जनकपुरी स्थित एक निजी विद्यालय को बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
4: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यदि कोई संस्था बाल यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर घटना को छिपाती है, आवासीय भवन के बेसमेंट में अवैध रूप से शाखा चलाती है और विद्यालय के धन का दुरुपयोग करती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर विद्यालय की भूमि की लीज रद्द कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की घटना की जानकारी छिपाने, सभी 64 सीसीटीवी कैमरों के बंद होने, बिना अनुमति शाखा चलाने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो सुरक्षा व्यवस्था के अभाव, फायर एनओसी समाप्त होने और करीब 6 करोड़ रुपए के वित्तीय दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाने की तैयारी कर रही है। इस अभियान के लिए लगभग 2 लाख तिरंगे दिल्ली के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: इस अभियान के जरिए महिलाओं और स्थानीय समूहों को आजीविका तथा आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूरी दिल्ली में 15 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे।

0: उन्होंने कहा कि सभी तिरंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा जन भागीदारी की भावना को मजबूत करने का भी एक अवसर है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज नेताजी नगर स्थित महिला तकनीकी संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार 33वें रविवार सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने AI, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे रोजगारमुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित से 5,80,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संचालित एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की बोतलों पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल था। मामले की जांच जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी भारतीय पहचान बनाकर दिल्ली में रह रहा था। जांच में पता चला कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता भी बनवा लिया था। पुलिस ने पासपोर्ट, आप्रवासन रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उसकी वास्तविक पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कल नई दिल्ली जिले में किसी भी अविरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई इजाजत मांगी गई है और ना ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए यहां विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल पर ही पहले से इजाजत लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति है। चूंकि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर कल से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी की है। यातायात पुलिस के अनुसार संसद सत्र के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों तथा चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पशुपालन विभाग का अधिकारी बनकर रिश्वत मांगने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पशुपालन और डेयरी विभाग का अधिकारी बताकर पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत ऋण आवेदकों से लोन मंजूरी के नाम पर रिश्वत वसूलता था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने उत्तराखंड के एक पोल्ट्री फार्म संचालक से 22,50,000 रुपये के ऋण को मंजूरी दिलाने के बदले 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। खेल और युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। देशभर में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
2: आज संडे ऑन साइकिल की 82nd एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े है।
1: इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी बताए।
2: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत

0: बड़ा परिणाम देता है। हर संडे एक घंटे साइकिलिंग से आप स्वयं को फिट रख सकते हो, पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हो, देश का तेल को बचा सकते हो। एक साइकिलिंग से इतना फायदा होने से और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के और प्रेरित हो रहा है और साइकिलिंग कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्तरां, कैफे और अन्य कई स्थान कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला फुटबॉल प्रेमियों को बड़े मुकाबलों का आनंद लेने का मौका देगा, साथ ही शहर की जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता जापान की अकाने यामागुची को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की ये जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और पीवी सिंधु ने देश का मान बढ़ाया है। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम साफ रहने के साथ साथ लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में 2 नई पहलें शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारम्भ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और पारित किया जाना है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में आज सुबह से हो रही मूसलाधार वर्षा से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक जानमाल का नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। अमरीकी सेना ने आज भी ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज रात गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 से शुरू होगा। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने एक ओवर में 2 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: President Draupadi Murmu today embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. On the first leg of a visit, President Murmu will reach Moldova. This will be the first ever visit by an Indian president to Moldova. During her visit, the president will meet and hold delegation-level talks with her counterpart, Maya Sandu. Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, has said that President Draupadi Murmu's visit to the two countries will be historic. Talking to Prasar Bharati, Dr. Mohapatra said, India and Moldova enjoy warm and friendly relations and the visit would mark a significant and historical milestone and elevate bilateral ties to a broad-based partnership. He said Romania is a

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और मधुरिमा, जिसमें हम शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत लाते हैं आपके लिए और साथ में बातें करते हैं रागों पर। तो आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं राग पहाड़ी पर सजे गीत, जिसे आप सुनेंगे अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। रूपा आपकी सेवा में हाजिर है मधुरिमा में। तो चलिए सुनते हैं 1960 में प्रदर्शित फिल्म कोहिनूर का ये गीत आप सभी के लिए रफी साहब और लता जी के स्वर में। इस गीत में संगीत दिया नौशाद साहब ने और गीत के बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं रूपा के साथ, और रूपा आपके लिए लाई है मधुरिमा कार्यक्रम, जिसमें आज हम सुन रहे हैं पहाड़ी राग पर आधारित गीतों को। राग पहाड़ी पर्वतों की ठंडक, प्राकृतिक सुंदरता और चुलबुलेपन को दर्शाता है। ये मन को शांति और खुशी प्रदान करता है। अभी कुछ देर पहले आपने सुना कोहिनूर फिल्म का गीत, और अब शामिल कर रहे हैं हम आराधना फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए एसडी बर्मन साहब के संगीत से।

सजा और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने, किशोर साहब और लता जी के स्वर में। चलते हैं पहाड़ों की ओर ही।

छोटा तारा था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। जी हाँ, जब पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में हम बैठे होते हैं तो कुछ मन इसी प्रकार की बातें करता है। राग पहाड़ी की बात कर रहे हैं हम आज मधुरिमा में, और राग पहाड़ी बिलावल थाट का राग माना जाता है, जो कि मूल रूप से एक लोक धुन पर आधारित राग है। इस राग को ज़्यादातर हल्के फुल्के गीतों और भजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गीत राग पहाड़ी पर आधारित, रफ़ी साहब की आवाज़ में ताल कहरवा, और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने।

तो साथियों, राग पहाड़ी में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी संवादी स्वर सा और पा है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर औड़व जाति का ये राग माना जाता है। मधुरिमा में आज फिलहाल इतना ही। फिलहाल रूपा को अनुमति दीजिए, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान के हर अपडेट के साथ आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां आज हमारे साथ है फुटबॉल का फीवर, बैडमिंटन कोर्ट से आती इतिहास की दस्तक और लॉर्ड्स के मैदान पर जारी रनों की बारिश। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। रात 12:30 बजे होंगी दोनों टीमें आमने सामने। इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में फ्रांस को 6-4 से हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर जारी। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जापान ओपन सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के खुमार के साथ, जो इस समय पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है। और फुटबॉल फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाना है। जानते हैं फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबले से पहले किसका पलड़ा कितना भारी है।
1: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला फैसला करेगा कि फीफा विश्व कप का विजेता कौन होगा। एक तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर 1962 के इतिहास को दोहराना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर स्पेन 2010 के करिश्मा को दोहराकर एक बार फिर खिताब अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीद अपने स्टार खिलाड़ी और इस विश्व कप में 8 गोल कर चुके लियोनेल मेसी से होंगी। अर्जेंटीना ने इस वर्ष कई बार अंतिम क्षणों में कमबैक की बदौलत मुकाबले का रुख बदला है, जैसा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में देखने को भी मिला, जहां पूरे मैच में पीछे चल रही अर्जेंटीना ने अंतिम मिनटों में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया था। जूलियन अल्वारेज, लुटारो मार्टिनेज और मैक एलिस्टर टीम की मजबूत कड़ी हैं। मिडफील्ड और डिफेंस में एंजो फर्नांडिस, मैक एलिस्टर, पेरेडेस और एमिलियानो मार्टिनेज टीम की ताकत है। वहीं स्पेन मजबूत डिफेंस और पोजीशन गेम से दूसरा खिताब हासिल करना चाहेगा। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस की मजबूत टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम के डिफेंस में उनाई सिमोन और रॉड्री जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं। लैमिन यमल, निको विलियम्स, मिकेल ओयारज़ाबल और फैबियन रुइज से भी स्पेन को फाइनल मुकाबले में काफी उम्मीद होंगी। ऐसे में इस खिताबी मुकाबले में इन दोनों डिजर्विंग फाइनलिस्ट टीम के बीच मैदान पर जोश, जुनून, कौशल और रणनीति का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जो तय करेगा कि फुटबॉल का नया विश्व विजेता कौन बनने जा रहा है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो आज कागज पे कौन सी टीम कितनी मजबूत है, इससे अधिक फैसला इस बात से होगा कि मैदान पर वो आखिरी के 90 मिनट किस टीम के साथ होते हैं। और कहा जाता है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो देखना होगा कि आज विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 टीमें सामने हैं और आज रात के बाद विश्व कप का नया विजेता कौन होगा। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
2: फुटबॉल प्रेमियों को बीती रात एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिला, जहां तीसरे स्थान के लिए खेलते हुए इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। 1982 के बाद ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी एक मुकाबले में 10 गोल हुए हों। इंग्लैंड शुरुआत से ही हावी नजर आई। मैच के तीसरे ही मिनट में डेक्लान राइस ने लंबी दूरी से शॉट लगाते हुए पहला गोल किया। इसके बाद मैच के 18वें मिनट में एजरी कौनसा ने राइस के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को 2-0 कर दिया। बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए मैच का तीसरा गोल किया, जबकि 43वें मिनट में उन्होंने एक और गोल दागते हुए पहले हाफ में ही इंग्लैंड की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने दमदार वापसी की। 48वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए मुकाबले का पहला गोल दागा। इसके बाद 58वें मिनट में बारकोला ने एक और गोल करते हुए स्कोर को 4-2 पर ला दिया। 9 मिनट मिनट बाद ही एम्बाप्पे ने एक और गोल करते हुए इंग्लैंड की बढ़त को और कम कर दिया। अब बारी थी इंग्लैंड के पलटवार की, जिसने मैच के अंतिम पलों में एक बार फिर दमदार खेल दिखाया। 87वें मिनट में हाथ आई पेनल्टी में बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए पांचवा गोल किया। हालांकि फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेल ने इंजरी टाइम में गोल करते हुए स्कोर 5-4 कर दिया। इंजरी टाइम के 8वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से छठा गोल करते हुए टीम की जीत पर मोहर लगा दी। 1966 में फीफा विश्व कप का खिताब जीतने के बाद ये टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो शायद शुरुआत के 102 मुकाबलों में जहां पे गोल की कुछ कमी रही होगी, वो तीसरे स्थान के लिए खेले गए इस मैच में पूरी होती हुई नजर आई। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, जो दो बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया।
3: It's out. Out. Game. Venkata Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title across any of the disciplines here at the Japan Open.
4: स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को हराकर न सिर्फ ये खिताब अपने नाम किया, साथ ही दो साल जारी BWF टूर खिताब का सूखा भी समाप्त किया। ये दिसंबर 2024 में सैयद मोदी टूर्नामेंट जीतने के बाद सिंधु का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। सिंधु ने टोक्यो मेट्रोपोलिटन जिम्नेजियम में 4 बार की चैंपियन

0: यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। इसके साथ ही वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु को शानदार प्रदर्शन के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ मिला। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 5 हान यू को हराया, तो क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल में उनकी विपक्षी खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से मैच से हट गई। सिंधु ने फाइनल मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की और दोनों गेम में बढ़त बनाने की कोशिश में लगी रही। हालांकि कई बार यामागुची ने स्कोर बराबर किया, लेकिन दोनों गेम के अंतिम चरणों में सिंधु ने शानदार धैर्य और आक्रमण का मिश्रण दिखाते हुए 21-17 से मुकाबला और खिताब अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित राजनीति और खेल के क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने सिंधु को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन इतिहास में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि को जोड़ दिया है और 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सिंधु ने कोई 750 स्केल के ऊपर का टूर्नामेंट जीता है। और अब रुख करते हैं लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान का, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 141 रन की एक शानदार शतकीय पारी खेली। और अब इस श्रृंखला पे और इस मैच पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, इस समय क्या ताजा अपडेट है भारतीय पारी का इतने बड़े लक्ष्य के सामने?
2: शक्ति, अभी भारतीय टीम का 10वां ओवर चल रहा है और 49 रन पर पारी पहुंच चुकी है बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं शुभमन गिल 36 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो बहुत ही सधी हुई शुरुआत हुई है भारतीय टीम के लिए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी धीमी शुरुआत है, लेकिन उसको कवर अप कर लिया गया है। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड की पारी की, तो भारत को एक बहुत विशालकाय लक्ष्य उन्होंने दिया है 388 रनों का, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर्स ने। बेन डकेट ने 141 रन और जेकब बेथल ने 91 रन की पारी खेली। साथ ही उन लोगों ने 192 रन की पार्टनरशिप करी और उसके बाद बेन डकेट और जो रूट ने भी 101 रनों की साझेदारी करी। और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन बनाकर मैच का रुख जो है इंग्लैंड के तरफ कर दिया और रूट के साथ मिलकर 19 गेंदों पर 63 रनों की बहुत ही तेज तर्रार साझेदारी करी। अगर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी औसतन प्रदर्शन रहा। गुरनूर ब्रार ने 10 ओवर में 97 रन आज लुटाए, वहीं अर्शदीप ने 10 ओवर में 72, प्रसिद्ध ने 10 ओवर में 69 और अक्षर पटेल ने सबसे किफ़ायती गेंदबाजी करी है आज 10 ओवर में 61 रन। सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को ही मिले हैं। लेकिन आज का जो ये मुकाबला है, इतना बड़ा लक्ष्य है, ये डिसाइड करेगा कि ये सीरीज किसके नाम होगी, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में एक मुकाबला भारत के नाम और एक मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो ये सीरीज डिसाइडर मुकाबला होगा। लेकिन लॉर्ड्स का मैदान ऐसा मैदान है जहां पर रिकॉर्ड्स टूटते हैं, नए कीर्तिमान बनते हैं। आज भी कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं, उन पर भी नजर डालें विशेष एक बार।
2: अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बेन डकेट ने जो 141 रन की पारी खेली है, वो लॉर्ड्स मैदान पर सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया है। उन्होंने विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उन्होंने 1979 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था 138 रनों का, और ये हाईएस्ट ओडीआई टोटल भी है। इसी के साथ ये भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ में 400वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। भारत के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद अब सीधा 27 सितंबर को भारत वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं और एक और रिकॉर्ड भारत को तोड़ना होगा अगर ये श्रृंखला और मुकाबला जीतनी है, और वो रिकॉर्ड होगा 388 रन का विशालकाय लक्ष्य चेस करते हुए हासिल करना। देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोग ने हिस्सा लिया।
3: आज संडे ऑन साइकिल की 82nd एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
1: ये 82वीं कड़ी थी इस कार्यक्रम की, और जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है देश में इसका विस्तार, इसका दायरा हर रविवार फैलता है। लोग सुबह 4 बजे 5 बजे अपने घरों से निकलते हैं अपनी वीकेंड की नींद को छोड़ करके और साइकिल चलाते हैं, दुनिया को और देश को एक संदेश देते हैं फिट रहने का। इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी देश को बताए।
3: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग से आप अपने स्वयं को फिट रख सकते हो, आप पोल्यूशन

0: आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के और प्रेरित हो रहा है और अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं।
1: तो हेल्थ के इस रेजोल्यूशन से निकलता हुआ पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, और अब रुक करते हैं बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता का, जहां मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन काजल ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में काजल ने अमेरिका की डायमंड प्रोसियस गिलफेड को हराया। वहीं भारत ने 53 किलो और 57 किलो वर्ग में दो रजत पदक भी अपने नाम किए हैं। अंतिम पंगाल को 93 किलो के फाइनल में चोट के कारण स्वीडन की एम्मा जोना डेनिस मालमग्रीन से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं 57 किलो वर्ग के फाइनल मुकाबले में नेहा शर्मा को चीन की कॉक्सिन होंग के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था। निशु ने 53 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में 12 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी अब ग्रीको रोमन शैली में हिस्सा ले रहे हैं, जहां भारत के लिए ललित से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने लगभग ब्रॉन्ज मेडल के मैच में अपना स्थान पक्का कर लिया है, हालांकि वो फाइनल की दौड़ से चूक गए। और इसके पहले पहले दिन अमन शरावत ने भारत के लिए एक शानदार स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीता था, जो कि भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं और भारत को आगे आने वाली बड़ी चैंपियनशिप में अमन से काफ़ी उम्मीदें होने वाली हैं। और अब चेस का रुख कर लेते हैं, जहां शतरंज में कोयम्बटूर के वीएस रतनवेल ने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2000 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करते हुए देश के 99वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। भारत अपने 100 ग्रैंड मास्टर से महज एक कदम दूर है। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है कार्यक्रम के अंत का, लेकिन चलते चलते आपको एक बार वापस लॉर्ड्स पर खेले जा रहे मैच का स्कोर बता देते हैं, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर और 2 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 50 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 24 और कप्तान शुभमन गिल 26 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने

0: सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी

0: और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
4: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा

0: विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़ाबल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow. Urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party,

0: ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन

0: प्राप्त हो सभी लोगों से, उसी तरह से अगर डी लिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता है, बस जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में उनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा, और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है, और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि
1: जी
0: इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया। तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोश पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
4: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके

0: पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
1: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया।

0: वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा परखा सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग हैं थे उनके वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं झूठे वायदे करते हैं जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नकार दिया तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी कट जाए वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर वो हम फॉलो कर रहे हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है राजनीतिक मसले हैं उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं हुआ और एसआईटी आपने गठन कर दिया है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है पूरा देश जो है उनपे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है मतलब एमपी चोरी करती है एमएलए चोरी करती है सत्ता चोरी करती है ये और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये एक नैतिकता हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है नैतिकता एक शब्द होते हैं हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उस पे इस प्रकार की बातें हैं लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध डालें ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है इस पर आप क्या कहेंगे और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं रचनात्मक क्यों नहीं दें हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हम

0: हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागरण करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
3: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है, लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से

0: क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है, बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट द इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर्स हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग में, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी एंड आप एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपनी विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपरा के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय शौर्य भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुर्गन बैठक में उपस्थित रहे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देवार्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
6: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
5: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण

0: Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sangita is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. Madhya Pradesh Cabinet today approved the draft bill on Uniform Civil Code. The Cabinet meeting was held at Jagdishpur in Bhopal, led by Chief Minister Dr. Mohan Yadav. The bill will be presented in the monsoon session of the State Assembly starting tomorrow. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off at 12:30 a.m. Indian time. Meanwhile, several Indian states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demand by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Shubman Gill led Indian side with 187 for 1 in 29 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के इंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉ. महापात्रा ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक

0: रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया।
1: अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उन्होंने ईरान की तटीय निगरानी सेना और वायु रक्षा केंद्रों, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इस कार्रवाई में खास तौर पर गार्ड को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने ईरान के आहवाज में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिरा है। सेंट्रल खातम अल अंबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अमेरिका की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देगी। ईरान पर अमेरिकी हमले 8वें दिन भी जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मुलाकात भारत तंजानिया की अटूट साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को दर्शाती है। श्री राधाकृष्णन ने बेहतर सहयोग के माध्यम से साझा विकास को आगे बढ़ाने में तंजानिया और जांजीबार के साथ साझेदारी करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। डॉक्टर हुसैन अली ने चेन्नई स्थित IIT मद्रास परिसर का दौरा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने IIT मद्रास जांजीबार परिसर की स्थापना, जल परियोजनाओं, ICCR छात्रवृत्ति और ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज सुबह जांजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: पेरू में एंडीज क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक लगभग 300 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र हुआनकायो प्रांत के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। पेरू के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान ने कहा है कि लापता लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट सहित कई इमारतें ढह गईं या उन्हें क्षति पहुंची। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,119 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 346 मिलियन अमरीकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास, बुनियादी ढांचे और मूलभूत सेवाओं में सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच पर फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी।
3: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट छूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़ाबल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस

0: फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। जॉर्डन में अमेरिका के सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर हवाई हमले किए। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से 5 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा घायल। और अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में फुटबॉल का जुनून। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines: President Draupadi Murmu embarks on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. In Peru, 5 people killed and more than 20 injured after 5.5 magnitude earthquake struck Andes region. And football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for final battle of FIFA World Cup tonight. President Draupadi Murmu embarked on a 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the 3 European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties. The focus of the visit is on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. Talking to Prasar Bharati, Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra has said that President Murmu's visit to these countries will be historic.
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova. Similarly, when we talk about Romania, and it would be basically in the more than 3 decades. So given that importance, it is historic. Both the countries and the leaders with the leadership, we would be very much happy to review our existing bilateral relationship. We would be also identifying the key areas. In fact, Honorable President is accompanied by a strong business delegation. Similarly, Honorable President would be visiting the parliament in Romania as well as Moldova, which would help us strengthen the parliamentary relationship.
2: President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Emuini, met Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. Zanzibar is the semi-autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, House of Representatives and flag. During their meeting, they reviewed the full spectrum of India-Tanzania relations and explored new avenues for future collaboration. The Vice President, in a social media post, said that the meeting reaffirmed the enduring India-Tanzania partnership and the special relationship India shares with Zanzibar, rooted in centuries-old maritime, cultural, and people-to-people ties. The United States military launched airstrikes on Iran today, targeting the country's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, in what it described as retaliation for the killing of American troops in Jordan. A report.
4: The U.S. Central Command said it has struck Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites. It also said for the first time the operation specifically targeted the Guard, a key power base in Iran's theocracy that controls its ballistic missile arsenal.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 9 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो दिलों तक महदूद नहीं रहती, उनका जिक्र ज़माने की हर महफिल में होने लगता है। और जब मोहब्बत के चर्चे सुरों में ढल जाएं, तो वो नगमा बरसों तक दिलों पर राज करता है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और वो नगमा है एक बेहद खूबसूरत फिल्म 1968 में आई ब्रह्मचारी से। इस गीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है। संगीत विद्वान और फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यन के अनुसार यह धुन पहले किसी दूसरी फिल्म के लिए बनाई गई थी, लेकिन वहां उससे मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद वो मायूस होकर वहां से निकल गए। मायूस जयकिशन ने मुंबई के मशहूर होटल गलार्ड में यह धुन शमी कपूर साहब को सुनाई। धुन सुनते ही शमी कपूर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने निर्देशक भप्पी सोनी से इसे फिल्म ब्रह्मचारी में शामिल करने की गुजारिश कर दी। और फिर क्या था, यही धुन फिल्म के सबसे मकबूल और यादगार गीतों में शुमार हो गई। यह और दिलचस्प बात, बेहद खूबसूरत और एक और बहुत ही खूबसूरत बात इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस नगमे से जुड़ी हुई, वो है कि इस गीत में जो महिला की आवाज़ है वो आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की, लेकिन उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ की मधुरता और बनावट इतनी हद तक लता जी से मिलती थी कि ज़्यादातर लोग इसे उन्हीं की आवाज़ समझ बैठे थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि यह आवाज़

सुमन कल्याणपुर की है, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि वो बेहद खूबसूरत सिंगर भी हैं। ब्रह्मचारी फिल्म का वही नगमा बेहद खूबसूरत आवाजों में मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। ब्रह्मचारी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की अपनी एक अलग जबान होती है, कभी निगाहों से बयां होती है तो कभी एक मासूम से सवाल से छुप जी आती है। और जब दिल पूछ बैठे, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, तो जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि मुस्कराहटों में भी मिलता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, यानी वही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1967 की सुपरहिट फिल्म मिलन से। और मिलन फिल्म का यह सदाबहार नगमा इस मधुर युग गलगीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है मुकेश साहब ने और लता जी ने, जिसे पर्दे पर सुनील दत्त और नूतन की सादगी भरी केमिस्ट्री को इस गीत ने और भी खूबसूरत बना दिया। इसके बेहद जज्बाती बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और सुरों की मनमोहक चादर बुनी हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। दिलचस्प बात यह है कि मिलन के गीतों ने गीतकार आनंद बख्शी के फिल्मी सफर को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के गीत सावन का महीना, पवन करे शोर, राम करे ऐसा हो जाए और बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, इन गीतों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने मधुर संगीत को भी खूब सराहा गया और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। और जब एक ओर लता मंगेशकर जी की कोमल आवाज नूतन के भावों को सजा रही थी, तो दूसरी ओर मुकेश साहब की सादगी और दर्द भरी गायकी सुनील दत्त के किरदार में जान डाल रही थी। मोहब्बत की उस मासूम रिवायत में आइए हम लौट चलते हैं, जहां इजहार में शरारत थी, जवाब में हया थी और हर सुर में दिल की धड़कन सुनाई देती थी। तो आइए उसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

0: बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। मिलन फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में और हर सिंगार के इस महफिल को यहाँ पर बस कुछ पलों के लिए रोकते हैं। उसके बाद जब लौट कर आए तो फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:48 और 10 सेकेंड। महफिल सजी है हर सिंगार की, जिसमें सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, इंतज़ार से मुकम्मल होते हैं, और कुछ वादे लफ्ज़ों से नहीं एक खामोश एहसास से भी निभाए जाते हैं। ऐसा ही ये खूबसूरत वादा है फिल्म चितचोर के एक बेहद खूबसूरत नगमे में। यह फिल्म आई थी 1976 में और इस बेहद खूबसूरत युगल गीत को अपनी रूहानी आवाज़ों से अमर बनाया है।

यशोदा साहब और हेमलता जी ने। और इसके बेहद जज्बाती बोल लिखे और इसकी मधुर धुन भी तैयार की बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार रविंद्र जैन साहब ने। उन्होंने ही इस गीत को लिखा भी और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा भी। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही शख्स गीतकार और संगीतकार दोनों रूपों में दिल जीत ले, और रविंद्र जैन ने इस गीत के साथ यही कमाल कर दिखाया है। इस गीत और पूरी फिल्म से जुड़ी महाराष्ट्र की एक खूबसूरत कहानी भी है। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी और महाबलेश्वर की वादियों में लगभग 25 दिनों तक हुई। फिल्म के कई यादगार दृश्य और लोकप्रिय गीत, जिनमें गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा भी शामिल हैं, पंचगनी के ही एक पुराने बंगले में फिल्माए गए थे, जिसे फिल्म में जरीना वहाब के घर के रूप में दिखाया गया। कुछ दृश्य अलीबाग के पास बसे शांत किहिम गांव में ही भी शूट किए गए, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती आज भी फिल्म के हर फ्रेम में महसूस की जा सकती है। संगीत प्रेमियों के लिए या संगीत के चाहने वालों के लिए एक और दिलचस्प बात यह है कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा की धुन राग धनी पर आधारित है, जिसे कर्नाटक संगीत में शुद्ध धन्यासी कहा जाता है। इसी गीत के लिए केजे यशोदास साहब को 1976 का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। यही फिल्म उनके शानदार बॉलीवुड सफर की शुरुआत भी बनी, और उनकी रूह को छू लेने वाली आवाज ने हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग पहचान बना ली। तो आइए इसी फिल्म चितचूर का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर यशोदास साहब और हेमलता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

जब दीप जले आना। चितचोर फिल्म का यह बेहद खूबसूरत नगमा यशोदास साहब और हेमलता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कई बार दिल की पूरी दास्तान लफ्जों से नहीं सिर्फ आंखों से बयां हो जाती है। एक नज़र मुस्कुरा दे तो हजारों बातें कह जाती हैं और एक खामोशी उम्र भर का रिश्ता बन जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1978 की खूबसूरत फिल्म घर से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है। इस गीत को राहुल बर्मन साहब ने और इसे लिखा है हम सब के चहेते नगमा निगार गुलजार साहब ने।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए हर सिंगार से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण और ठीक 11:40 पर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर गीत मेरे मनमीत। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज नियरली 12,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई। In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय शेयर बाजार में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सराफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर।
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत। देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते FPI का। लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने जुलाई में लिवाली की है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर के वैश्विक

0: व्यापार में कमजोरी से एफपीआईज अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है, लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआईज ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 7,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी,
2: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम।
0: जी, सवाल पूछे। जी
2: जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ में निवेश कितना बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक में था कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में पीपीएफ खोला, वो कितना सुरक्षित है?
0: पीपीएफ में पैसा कितना सुरक्षित है?
3: कांता जी, पीपीएफ क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये काफी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है। तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफ़ी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
0: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फ़ायदे दिखते थे, क्या बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
3: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है तो वो पैसे तो रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है, और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज लॉन्ग बीन अ फिक्स्ड डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
0: जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन रिलेटेड, लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन। So I have transferred my mutual funds to my mother, and when I'm filing my income tax return in a new regime, both for myself and my mother, so it is showing of rupees around 10 lakhs and under the off-market transaction credit in EIS and KIS statements. So I want to know whether I have to pay any tax. Or how the tax calculation will be done while filing this return, for me and for my mother, I've transferred the mutual funds.
0: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
1: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क that let's say on 1st of August I have to rebalance for the yearly rebalancing. So in one of my let's say asset that is the

0: mid cap or small cap, I have now more than my stipulated percentage. So for the next year, should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
1: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation, what you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And that should be helpful.
2: जी, अगले कॉलर के पास चले सरबजीत
3: जी. चेन्नई काशीनाथ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: गुड इवनिंग मैडम.
3: गुड इवनिंग.
4: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप. इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है, इस पे बने रहना चाहिए? हर फंड में 2,000 जा रहा है, ये क्या अच्छा है, इसकी अच्छा जानकारी चाहिए. धन्यवाद.
1: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में, इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर पार ना कर ले. क्योंकि होता क्या है, लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें, ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए. बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में, तब आप डरे नहीं, आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें. क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न, आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है. तो आप देखिए, अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए.
2: जी, दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं. आकाश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है. अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत.
3: यस, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद. सुभाष जी, सवाल पूछिए.
5: हाँ नमस्कार सर.
3: जी नमस्कार.
5: मैडम, अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या, जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था, ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है? और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये कुछ पता चल सकता है?
2: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं, मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है, उन्होंने भारत के शेयर बाजार में निवेश किया है. और डेट फंड में भी नहीं है, वो डेट मार्केट में है, वो भारत के पूंजी बाजार का ही हिस्सा है. तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए. जी, अगले कॉलर के पास चले हम.
3: यस, लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली.
5: हेलो
2: जी आकाश.
5: मुझे दो बातें पूछनी है. एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे. और क्योंकि हम लोग की FD है, तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है, या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाएं? क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा. कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज. और ये साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं,
6: आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहां आप लोग आम आदमी म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, आपसे राय लेना चाहता है, क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है। धन्यवाद
1: जी। आकाश जी, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट।
2: जी ऐसा अक्सर होता है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए। जब आपको आप आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। 1 साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन वेल्थ जनरेशन के लिए है। अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे, अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे। इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है, और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपकी आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए। और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए। दूसरा जो आपने बोला कि FD 1 साल की लेनी चाहिए या ज़्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मैच्योर होता है, वो वापस आता है आप, और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है।
2: जी अगले कॉलर है दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
7: नमस्कार, मैं जिस कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
2: जी
7: मैं 2 बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। थैंक यू
1: जी। दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पे मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले। बट इस पर अभी ये बस एक सर्कुलर है, इस पर कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है। AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पर क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। बट हाँ ये बात ज़रूर है कि दिनेश जी सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है। एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारा नजरिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना

0: नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए, बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर निवेश वो रह सकता है। बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज़्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, योगेश जी सवाल पूछे।
2: जी नमस्कार डॉक्टर जी को, मेरा सवाल ये है कि ICICI क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैकेज आ रहे थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड
0: जी, योगेश जी कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद वापस आ जाता है। तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उन पे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहां पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है। और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली। तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फ़ायदा रहेगा।
3: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे।
1: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर, जितेंद्र जी सवाल पूछे।
4: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है, जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि मैडम

0: अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत इजी था। तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
1: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ये दो रीजन्स अगर आपके इसमें टिक होता है, कोई ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता। SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में।
2: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मैडम, नमस्ते मार्केट मद्रा टीम। मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनेरियो में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइट?
1: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो, इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस। अदर देन दैट, लेट्स से फॉर समबडी हु डज नॉट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ही और शी कैन सिंपली स्टार्ट विद अ पैसिव फंड। सो इफ यू आर ऑलरेडी invested in either passive or active, I would say this is not really any reason to stop those and move on to a different fund or a different management strategy. The issue being that, of course, in large and mid cap passives have, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those, then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap, passive really has a long way to, you know, beat active management. So there also active works best.
4: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal poochhe.
5: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund, and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae large cap and mid cap, what are the prospects, and I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
1: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you are looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid-cap or a small-cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need, you know, any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi cap, in can be included in the portfolio.
4: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. with three main board IPOs scheduled for listing.
2: आज वक्त इतना ही है स्नेहा कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी धन्यवाद
4: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
7: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत का। नमस्कार, संगीत के इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से इस्तकबाल है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द से कभी धुंधले नहीं पड़ते, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन उनके सुर, उनके अल्फाज और उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। ऐसे ही सदाबहार और गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। मैं हूं आपके साथ फेरोज। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए और उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस खूबसूरत युगल गीत को अपनी सुरीली आवाज़ों से सजाया है मन्ना डे साहब और लता जी ने। गीत के दिल को छू लेने वाले अल्फाज यानी गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है कालजयी धुन तैयार किया है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है, ना कोई बनावट ना कोई शोर, बस चांदनी रात, दो धड़कते दिल और मोहब्बत का एक मासूम सा पैगाम। यही वजह है कि 7 दशक बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। मन्नाडे की गहराई और लता मंगेशकर की कोमल आवाज जब एक साथ मिलती है तो हर अंतरा एक खूबसूरत गुफ्तगु बन जाता है। वहीं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की शायरी इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की एक अनमोल याद बना देते हैं।

फिल्म चोरी चोरी का ये बेहद खूबसूरत नगमा मन्ना डे साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब मोहब्बत की दुनिया में कभी एक नज़र का इंतज़ार होता है तो कभी एक मुस्कुराहट पूरी दास्तान कह जाती हैं, और कभी कभी बस एक पल के लिए कोई अपना चेहरा फेर ले तो दिल बेचैन हो उठता है। इसी नाजुक एहसास को सुरों में पिरोया गया है हमारे अगले सदाबहार नगमे में, और इस सदाबहार नगमे हैं सुनहरे दौर के। इस रोमानी युगल गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बनाया है मुकेश साहब और लता जी ने। गीत के सादगी भरे मगर दिल में उतर जाने वाले अल्फाज लिखे हैं शैलेंद्र ने, और इन्हें मधुर धुनों का जादूगर जादू से सजाया है शंकर जयकिशन साहब की बेहद खूबसूरत जोड़ी ने। यह वो दौर था जब प्रेम का इजहार शोर से नहीं बल्कि निगाहों, मुस्कुराहटों और मासूम शरारतों से होता था। ऐसा ही यह नगमा है दम भर जो उधर मुंह फेरे, उसी खूबसूरत एहसास का आईना है। गीत में रूठने मनाने की मिठास है, इश्क की चंचल अदा है, और दो दिलों के बीच चलती एक प्यारी सी गुफ्तगू का रंग भी। मुकेश साहब की सादगी भरी आवाज़ और लता मंगेशकर की मधुर तान इस गीत को ऐसा जादू बख्शी है कि आज भी सुनते ही सुनहरा दौर आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। यही वो दौर था, यही उस दौर के संगीत की असली कशिश थी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते

और फिल्म आवारा का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। ये फिल्म आई थी 1951 में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और

प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतरे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो हमारे दिल के, आपके दिल के बेहद करीब है। कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, जैसे दो सितारे अपनी रोशनी से पूरी फिजा को जगमगा देते हों। मोहब्बत का यही दिलनशी एहसास अगला ये नगमा बता रहा है। बरसों से इश्क की महफिल की ये शान भी बना हुआ है, हिंदी सिनेमा के संगीत की महफिल की ये शान भी बना हुआ है ये नगमा। ये गीत सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात का बयान नहीं बल्कि उस एहसास का जश्न है जब दो रूहें एक दूसरे में अपना अक्स तलाश लेती हैं। शकील बदायूनी साहब की शायरी में नज़ाकत है, लफ्ज़ों में मिठास है और नौशाद साहब के सुरों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खुशबू साफ महसूस होती है इस गीत में। और यह नगमा है 1960 की एक शानदार फिल्म कोहिनूर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की।

0: फिल्म कोहिनूर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आपके साथ रहेंगी मंजू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा संगठित डकैती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित और समयबद्ध उपायों के निर्देश दिए। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में कल सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। अमरीकी सेना ने कल ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
2: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: धन्यवाद नीलम जी।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद नीलम जी।
2: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है वो असल में क्या है?
4: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
2: जी,
4: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की। उन्होंने
2: जी
4: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
2: जी,
4: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
2: जी।
4: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
2: जी।
4: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
2: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
5: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही
2: जी।
5: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं और उनको ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर

0: कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है, या नंदीनागरी है, या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
1: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
0: निश्चित रूप से।
1: जी, मैं प्रेमशंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या यह केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
2: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
1: जी,
2: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम 5 तो बैठते ही थे, लेकिन पंचायत में 5 के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी,
2: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निस्सृत हुआ है,
1: जी,
2: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
2: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को पल्लवित किया जा रहा था।
3: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है।
1: जी।
3: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं।
1: जी।
3: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था
1: जी।
3: तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को

0: जी,
1: तो एक स्पर्धा नहीं थी
0: जी,
1: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था
0: जी। यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं
1: जी।
0: और इसमें मतभेद हो सकता था, मनभेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था जी। यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी।
1: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सके, तो इसमें हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़े।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए, हमारी उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में AI हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र लिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूँ AI टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्मराक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्मराक्षस को आप अपने वश में रखे
0: जी,
1: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए
0: हाँ।
1: लेकिन ब्रह्मराक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा
0: जी।
1: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
0: जी।
1: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता

0: इसको देखा नहीं था, वंडरफुल
1: जी,
0: इसके साथ करना चाहिए।
1: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
1: जी,
0: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है
1: जी,
0: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है। वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है
1: जी।
0: ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है
1: जी।
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया
1: जी।
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है
1: जी।
0: उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे
1: जी।
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है
1: जी। तो ये आने वाले कल की तैयारी है जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे
1: जी।
2: तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है
1: जी।
2: इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोकमंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये

0: आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षा वल्ली है वहां पर गुरु जो हैं वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि परमर्षि महर्षि देवर्षि राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा की बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है। आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी,
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है। यहाँ पर मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
2: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
1: जी,
2: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
1: जी,
2: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्योंकि वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
1: जी।
2: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद जिनको श्रुति कहा जाता है, वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं
1: जी।
2: और मंत्र क्या हैं, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंदः पादौतु वेदस्य
1: जी,
2: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
1: जी,
2: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है वैदिक ज्ञान है वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
1: जी,
2: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
1: जी।
2: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
1: जी।
2: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्वव्रतये सितौ प्रजानाम प्रलय तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः
1: जी।
2: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
1: जी।
2: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
1: जी।
2: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय हो रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी,
2: और ये फल भी देते हैं
1: जी। तो स्तुति का माध्यम

0: है ये।
1: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
0: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
1: जी,
0: और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
1: जी का स्वरूप है
0: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
0: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए हैं। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
0: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है, इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है, आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
0: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
0: जी।
2: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
0: जी।
2: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण, क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है
0: जी। और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है जी। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना उसमें एक शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनी

0: सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए, इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है, तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है, उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा हैं। ये अज्ञानात्मक, नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो है हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है।
1: जी, और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो है, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
2: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया।

0: है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्ध कश्चित् दुरम। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग, योग क्या है? एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
1: जी।
0: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
1: जी,
0: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
1: जी,
0: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
1: जी।
0: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
1: जी।
0: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
1: जी,
0: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
1: जी,
0: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में वो व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
1: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
1: जी।
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
1: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
1: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है, मनी के मूल क्या है जॉब है, जॉब के लिए क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम के क्या करना है तैयारी करनी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है, जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य ये कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है, समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
1: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
1: जी।
2: तो आज दुनिया में ये मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं, आज हमें आध्यात्मिकता को, हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता

0: वो भी सिखाना है
1: जी।
0: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
1: जी।
0: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
1: जी।
0: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
1: जी।
0: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानि शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानि शिक्षक
1: जी।
0: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
1: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का, और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की, और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
2: नीलम जी शुक्रिया।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
1: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2036 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना के लिए जहां मेसी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर 19 वर्षीय लामिन यामल स्पेन के आक्रामक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले भारतीय टीम ने
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering the protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to the media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Mohitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania yesterday. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. The government is implementing the National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, NAMAST, as read as Namaste, as a flagship initiative to ensure the safety, dignity and social security of sanitation workers while promoting mechanized sanitation across the country. Jointly implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Housing and Urban Affairs, the scheme aims to eliminate hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks through mechanized cleaning, skill development and welfare measures. Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar said that the scheme reflects the government's commitment to ensuring dignity, safety and social security for sanitation workers. In Jammu and Kashmir, at least 11 people were killed and 7 others went missing as torrential rains triggered landslides and flash floods in the twin border districts of Rajouri and Poonch early yesterday. The worst devastation was reported from Surankot Tehsil in Poonch district, where most of the fatalities occurred. A multi-agency rescue operation is underway to trace the missing amid continuing rain and damaged roads. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah has assured of all possible assistance from the central government. Meanwhile, Sri Mata Vaishno Devi Yatra and Sri Amarnath Yatra remain suspended due to adverse weather conditions. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometre long Rameshwar-Paradeep Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed a 2-1 series win at Lord's in London, England. England had set a target of 388 runs for India in the third ODI. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. PM Modi has congratulated the Indian team for securing 4 gold medals at the 58th International Chemistry Olympiad. In a social media post, Mr. Modi said that this was India's best ever performance at the prestigious global competition. And that is the end of this news bulletin.

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी गीता दत्त की आवाज़ के साथ।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म की रीमेक थी जो आधारित थी विमल मित्रा के उपन्यास पर और इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है आशा जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म CID से।

फिल्म का नाम सीआईडी और आवाज़ें थी शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की। संगीत उपिन अय्यर साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1956 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने और निर्मित किया था गुरुदत्त ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने। इस फिल्म में देव साहब की भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो एक हत्या के मामले की जांच करता है। और अगला गीत आप तक जगजीत कौर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने, निर्देशन किया था एसयू सनी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनेस और कुमकुम ने। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही थी और 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मदर इंडिया फिल्म से सुना आपने ये गीत, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में। संगीत नौशाद साहब का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने। ये फिल्म महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी और फिल्म मदर इंडिया एक गरीब महिला राधा की कहानी है जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और भारतीय नारी की जो एक सशक्त परिभाषा है उसे स्थापित करती है। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू

0: से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकरायल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House NXE. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 17 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज के साथ।

वैसे बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन सच कहूँ, मोहब्बत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये इंतज़ार है, किसी के लिए यादें हैं, तो किसी के लिए साथ चलना मोहब्बत कहा जा सकता है। खैर, मोहब्बत की परिभाषाएं तो चलती रहेंगी और बातों का ये सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है अगला गीत सुनने का। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

आपके दिल की धुन इस वक्त क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा दिल तो एक ख्वाब बुनना चाहता है। चलेंगे आप मेरे साथ अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसे निखर के आता है कि तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कहने और सुनने की जो कश्मकश होती है ना, यही हमें इंसान बनाती है। और ये कश्मकश जब मोहब्बत से मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे मुश्किल काम शायद यही है, अपने दिल की बात को सही वक्त पर, सही इंसान पर, सही लफ्ज़ों में कह पाना। कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी जाती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ये सही इंसान है, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही लम्हा है। और इसी उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो इंसान शायद हमारी ज़िंदगी से हमसे छूट भी जाता है। और फिर हम कई बार जब हम सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये रंग और नूर की बारात आखिर पेश किसे की जाए। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। वाकई साहिर साहब को उनके शब्द ही साहिर बनाते हैं। पता है जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, कामयाबी होती है, नाम होता है, महफिलें होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खलीपन होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक भर नहीं पाती। साहिर साहब ने जो इस गीत में कहा है वो आज भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपनी खुशियों की बारात सजाते हैं, लेकिन उस उदासी का क्या जो बार बार हमारी यादों से, हमारी स्मृतियों से हमें घेरती है। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें

0: सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, The opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of parliament.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम है हमराही। चलिए आगाज करते हैं हमराही का। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन ये लब खामोश रह जाते हैं। कुछ मुलाकातें बस पल की होती हैं लेकिन उनकी यादें पूरी उम्र का सहारा बन जाती हैं। किसी का साथ, किसी की मुस्कान, उसकी मौजूदगी, यही तो वो एहसास है जिसे हम अपने दिल में संजोकर हमेशा रखना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है, आया है और समय ठहर गया है, उसके साथ बिताया हर लम्हा खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे गीत के साथ, उसी मासूम एहसास के साथ, उसी अनमोल पल के नाम के साथ। चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। फिल्म है वो कौन थी, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जब बात इश्क की, मोहब्बत की और प्यार की होती है, तब ऐसे में सबसे खूबसूरत

तोहफा फूल होते हैं। जी हाँ, फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते, वे दिल की उन भावनाओं को भी साथ समेट लाते हैं जिन्हें अक्सर शब्द हम कह नहीं पाते। जब किसी अपने के लिए फूल भेजे जाते हैं तो उसमें प्यार, अपनापन, इंतज़ार तीनों महकते हैं। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये सदाबहार गीत।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी खुशियां दे देती है जिसका इंतजार बरसों से होता है। जब दिल अपनी सबसे प्यारी मंजिल के करीब पहुंच जाए तो हर पल किसी जश्न से कम नहीं लगता। ऐसे ही मोहब्बत की खुशी और अपना पन लिए पेश है ये गीत।

हमरा ही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है, कभी फूलों की तरह महकती तो कभी परिंदों की तरह खुलकर गुनगुनाती हुई। कुछ किस्से तो इतने मासूम होते हैं कि वे पीढ़ियों तक मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत दास्तां बयां करता हुआ एक ऐसा ही गीत, एक था गुल और एक थी बुलबुल।

हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वो नहीं भूलता कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता मैं जहाँ जाऊं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है।

0: सीआईएसएफ ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने के दौरान मारे गए तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत की खबर है। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां एक अलग ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब कुल मिलाकर तीन अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बना है। फेरॉन टॉरेस ने विजयी गोल किया। अविजित रहने के मामले में स्पेन ने इटली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government had yesterday convened an all-party meeting at Parliament House in Exe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब दिल सच्ची नीयत से दुआ करता है तो हर अर्जी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। विश्वास, प्रेम और उम्मीद हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है।

आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दिल की गहराइयों से निकलकर प्रार्थना और खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता है।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देती है। जब भी हम श्रद्धा के साथ ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत और एक नया कदम, एक नया उत्साह बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ सुरभि। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अरुणिमा। देखा जाए तो ये जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी दे जाती है तो कभी चुनौती, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए उम्मीद, हौसले और सकारात्मक सोच से भर देने वाला गीत सुनते हैं।

लेकिन जो लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लें, वही जीवन सच्ची मायनों में सार्थक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इंसानियत और अपनत्व का संदेश देता हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफ़र यहीं तक। 5:10 पर भोर सुहानी में होगी हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश,

प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं होता। एक सच्चा साथ, एक भरोसे भरा हाथ और थोड़ी सी संवेदना अगर मिल जाए तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उम्मीद, अपनापन और हौसले का संदेश देते हुए इस भावपूर्ण गीत को सुनकर।

भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और हर नई सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। तो चलिए आत्मविश्वास को थाम कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को देने वाला ये गीत हम और आप सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिसमें बीते हर लम्हे खास बन जाते हैं। खुशियां जब अचानक दस्तक देने लगती हैं तो दिल मुस्कान से भर उठता है, नई उम्मीदें जागती हैं, बहुत ही खूबसूरत एहसास जीवन में आ जाते हैं। तो चलिए खूबसूरत एहसास, नई उम्मीदों और जीवन की मधुरता को समेटे ये गीत सुनते हैं।